103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी एफएम शिमला है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून साल 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये एफएम शिमला है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कृपया रैली की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Vishakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. The accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The injured have been admitted to the hospital and are undergoing treatment. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. In addition, a 3-member external inquiry committee headed by the director in charge of the Bokaro steel plant of Steel Authority of India Limited has been assigned to probe the incident. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu visited the Vishakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy announced a compensation of 25 lakh rupees for the kins of the deceased.

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ, और एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और रविंद्र साठे, संगीतकार सतीश भाटिया। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला पर देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। राज्य

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा है कि मौजूदा समय में युवाओं को अपनी संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे जिम्मेदार, संवेदनशील और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित नागरिक बन सकें। राज्यपाल कल शिमला में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमारी पहचान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शिमला के मशोबरा में महिलाओं के लिए प्रदेश के पहले नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में नशा, विशेषकर चिट्टे की चुनौती, केवल कानूनी व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय संकट है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने संजौली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि चक्का जाम किसी समस्या का हल नहीं है और सरकार किसी भी मुद्दे पर बातचीत के लिए उपलब्ध है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पर्वतों, नदियों और नालों पर अल्पकालिक लाभ के लिए अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। रामनाथ कोविंद कल कुल्लू के घुड़दौड़ स्थित ऋषि भूमि योग आश्रम परिसर में नवस्थापित ऋषि भूमि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के शुभारम्भ के मौके पर बोल रहे थे। 3 दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 का सम्मेलन कल चंडीगढ़ में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कर रहे हैं। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ, 7 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50

0: से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। आइए सुनते हैं FM शिमला पर चिंतन।

भगवती श्री पार्वती भगवान शिव की आदि शक्ति हैं। उन्होंने जहां विनय और प्रेम की प्रतिमूर्ति होकर पति के आधे अंग में स्थान प्राप्त किया, उन्हें अर्ध नारीश्वर बनाया, वहीं स्वामी को अपनी विराट शक्ति देकर मृत्युंजय के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवती श्री पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को सेनानी और गणाध्यक्ष बनाया तथा स्वयं भी लोक कल्याण के लिए शस्त्र उठाकर चंड मुंड विनाशिनी चामुंडा बनी। वेद, उपनिषद, पुराण सभी उनकी अनंत महिमा का गान करते हैं। भगवती पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उस समय भी उन्हें भगवान शंकर की प्रियतमा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दक्ष यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान से क्षुब्ध होकर योगाग्नि में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सती ने देह त्याग करते समय ये संकल्प किया कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म ग्रहण कर पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। भला जगदम्बा का संकल्प कभी अन्यथा हो सकता है? वे समय पाकर हिमालय पत्नी मैना के गर्भ में प्रविष्ट हुई और यथा समय उनका प्राकट्य हुआ। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं।

जब वे कुछ सयानी हुई तो उनके माता पिता उनके अनुरूप वर के लिए चिंतित रहने लगे। एक दिन अकस्मात देवऋषि नारद हिमवान के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने अपनी लाडली पुत्री पार्वती को भी बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया और उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बताने की प्रार्थना की। नारद जी ने हंसकर कहा, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। आगे चलकर ये उमा, अंबिका और भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध होंगी। ये अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्यारी होंगी और इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसको माता पिता से रहित उदासीन तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। मैंने वर के जितने दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव की तपस्या करे और वे प्रसन्न होकर इससे विवाह के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका सभी तरह से कल्याण होगा। देवऋषि नारद के उपदेश को हृदय में धारण कर भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया और माता पिता के मना करने पर भी उन्होंने हिमालय के सुंदर शिखर पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी कठोर तपस्या देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने पहले पार्वती की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा और पीछे वटुक वेश में स्वयं आए। पार्वती जी की अविचल निष्ठा को देखकर शिव जी अपने को अधिक देर तक ना छिपा सके और असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। भगवती पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई और उन्हें शिव जी से पाणी ग्रहण का वरदान मिला। पार्वती जी तपस्या पूर्ण करके घर लौट आईं और अपने माता पिता को उन्होंने शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। शिव स्वरूपतः परब्रह्म हैं। वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। वे देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हैं। उनमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में शिव का ओंकार रूप से प्रतिपादन है। निर्गुण निराकार निष्क्रिय शिव ही अपनी अचिंत्य अनिवर्चनीय शक्ति का प्रयोग करके सगुण निराकार एवं सगुण साकार बनते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचिक स्वर डॉक्टर हुकुम शर्मा के थे।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे ना मीठी।
1: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं एफएम शिमला के साथ, और अब समय हो चुका है एफएम शिमला पर आपको ये बताने का कि आज एफएम शिमला पर कौन कौन से कार्यक्रमों को आप किस समय पर सुन सकते हैं। देश और दुनिया की हर एक जानकारी मिलेगी आपको समाचारों के माध्यम से, और ये समाचार आप सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में। समाचारों को सुनने का जो समय रहेगा वो रहेगा दिन में 12 बजे से 12:10 के मध्य, 1:10 तक सुन सकते हैं आप 1 बजे से लेकर, और इसके अलावा दोपहर 2:15 पर, साय

7:05 पर रात 11 बजे से 11:10 के मध्य सुन सकते हैं आप, और इसके अलावा सुबह 8 बजे से 8:30 के मध्य और रात 8:45 से 9:15 के मध्य। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुन पाएंगे आप सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, 6:30 और 7:45 पर। इसके अलावा एफएम शिमला से एफएम न्यूज़ हेडलाइंस सुनिएगा सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर। कुछ पुराने और कुछ नए फिल्मी नगमों का आनंद लीजिए फिल्म संगीत के माध्यम से, और ये फिल्म संगीत के तहत जो फिल्मी गीतों का ये सफ़र रहेगा वो आप एंजॉय कर सकते हैं दिन में 12:10 पर, 3:10 पर, 4 बजे और शाम 8:30 पर। सुबह 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, 10 बजे का समय रहेगा राग छाया कार्यक्रम का, दिन में 1:10 पर आज आप सुनेंगे लाइव ऑन इन प्रोग्राम हेलो शिमला। ग्यारह बजकर 5 मिनट पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, और शाम 8 बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत, और 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम, सुबह 8:32 पर लोक संगीत कार्यक्रम सुन पाएंगे आप, 11:30 का समय रहेगा पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का, 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम सबरंग सुनिएगा दिन में 2 बजे, 2:30 पर आज आप सुनेंगे ज्ञान विज्ञान, 3:05 पर जिले की चिट्ठी युवा दोस्त सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम दिन में 3:30 पर।

साय 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम सुन सकते हैं आप, और 9:15 पर एक फिल्म से प्रोग्राम, 9:30 पर दिल की आवाज़ भी सुन, और 10 सुनिए दिलकश गजलें। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम 4:20 पर, 4:50 का समय रहेगा महास्वी कार्यक्रम का, स्पीति कार्यक्रम सुनिएगा 5:20 पर, 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम, और आज सुबह 8:45 पर सुनिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और इस प्रोग्राम में आज के विषय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 2808034280852 पर। तो ये वो कार्यक्रम है जो आज आप सुनने वाले हैं FM शिमला 103.7 MHz पर, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM

दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, वक्त के साथ साथ मंजर भी बदलते हैं। अपनी हिम्मत को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि एक नई सुबह के साथ अक्सर हालात भी बदलते हैं। और इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव सोच के साथ आप सभी सुनने वालों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डिंपल ठाकुर।

आकाशवाणी एफएम शिमला पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। जून के महीने की ये खुशनुमा सुबह है और उन लोगों के लिए तो ये सुबह और भी प्यारी और ताजगी से भरी हुई है जो इन दिनों पहाड़ों की गोद में बसे हमारे प्यारे शिमला में है। बिल्कुल जी, क्योंकि शिमला की ये खूबसूरत वादियाँ इन दिनों रंगों, रौनक और उत्साह से सराबोर है, क्योंकि शिमला समर फेस्टिवल की चहल पहल ने पूरे शहर को एक अलग ही रंग में रंग दिया है। हिमाचली लोक संस्कृति, लोकल फूड,

संगीत और मनोरंजन के रंग इस उत्सव को और भी खास बना रहे हैं। और अभी क्या है खास आज के प्रोग्राम में, और क्या कुछ हम आपके लिए आज लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में, वो बातें होगी आने वाले पलों में। फिलहाल एक और सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आपको बता दें कि आज सुबह 8:45 से आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय है वहम की बीमारी, OCD एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, अपने प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें आज सुबह 8:45 से 9:15 के मध्य फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2808034, 2808152। नंबर्स आप एक बार फिर से नोट कर लें, 2808034 और 2808152। इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टूडियो में उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ रहेंगे वो आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। तो इस कार्यक्रम में जुड़ना ना भूलिए सुबह 8:45 से 9:15 के मध्य। आकाशवाणी FM शिमला पर आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
0: वक्त की रफ्तार थमती नहीं, यादों की कारवां रुकते नहीं, जो अपने दौर में कर जाते हैं कुछ खास, उनके किस्से इतिहास के पन्नों से मिटते नहीं। जी हाँ, वक्त आगे बढ़ता रहता है लेकिन इतिहास अपने पीछे ऐसी निशानियां छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। तो आइए फिर अपनी जानकारी को और बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के दिन से जुड़े कुछ ऐतिहासिक बातों के बारे में, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा देने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उससे पहले ये संदेश।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की

0: पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कुछ नाम वक्त की धूल में दब जाते हैं, कुछ नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। 9 जून भी ऐसी ही तारीख है जो कई प्रेरणादायक व्यक्तियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की याद हमें दिलाती है। सबसे पहले आज याद करते हैं महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। सिर्फ 25 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए आदिवासी समाज को आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए जागृत किया। उनका उलगुलान आंदोलन आज भी साहस और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। और इसी दिन हिंदी सिने जगत के प्रसिद्ध निर्देशक राज खोसला की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी और अपने अनोखे निर्देशन से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। 9 जून कई प्रसिद्ध हस्तियों का जन्मदिन भी है, इनमें भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी शामिल है। अपने साहस, ईमानदारी और प्रशासनिक सुधारों के लिए वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। इसके अलावा ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध लेखिका नंदिनी सतपथी का जन्म भी 9 जून को हुआ था। उन्होंने राजनीति और साहित्य दोनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म जगत की बात करें तो एक्ट्रेस अमीषा पटेल और फैशन आइकॉन सोनम कपूर आहूजा का जन्मदिन भी आज ही के दिन मनाया जाता है। दोनों ने अपने अपने अंदाज से भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाई है। इसके अलावा साल 1959 को अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन सबमरीन को लॉन्च किया। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस ये दुनिया की पहली सबमरीन थी। सबमरीन एक तरह का जलयान यानी कि वाटरक्राफ्ट है जो पानी के अंदर रहकर काम करता है। किसी भी देश के लिए सबमरीन बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें हम पहले विश्व युद्ध की तो यहाँ इस युद्ध में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। 1975 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सदन की कार्यवाही का रेडियो पर लाइव प्रसारण आज ही की तारीख को शुरू किया था।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। आपको बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अवसर है जो कि है विश्व प्रत्यायन दिवस। ये दिन गुणवत्ता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रत्यायन ये सुनिश्चित करता है कि हमें मिलने वाली सेवाएं और उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों

रंगों से सजा है शहर, खुशियों का है ये पैगाम। संस्कृति, स्वाद और संगीत की महक से इस इन दिनों सराबोर है अपना शिमला। जी हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल समर फेस्टिवल की धूम इस इन दिनों जो है हमारे शिमला में है। अगर आप भी शिमला में हैं तो आनंद आप उठा सकते हैं इस फेस्टिवल का। जो मुख्य आकर्षण है खास करके इस बार की अगर हम बात करें तो गेटी थिएटर में कवि सम्मेलन, जो कि आज भी चलेगा, तो आप यहां पर जाकर इस सम्मेलन का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा मॉल रोड पर जुम्बा डांस का भी आप आनंद उठा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कल यानी कि 8 जून से समर फेस्टिवल शुरू हो चुका है और 12 जून तक ये चलने वाला है। और आज की नाइट की बात करें तो आज की जो स्पेशल स्टार नाइट रहेगी रिज मैदान पर, आप इस चीज़ का आनंद उठा सकते हैं। मशहूर बॉलीवुड और सूफी गायिका ज्योतिका टंगरी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेगी। तो वहीं गेटी थिएटर में जैसे कि मैंने अभी कहा, आप कवि सम्मेलन का आनंद ले सकते हैं। वहीं नगर निगम मैदान संजौली में अंडर 21 वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, वहाँ पर भी आप खेलों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा रिच और मॉल रोड के आसपास जो है स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनियां भी लगी है। हिमाचली नाटी भी आप यहां पर देख सकते हैं और शिमला स्वाद महोत्सव यानी कि फूड फेस्टिवल भी जो है पूरे दिन जारी रहने वाला है, जहां पर आप हिमाचली जो है फूड का आनंद उठा सकते हैं, जिसमें खास करके हमारे हिमाचल के खास जो फूड रहता है सिड्डू, जो कि काफ़ी फेमस है हिमाचल में, और इसके अलावा बाबरू भी हमारे एक फेमस चली जो लोकल डिश है, उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर शिमला में जब आप आएंगे और इस फेस्टिवल में इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप शिमला में हैं तो इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए, भिन्न भिन्न तरह की संस्कृति से आप रूबरू होंगे। अगर आप शिमला से बाहर से हैं और शिमला आने का सोच रहे हैं तो 12 जून तक आप ज़रूर विज़िट कीजिए शिमला और आनंद लीजिए हिमाचली लोक संस्कृति के भिन्न भिन्न रंगों का।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही। और अब आपको बता दें कि आज सुबह 8:45 से 9:15 के मध्य लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप सुन सकते हैं, जिसमें आज का विषय है वहम की बीमारी, ओसीडी एवं मानसिक स्वास्थ्य। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, अपने प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो सुबह 8:45 से 9:15 के मध्य फ़ोन नंबर्स 2808034 2808152 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 1:10 पर आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी फरमाइश के साथ। इस वक्त जुड़े हैं आप एफएम शिमला के साथ, और अब आप सुनेंगे एफएम शिमला पर एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। तीन दिवसीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन टू का सम्मेलन कल चंडीगढ़ में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कर रहे हैं। उनके साथ विधायक संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, नीरज नैयर, राकेश जम्वाल, रीना कश्यप और कमलेश ठाकुर भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष आज सम्मेलन में विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर अपना संबोधन देंगे। आकाशवाणी के कल गौरवशाली 90

0: इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेज़ी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने टांडा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग के एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर का सरकार द्वारा स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया है। डॉक्टर जनकराज ने कल कहा कि एकमात्र विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले का हजारों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस तबादले को तुरंत रद्द करने की मांग की। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि माता पिता का त्याग व समर्पण ही बच्चों की सफलता की असली नींव है। प्रोफेसर सिकंदर कुमार कल सरस्वती विद्या मंदिर शिमला द्वारा मेधावी और प्रतिभावान छात्रों के लिए आयोजित पारितोषित वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य किताबी ज्ञान या डिग्रियाँ हासिल करना नहीं बल्कि एक आदर्श चरित्र का निर्माण करना है। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती विवाद पर पार्टी की अनुशासन समिति की बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव विनोद जिंटर ने कल शिमला में कहा कि अनुशासन समिति की बैठक में नीरज भारती घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी ने नीरज भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए।
2: मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स

0: कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से

0: संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू लॉन्च लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन न्यू दिल्ली टुडे। 5-day ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग टू बिगिन टुडे इन इंदौर, मध्य प्रदेश। Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. US Federal Court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. More details from our correspondent.
3: The Ministry of Home Affairs said that the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. It added that the platform aligns with the goal of strengthening trade facilitation, connectivity, national security, and the vision of Viksit Bharat by 2047. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. The system will also provide end-to-end digital workflows for cargo and passenger processing, including slot booking, payments tracking, and single window clearances, while improving coordination among government agencies and private operators. On the occasion, the Home Minister will also inaugurate newly developed stakeholder accommodation facilities at Dauki in Meghalaya and Srimathpur Land Port in Tripura, strengthening infrastructure support for border management and personnel. Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
2: The 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting will begin today at Indore in Madhya Pradesh. The BRICS Agriculture Working Group meeting will also be held simultaneously under

0: At heart of governance, says PM Modi, as NDA marks 12 years, is a front page headline in The Statesman. Crisis deepens for Mamata as her Lok Sabha team breaks. Rebel TMC MPs reach out to BJP, writes the Indian Express. Israel-Iran trade strikes may revive full-scale war in region. Government tells all Indians to leave Iran immediately, writes the Asian Age. India sees surprise current account surplus in January to March. Strong services receipts, higher remittances offset war disruptions, leads the Financial Express. Giving impetus to the digital modernization push in Indian Railways, Waitlist gets a crystal ball, Railways to unveil AI tool to predict ticket confirmations, says the Pioneer. As Delhi battles extreme heat and rising fire incidents, surge in fire incidents linked to overloaded electrical systems, writes the Delhi Tribune. The Statesman on its editorial page writes, for years, India's electric vehicle debate was driven largely by environmental concerns, yet the strongest argument for electrification may be India's enduring vulnerability to imported oils. And finally, consensual premarital relationships, no stain on character, SC orders, man's appointment as cop, informs the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. Five-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard empty Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं। समारोह के दौरान नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने नीरज भारती द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इन आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता समय आने पर इसका उचित जवाब देगी। लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल शुरू हो गया। ऐतिहासिक रिज मैदान पर 12 जून तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने किया। इस दौरान बॉलीवुड, पंजाबी व अन्य प्रदेशों के अलावा हिमाचली कलाकार लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्षों का कार्यकाल जनसेवा, पारदर्शी प्रशासन और समावेशी विकास की एक सशक्त मिसाल है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
4: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

लोक संगीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। ढोल नगाड़ों की थाप हो, रणसिंघे की गूंज हो और पहाड़ों की वादियों में गूंजते लोकगीत, यही तो है हिमाचल की असली पहचान। जी हाँ, और इन दिनों अगर आप हैं शिमला में तो इन ढोल नगाड़ों का आनंद आप ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल में। आपको बता दें कि लोक संस्कृति की खूबसूरत झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पिछले कल यानी कि 8 जून से 12 जून तक ये उत्सव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हिमाचल के अलग अलग ज़िलों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह रहे हैं।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ। 8:45 होने वाले हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

साधना का हर स्वर, हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार।
1: हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं धैर्य रखें, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी सामने आती हैं कि हमें उनका सामना भी करना पड़ता है, और शिमला के मौसम में भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो आज हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं, परंतु ट्रैफिक में फंस चुके हैं। तो इससे पहले कि डॉक्टर साहब स्टूडियो में पहुंचते हैं, हम आपको एक गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि जीवन में सफलता और सुगमता के लिए भ्रम और वहम दोनों को मन से दूर रखना चाहिए। इन दोनों के एक स्तर से ज़्यादा बढ़ने से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति के काम करने के तौर तरीकों पर भी असर पड़ता है। तो हम आपको बता दें सबको कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा जी, और आज का हमारा विषय रहेगा OCD यानी वहम की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य। यदि आप आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2808034 और हमारा दूसरा नंबर रहता है 2808152। और आज एक और नंबर हमने लिया है कार्यक्रम में, वो रहेगा 2970400। और यदि आप शिमला से बाहर हैं और हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि OCD यानी वहम की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है उसे आप जानना चाहते हैं, तो आपको पहले STD कोड लगाना होगा 0177। और हमारे नंबर्स रहेंगे 2970400 और 2808034, और तीसरा नंबर रहेगा 2808152। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा जी। शर्मा जी, आज आप ट्रैफिक में फंस गए।
1: जी,
0: क्या करें, मौसम भी ऐसा चल रहा है और जाम ने भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है आज।
1: जी,
0: दिनेश दत्त शर्मा जी मेडिकल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में मनोरोग विभाग के HOD और प्रोफेसर हैं। दिनेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे जानना चाहेंगे कि OCD है क्या।
1: जी धन्यवाद। जो OCD की बीमारी है, जैसे आपने कहा, इसके दो कंपोनेंट हैं, जैसे एक ऑब्सेशन और कंपल्शन।
0: जी,
1: तो जो OCD में ऑब्सेशंस होती हैं, जैसे ऑब्सेशन का मतलब है एक ही विचार या कोई इमेज या कोई ऐसे इम्पल्स जो आवेग जो बार बार मन में आता है
0: जी।
1: और वो रिपीट होते रहते हैं
0: जी।
1: जैसे और अपने को इंसान को पता भी होता है कि ये फजूल है, अननेसेसरी है, फिर भी वो उसे रोक नहीं पाता है और उसे वो करना ही पड़ता है, यानी कि एक किस्म से कंपल्शन हो जाती है
0: जी।
1: तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं और बावजूद इसके कि उसको पता है कि ये गंदे नहीं है, मैं फालतू में इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर भी उसे ये करना ही पड़ता है। तो जैसे विचार आना कि गंदे हो गए हैं, डस्ट कंटामिनेशन कुछ हो गई है, और उसके साथ हाथ को धोना, जो हाथ धोने पड़ते हैं उसको कंपल्शन कहते हैं, और जो ये बार बार विचार आना इसको हम ऑब्सेशन कहते हैं।
0: ऑब्सेशन कहते
1: हैं जी। तो दोनों भी हो सकते हैं,
0: यानी एक जुनून की बाध्यता बन जाती है,
1: बाध्यता
0: विचारों को बार बार लाने की जरूरत हो जाती है। डॉक्टर दिनेश दत्त, इससे पहले कि हम आपसे कुछ जाने, एक कॉलर कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं
1: जी।
0: हेलो
2: हेलो बहन सपना जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: सर, तहसील करसो गांव तलहन से मैं बोधराज वर्मा बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सपना जी को बधाई देता हूँ इतना अच्छा उच्चारण करने के लिए जो उच्चारण किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि मेरी पत्नी है ना जी,
1: जी
2: तो सर वो बचपन में उसकी मेमोरी कमजोर है, बचपन में क्या हुआ कि उसका पांव जो है जल गया था आग में, चूल्हे में
1: जी।
2: तो वो 2.5 साल की थी, उस वक्त हॉस्पिटल भी नहीं थे और

0: जी
1: तो डॉक्टर साहब उसके उसको ये मतलब मेमोरी उसकी 100 से 50% है। मैंने आईजीएमसी में भी उसको उसको दिखाया था डॉक्टर साहब को जो पेशेंट है इसके, लेकिन उन दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या क्या किया जाना चाहिए इसमें?
0: जी जो आपने बताया कि मेमोरी की जो समस्या है ना, वो थोड़ा अलग है। हम जो हमारा जो विषय है वो ये है कि एक ही चीज़ को बार बार करना या बहम हो जाना कि ये अच्छे से नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये अलग चीज़ है। और जो मेमोरी की समस्या है ना, ये थोड़ा अलग है। तो इसके लिए उनकी जांच जो है, एक बार आप फिर से दोबारा से दिखा सकते हो कि उनका हो सकता है कि थोड़ा सीटी स्कैन वगैरह, इमेजिंग वगैरह भी करना पड़े, और कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिससे हम एक बार जांच करके देखते हैं ना। अगर हो सकता है कि न्यूरोलॉजी की समस्या हो तो उसके लिए आपको चमियाना दिखाना पड़ेगा ना
1: डॉक्टर साहब। दूसरी समस्या है कि उनको भूलने की समस्या है। जैसे उन्होंने एक चीज यहाँ कुछ चीज यहाँ रख दी तो उनको 5 मिनट के बाद उनको याद नहीं रहता कि मैंने चीज कहाँ रखी। तो मतलब मेमोरी कमजोर होने के कारण है वो, या भूलने की कुछ समस्या और हो सकती है? जी
0: उसको जांच करके पता चलेगा कि क्या समस्या हो सकती है। तो थोड़ा एक बार टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे और फिर हॉस्पिटल आप दिखा सकते हो। जी
2: धन्यवाद बोधराज वर्मा जी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिनेश, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भ्रम और वहम की स्थिति जो बनती है उसे हमने अपने मन से दूर रखना चाहिए, दिमाग से दूर रखना चाहिए। तो जैसे कि वहम की यानी ओसीडी की हम बात कर रहे हैं, तो इसके प्रमुख लक्षण कैसे हैं, कैसे पहचाना जाए इसको?
0: जी तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हम ओसीडी की जो हम शुरू में ही इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि कैसे इसको परिभाषित किया जाता है, तो इसमें जो लक्षण होते हैं वो एक तो ऑब्सेशंस हो सकती हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है, पहले तो ये सिद्ध करना पड़ता है कि ये ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन का मतलब है बार बार करना और उसका पता भी होना कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, और मोस्टली पता होता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार जब ये काफ़ी समय से चल रही होती है तो कभी कभी पेशेंट को बाद बाद में पता भी नहीं चलता, वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये सामान्य ही है। तो उसको हम कहते हैं ओसीडी विद पुअर इनसाइट। तो उसमें हो सकता है कि पता ना हो, पर अधिकतर ये होता है कि खुद से पेशेंट ये बताते हैं कि मुझे जो है ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, या मुझे बार बार ऐसे विचार आते हैं जैसे किसी कोई इस तरह के विचार किसी भी तरह के आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी देवी देवता के प्रति आ सकते हैं कि मैं मंदिर में जाऊं और यहाँ ऐसा ना कोई गलत ना बोल दूं भगवान के प्रति, या मेरे मन में गलत ना आ जाए। तो उनको बार बार वही बहम सा रहता है, और वो उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ या तो मंत्र बोल देंगे या कोई 4 बार कहीं छू लेंगे, तो उस तरह से गिनती करके
2: जी।
0: तो कभी कभी ये ऐसे होते हैं, जैसे हाथ धोना है, किसी का स्पेसिफिक होता है कि मुझे 3 बार धोना है, 5 बार धोना है। कईयों को किसी नंबर का बहम हो जाता है, जैसे 13 नंबर है तो उस दिन ये करना है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो वो उनके मन में पक्का बार बार उनको वही ख्याल आता है कि
2: यानी ये स्थिति पैदा हो जाती है कि बार बार करना और दोहराना जी।
0: और फिर उसको नहीं रोक पाना
2: जी।
0: और उसके बाद जो है अगर वो रोकते हैं तो उससे उनको एंग्जाइटी होती है। तो जो इसको अगर कंपल्शन को रोक देते हैं तो उससे उनके दिमाग में एंग्जाइटी होती है, इसलिए उनको दोबारा करना पड़ता है। उससे एंग्जाइटी हटाने के लिए उनको करना पड़ता है। तो इसमें कई तरह के वहम हो सकते हैं। ज़्यादातर जो होता है कॉमनली सफाई का वहम बहुत कॉमन होता है, और चीज़ें रखने का जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री, जैसे चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित रहनी चाहिए, जैसे अगर यहाँ रखी है यहीं रहनी चाहिए, अगर वो मान लीजिए थोड़ी इधर उधर हो जाए तो उससे उनको परेशानी हो जाती है। तो उसको हम सिमेट्री का ऑब्सेशन कहते हैं, जैसे चीज़ों को एक जगह रखने का या ठीक से रखने का, व्यवस्थित तरीके से एक ही क्रम में रखने का, वो भी हो सकता है। और उसके अलावा कभी कभी कुछ इमेजेस हो सकते हैं दिमाग में, बार बार इमेजेस आना, वो भी हो सकता है। या कई बार ऐसे इम्पल्सिस आते हैं उनको, मतलब कि मैं जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है बस में, इस व्यक्ति को धक्का ना दे दूं, ऐसे उसके मन में वही बार बार आएगा। हालांकि वो धक्का देगा नहीं, लेकिन उसके माइंड में आता रहेगा। फिर बाद में ऐसा भी आएगा कि मेरे मन में ऐसा क्यों आ रहा है, तो उसके प्रति वो खुद से उसके प्रति वो व्यथित भी होते हैं और परेशान भी होते हैं
2: जी।
0: जी
2: डॉक्टर दिनेश, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक कॉलर कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: सपना जी, नमस्कार।
2: नमस्कार
3: कौशल, हिमाचल जनसमस्या मंच
2: जी, स्वागत है कौशल जी कार्यक्रम में।
3: डॉक्टर दिनेश नमस्कार
0: जी। नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, ये आपका सब्जेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोशल सेटअप टुडे, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन
0: जी। जी
3: अब ये बहन बात अलग है, लेकिन एक एप्रीहेंशन की बात मैं करता हूँ, जैसे मैं खुद करता हूँ बात।

0: जी
1: ए आई ईट एनीवेयर इन रेस्टोरेंट और मुझे ये लगता है कि ये जो बर्तन है दे मस्ट नॉट बी क्लीन, बीमारियां हो जाएंगी, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि प्लीज स्टरलाइज दी. तो ये बहम नहीं है, दिस इज अ फैक्ट
0: जी.
1: एंड नंबर टू, जैसे वी गॉट सम केसेस गोइंग ऑन इन द कोर्ट्स,
0: वी
1: आर वेरी जेन्युइन केसेस, बट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस
0: जी,
1: जिसमें सपोज दिस इज एडवर्स
0: जी,
1: ये चिंताजनक बातें पैदा हो जाती है दिमाग में
0: जी. ऐसा है कि
1: थर्ड एग्जांपल इज माय सन
0: जी,
1: यू नो ही समटाइम्स सेज, ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो कहता है जी देयर थर्ड

0: बट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस
1: जी,
0: जिसमें दिस इज एडवर्स
1: जी,
0: ये चिंताजनक बातें पैदा हो जाती है दिमाग में
1: जी। ऐसा है कि
0: थर्ड एग्जांपल इज माय
1: जी जी जी,
0: नो ही समटाइम्स से ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन
1: जी,
0: वो कहता जी देयर 1000 सन्स बर्निंग इनसाइड मी।
1: ठीक,
0: ये क्या है रोहित साहब, आई मीन आई वुड लाइक टू नो ऑल दिस
1: जी। ऐसा होता नहीं, अगर जो आपके मन में कभी कभी विचार होते हैं, जैसे सफाई के विचार हैं, ये हैं, एक हद तक नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज़्यादा है और दूसरे लोगों को भी लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा है, और दूसरा वो आपके काम में बाधा डालते हैं, रोज़मर्रा के काम में, यानी कि आपको ज़्यादा समय लगता है, उसकी वजह से लोगों के साथ परेशानी आती है, तो ये बीमारी का रूप हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत होना नॉर्मल सामान्य है
2: जी।
1: जी
2: धन्यवाद कौशल जी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिनेश, जैसे कि आज हम ओसीडी की बात कर रहे हैं
1: जी,
2: तो क्या ये मानसिक विकार है या व्यक्तित्व की समस्या है देखा जाए तो?
1: जी, ओसीडी जो है, जहाँ तक हम ओसीडी की बात करते हैं, तो वो एक मानसिक विकार है, मानसिक बीमारी है, और क्योंकि ओसीडी जो है किसी स्पेसिफिक समय पे शुरू होती है, ज़्यादातर हो सकता है किसी तनाव से हो, और या जैविक कारण भी हो सकते हैं, जैसे अंदरूनी तौर पर जेनेटिक्स
2: जी,
1: और कभी कभी न्यूरोकेमिकल्स होते हैं आपके, उनका डिसबैलेंस होता है, और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं ब्रेन में, जो कि हम देखते हैं फंक्शनल एमआरआई वगैरह पे, तो ये एक बीमारी है
2: जी।
1: और जो आप जहाँ तक व्यक्तित्व की बात है, उसको हम ओसीपीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो भी इससे मिलता जुलता होता है
2: जी।
1: लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो बचपन से ही, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर बहुत सफाई पसंद होते हैं, वो थोड़ा मतलब जैसे दूसरी चीज़ें हैं, वो जैसे उनको भी व्यवस्थित रखने की चीज़ों को ज़रूरत रहती है, और इस तरह के काफ़ी सारे जो जो सामान्य उनका स्वभाव है वो हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन जो बीमारी है वो किसी पर्टिकुलर समय से शुरू होती है, और बाद में जब बीमारी ठीक हो जाती है तो उनका स्वभाव सामान्य हो जाता है, तो ये डिफरेंस है स्वभाव में और उसमें जी।
2: जी हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है, आज का हमारा विषय है ओसीडी यानी वहम की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य। यदि आप आज के विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2808034, दूसरा नंबर हमारा रहेगा 2808152, और तीसरा नंबर भी हम आपको बता देते हैं 2970400। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा जी, आप मनोरोग विभाग के एचओटी हैं। डॉक्टर दिनेश, जैसे कि हमारी बात चल रही है वहम की बीमारी की और मानसिक स्वास्थ्य की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि एंग्जाइटी और ओसीडी में क्या अंतर है?
1: जी, जो एंग्जाइटी है उसे हम घबराहट की बीमारी कहते हैं।
2: घबराहट
1: जी, एंग्जाइटी में आपके जो है, जैसे एक तो जनरलाइज एंग्जाइटी आती है, जैसे रोज़मर्रा की बातों में अधिकतर चिंता करना,
2: यानी जैसे चिंता शामिल है
1: जी, जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर चिंता करना जिन पे कि आमतौर पर नहीं होनी चाहिए, जैसे बच्चा बाहर गया, गिर ना जाए, ये ना हो जाए, बस गई है तो कोई बस को एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा होना। एक होता है कि सामान्य चिंता सभी को होती है, लेकिन अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत देर तक हो रही है और रोज़ हो रही है, तो उसको हम जनरलाइज एंग्जाइटी कहते हैं। और दूसरा, कभी कभी बहुत ही तेज़ एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें ये लगता है कि अभी मुझे कुछ हो जाएगा, धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है अपना, जो बहुत ही ज़्यादा जो है अंदर से ऐसे लगता है कि जैसे पेट में जो बटरफ्लाईज, तितलियाँ घूम रही हैं, और उल्टी को तबीयत करना, डिजीनेस हो जाना, तो इसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। अगर ऐसे एपिसोड बार बार हो रहे हैं तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे बस में अकेले ना जा पाना, भीड़ में एकदम घबराहट हो जाना, वो फोबिया है। तो ये सारे जो फोबिया है, पैनिक है, जनरलाइज, ये सब एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है
2: जी।
1: और वैसे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो एक WHO क्लासिफिकेशन जो ICD-10 है, उसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही OCD को भी लिया गया है, लेकिन जो आजकल जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें हमें इसको अलग एक कैटेगरी बना दिया गया है। तो वैसे इसमें भी एंग्जाइटी भी होती है
2: जी।
1: लेकिन इसके साथ साथ एंग्जाइटी के साथ साथ इसकी जो एंग्जाइटी है वो इससे रिलेटेड होती है कि उसको जो है वो बार बार काम करना पड़ रहा है, उसको रोकना चाहता है तो एंग्जाइटी होती है। तो इस तरह से ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर से थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि इसमें भी एंग्जाइटी होती है,
2: होती है।
1: इवन इसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, एंग्जाइटी भी हो सकती है और डिप्रेशन के सिम्टम भी आ सकते हैं
2: जी।

0: क्योंकि आदमी को जैसे बहुत ज़्यादा बहम पड़ रहे हैं तो बाहर जाने से रुक रहा है और उसके काम रुक रहे हैं, तो उस वजह से उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों हो सकते हैं साथ साथ।
1: डॉक्टर दिनेश, देखने में आता है कि लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हिचकिचाते हैं कि डॉक्टर के पास क्यों जाया जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बिल्कुल हल्के में लिया जाता है
0: जी।
1: उसमें जैसे कि OCD है
0: जी, आमतौर पर यही है कि जैसे आपका जो OCD है उसमें जैसे अभी एक कॉलर ने भी बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनको लगता है कि ये तो इम्पॉर्टेंट है कि आदमी सफाई पसंद तो होना ही चाहिए, तो कभी कभी वो उसको रेशनलाइज कर देते हैं और वो एक्सेस भी हो जाता है तब भी वो रेशनलाइज ही करते
1: जी,
0: रहते
1: जी.
0: हैं और उसकी आदत का हिस्सा मान लेते हैं अपनी, और अपने को वो उस बल्कि बीमारी के बजाय वो ज़्यादा अच्छा समझने लग जाते हैं।
1: यानी आदतें
0: जी
1: अलग हैं और समस्याएं
0: जी
1: अलग हैं।
0: तो लेकिन एक लेवल पे समझना पड़ेगा कि कहाँ तक ये आदत का हिस्सा है और कहाँ ये बीमारी बन चुकी है,
1: जी
0: तो उस वो लेवल आपको पहचानना होगा।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हमारे पास कई पेशेंट्स हैं, तो एक पेशेंट थे वो 23 साल से स्कूल टीचर थे, तो 23 साल से मैडम अकेले खाना खाती थी अलग और टीचरों से अलग, वो उनको छूने नहीं देती थी और घर में जा कर के हर चीज़ धोना, इवन कुंडी भी धो लेना, सारी चीज़ें धो लेना, लेकिन उनको लगता था कि शायद ये सामान्य चीज़ है। लेकिन एक बार उन्होंने अखबार में जब पढ़ा तो उसके बाद वो दिखाने आए, फिर उनकी सारी चीज़ें जब ठीक हुई तो वो कह रहे थे कि मैं 23 साल क्यों झेलती रही। तो ऐसा इसमें होता है कई बार।
1: यानी वही बात आ गई ना
0: जी
1: कि विशेषज्ञ के पास जाना
0: जाना
1: जरूरी है
0: जी
1: और हिचकिचाना जो है
0: हाँ बिल्कुल
1: उसको
0: बिल्कुल
1: दूर रखना है।
0: जी
1: यानी कोई भी अगर हल्की सी भी समस्या होती है तो दिखाने में कोई उसमें इतराज नहीं है।
0: बिल्कुल
1: जी, इस बीच एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं।
0: जी।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी। योगेश जी, हालो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहिए, क्या जानना चाहेंगे? आज का विषय है वहम की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य, और डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं।
2: हम ये जानना चाहते हैं कि छोटी मोटी बातों पर डरना या घबरा जाना, क्या ये भी उसी तरह के संकेत हो सकते हैं क्या?
0: जी, अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर ये बार बार होता है, हर रोज़ होता है और ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके दखल दे रहा है, यानी कि उससे आपको
2: अच्छा
0: परेशानी आती है, तो
2: अच्छा
0: तब यह बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर आप अपना
2: अच्छा
0: काम ठीक चला पा रहे हैं उसके साथ भी और ये बहुत अधिक मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है इसकी, तो यह
2: जी
0: सामान्य स्वभाव का हिस्सा हो सकता है।
1: जी
2: जी
1: जी
2: जी धन्यवाद
1: जी हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है OCD यानी वहम की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य। यदि आप आज के विषय के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2808034, और दूसरा नंबर हमारा रहता है 2808152, और एक नंबर और आपको आज बता देते हैं, वो रहेगा 2970400। डॉक्टर दिनेश, जैसे कि हम OCD की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या ये समस्या OCD की बच्चों और किशोरों में भी रह सकती है? किन आयु वर्गों को प्रभावित करता है OCD?
0: जी जो जहाँ तक OCD का संबंध है तो बिल्कुल बच्चों में हो सकती है, चाइल्डहुड OCD जो है नोन है, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो जो बच्चों के जो होते हैं उनमें ज़्यादातर कभी कभी बच्चों में थोड़े बहुत OCD सिम्टम्स जो है शुरू में डेवलपमेंटल एज का पार्ट भी हो सकते हैं। शुरू शुरू में बच्चे, आपने भी देखा होगा कई बार सड़क में चलते हैं तो इस तरह से चलते हैं कि हर खंभे को मैंने छूना है,
1: जी
0: कंपल्शन सी,
1: जी
0: जैसे यहाँ खंभा आया उसको छूना, फिर अगले को छूना, अगले को छूना, तो वो सामान्य डेवलपमेंट का पार्ट है। और कभी कभी वो कुछ चीज़ों को रिपीट भी करते हैं, लेकिन अगर वो जैसे मैंने पहले भी बताया एक्सेसिव हो रहा है, अपने को नुकसान कर रहा है और लोगों को परेशान कर रहा है, तो बीमारी हो सकता है। तो डेफिनेटली बच्चों में भी OCD शुरू हो जाता है, कई बार बहुत अर्ली एज में भी हो सकता है, जैसे 9 से लेकर भी शुरू हो सकता है, और यूजुअली जो सामान्य जो उम्र शुरू होने की होती है वो एडोलिसेंट के साथ होती है यूजुअली, जैसे आपका 20 के अराउंड जो 18-20 में शुरू होता है, लेकिन जो चाइल्डहुड OCD है वो जल्दी शुरू हो जाता है। तो
1: ये
0: दोनों चाइल्डहुड में भी हो सकता है और उसके बाद जो है एडोलिसेंट के बाद कभी भी हो सकता है,
1: वही कहते हैं ना
0: और
1: डॉक्टर
0: कभी
1: साहब
0: कभी लेट एज में भी हो सकते हैं, जिसको हम एल्डरली में कहते हैं, जैसे
1: जी,
0: एल्डरली में भी हो सकते हैं।
1: यानी किशोरों में भी ये समस्या हो सकती है।
0: जी
1: इस बीच एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: जी,
0: मैं
1: नमस्कार
0: जी सर, मैं तहसील कठुआ जिला मंडी से सुषमा कुमारी बात कर रही हूँ मैम।
1: जी। सुषमा जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या जानना चाहेंगे आज के विषय से संबंधित?
0: जी मैम, धन्यवाद मैम। जैसे आपने आज का जो विषय रखा बहुत अच्छा है मैम। पता क्या है, जैसे बहन की बीमारी का जो बोल रहे हैं, तो एक तो आपने हमें ये इस बात से अवगत करवाना है कि इसके जैसे जाते लक्षण भी बता दिए, और इस हम मतलब कई बार बहम में आ जाते हैं कि हाँ ये पेशेंट बीमार है, कहीं हमको ना हो जाए। तो क्या ऐसा होता है मैम कि ये सिर्फ एक मन का बहम होता है, और इस बहम मिटाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्लीज कृपया करके ध्यान से बताएं
1: जी। डॉक्टर
2: जी, अगर तो कभी कभार हो रहा है तब तो सामान्य है, और आप इसको रोक पा रहे हैं, और अगर आप इसको कुछ डाइवर्जनल एक्टिविटी कर ली, कुछ इधर उधर और सोच लिया तो ये हट गया, तब तो ये सामान्य है। लेकिन अगर ये मन में बार बार आ रहा है और आपके हटाने के प्रयास के बाद भी नहीं जाता है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये भी बहम का ही पार्ट हो। लेकिन अकेला एक चीज़ से नहीं पता चलेगा, पूरा हमें असेसमेंट करना पड़ता है उनकी, और सारी चीज़ें देखना पड़ती है, और लक्षण भी उसके साथ में, और क्या लक्षण हैं। तो कभी कभी बिल्कुल बीमारी के बहम भी हो जाते हैं, जैसे कई लोगों को इतना ज़्यादा हो जाता है कि जैसे उनको ऐसा हो जाता है कि मुझे HIV इतनी हो गया, तो वो बार बार टेस्ट कराते रहते हैं, यानी कि नेगेटिव आने के बाद फिर भी करा रहे हैं। अगर वो 2-3 बार 4 बार करा रहे, तो इसका मतलब पक्का तब तो बहम की बीमारी ही है। अगर एक आध बार करने के बाद सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद कभी दोबारा नहीं कराया, तो अब सामान्य हो सकता है। जैसे किसी को भी थोड़ा बहुत हो सकता है इस तरह का बहम। लेकिन अगर इस तरह की है कि बार बार फिर से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टरों को बता रहे हैं नहीं मेरे को तो है ही है, ये तो है ही है, तो इवन बहम से भी आगे जा सकता है। जैसे आपने भ्रम जो बताया, डिल्यूजन भी बन सकता है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो फिर ये ऑब्सेशन भी बन सकता है, डिल्यूजन भी बन सकता
1: जी।
2: है, तो उसके लिए तो इलाज की जरूरत पड़ेगी जी।
1: उसके लिए मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना ज्यादा बेहतर
2: है।
1: कहते हैं ना, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है। डॉक्टर दिनेश, जैसे कि आपके पास कोई व्यक्ति इन लक्षणों के साथ आता है, जैसे बार बार दरवाजा खोलना, फिर ताले की जैसे ताला लगा दिया, तो फिर बार बार देखने जाना कि मैंने घर को बंद किया या नहीं किया
2: जी।
1: और जैसे बार बार कोई लाइट के स्विच जो है चेक करना बार बार, तो ऐसी कई चीजें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, बार बार हाथ धोना।
2: हाँ जी।
1: तो ऐसी जब स्थिति आती है, तो अगर इन सब लक्षणों के साथ व्यक्ति आपके पास आता है, तो किस तरह से इलाज, किस तरह से शुरू होता है, किस तरह से देखा जाता है कि OCD है और एक मनोविकार है ये
2: जी? एक तो सबसे पहले तो यही है कि ये मनोविकार है या व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो हम डिसाइड करते हैं। तो हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, तो डिटेल्ड वर्कअप होता है, और उसके बाद कुछ हम टेस्ट भी करते हैं कि जो सामान्य जो रूटीन टेस्ट होते हैं कि किसी शारीरिक बीमारी की वजह से तो नहीं है, या कभी कभी हेड इंजरी के बाद भी उसी सिम्टम्स हो सकते हैं
1: जी।
2: और जैसे स्ट्रोक के बाद भी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें असेस करनी है कि किसी ऑर्गेनिक, उसको हम ऑर्गेनिक कॉज कहते हैं, वो रोल आउट करते हैं और अपना सारा फिजिकल वर्कअप करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये OCD है। फिर हम उस OCD में लेवल देखते हैं कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है या सीवियर है। तो अगर माइल्ड OCD है तो उसमें हम बिहेवियरल थेरेपी कर सकते हैं, जिसमें हम व्यवहार की थेरेपी करते हैं, उसको हम CBT कहते हैं, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो उसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है, उसको हम ERP कहते हैं, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ERP। उसका मतलब है कि जैसे जिस चीज़ का आपको बहम है, फॉर एग्जाम्पल आपको गंदगी का बहम है, तो उसकी हम एक लिस्ट बना देते हैं, हायरार्की उसको कहते हैं, कि हम एक लिस्ट बना देते हैं कि कौन कौन से बहम हैं और वो किस लेवल के हैं। जैसे कौन से बहम को रोकने पर, किस चीज़ को रोकने पर आपको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, तो उसके स्केल पर हम उसको हायरार्की बना देते हैं, और जो सबसे कम वाला होता है उसको हम सबसे पहले लेते हैं। तो उसके प्रति उसको हम एक्सपोज कर देते हैं, जैसे उसको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुंडी जो है चेक करनी है, तो हम बोलेंगे कि उसको रोकना है, यानी कि पहले उसको एक्सपोज करना है उस बहम से, फिर उसको रोकने के लिए बोलते हैं। तो जितना जैसे बार उसको जो रोक, जितनी देर के लिए वो रोक सकता है, क्योंकि रोकने से उसको एंग्जाइटी होगी, तो उसको बार बार हम रोकने की प्रैक्टिस कराते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो एक समय से रोकने
1: मतलब
2: की प्रैक्टिस,
1: एक जगह ठहराव लाते हैं
2: जी। जब वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं रोकने की, तो फिर उनको बार बार धीरे धीरे बहम खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो उसको हम एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी बोलते हैं। ERP इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डीप ब्रीदिंग है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं, JPMR वगैरह, इस तरह की चीज़ें उनको,
1: यानी काउंसलिंग भी करते रहते हैं
2: जी,
1: साथ साथ
2: जी।

0: तो डॉक्टर दिनेश, जैसे कि परिवार और दोस्तों की क्या भूमिका रहेगी एक ओसीडी पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए?
1: जी बहुत ही जरूरी है, सबसे अहम है परिवार की भूमिका इसमें। जैसे सबसे पहले तो परिवार वालों को बीमारी समझना है, क्योंकि परिवार में क्या होता है, वो उनको यूजुअली ना जैसे बार बार कर रहे तो उनको डांटना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, तेरे से क्यों नहीं होता, तू क्यों करता है ऐसा या करती है। तो बजाय उसके उनको समझना पड़ेगा कि वो भी रोकना चाहते हैं, कि ये उनके बस में नहीं है और ये बीमारी का हिस्सा है।
0: जी
1: जब उनको ये समझ आ जाएगा तो उनका व्यवहार अपने आप पेशेंट के प्रति थोड़ा बदल जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हम साइको एजुकेशन करते हैं फैमिली मेम्बर्स की, कि उनको बीमारी के बारे में समझाते हैं कि ये बीमारी का हिस्सा है, ये जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो समझना है कि इंटेंशनल नहीं है, पेशेंट की गलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है और इसकी बेबसी है, तो उसको एम्पेथाइज करना है। और दूसरा, उसके साथ आप जो है एज ए, जैसे मैंने बताया इसमें एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी करते हैं ERP, तो उसमें फैमिली का रोल एज ए को थेरेपिस्ट हो सकता है। मीन्स जैसे हमने उसको बिठा दिया, ठीक है, थोड़ी किसी मान लीजिए जिस चीज़ से उसको वहम है तो कोई चीज़ छूने भेज ली, फिर हमने बिठा दिया कि अब हाथ नहीं धोने, तो शुरू शुरू में डॉक्टर साथ देखेगा कि नहीं ये बैठ गया है, फिर उसकी एंगजाइटी मॉनिटर करेगा, अगर एंगजाइटी हो रही तो डीप ब्रीदिंग वगैरह कराए। अगर बाद बाद में क्या होता है, हम फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करते हैं उसमें कि वो एज ए को थेरेपिस्ट काम करें, मीन्स घर में बाकी के सेशन फैमिली मेम्बर्स लेंगे। तो फैमिली का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो थेरेपी में भी हेल्प कर सकते हैं।
0: जी,
1: जी
0: और इस समस्या को रोक सकते हैं।
1: जी
0: डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा, आज हमने ओसीडी यानी वहम की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी
1: जी
0: आपसे प्राप्त की। आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसके साथ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।

0: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे लाइव ऑन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यह आकाशवाणी शिमला है, लीजिए अब प्रस्तुत है।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। तो आइए आपको कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में बता दें जो आज आप आकाशवाणी शिमला की प्राइमरी चैनल से सुनने वाले हैं। आपको बता दें सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम में सोमदत्त बट्टू से राग भटियार पर गायन। साय 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुबह 9:30 पर मनी टॉक आप सुन सकते हैं 9:45 पर मंथन। और आज रात 10 आप सुनेंगे नाटक 100% की बात। दोपहर 1:10 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 2 का समय रहेगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम का। रात 10:30 पर सुनिएगा पुरानी फिल्मों से गाने। तो ये कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रम रहेंगे जो आप सुन सकते हैं आज आकाशवाणी शिमला की प्राइमरी चैनल से।

मीडियम वेव 387.6 मीटर, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी

0: करेंगे।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज, राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, ऐसे आयोजनों से राज्य की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता को मिलता है संरक्षण। हिमाचल के दो वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर व मेजर अंशुल बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित। मंडी जिले के सरकाघाट में रेशम कीट पालन से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। और राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर व सोलन जिले के कुछ इलाकों में आज व कल हीट वेव का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। समारोह के दौरान जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज भव्य तरीके से हो गया है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस महोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला समर फेस्टिवल के महोत्सव में रिज मैदान, गेटी थिएटर, माल रोड और संजोली समेत पूरे शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बॉलीवुड पंजाबी कलाकारों के साथ हिमाचली नाट्य और लोक कलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्टैचू मैन के करतब, फ्लावर शो, स्कूली बच्चों की डांस प्रस्तुतियां लोगों को लुभा रही है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचली स्वाद फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। आज माल रोड पर माँ की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल के दौरान लोगों की सुविधा के लिए HRTC स्पेशल बसें व टैक्सी चला रहा है, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ करने के बाद कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन में आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को जहां ऐसे आयोजनों से अपनी संस्कृति जानने का मौका मिलता है, तो वहीं शहर में आए पर्यटक भी प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होते हैं।
2: अपनी सभ्यता

0: और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं।
1: सांसद अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों से कहा है कि वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं व विकासात्मक परियोजनाओं में जिला हमीरपुर के लिए अधिक से अधिक बजट लाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करें। वे जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अपने स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के तहत आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में संचालित किए नशा उपचार केंद्रों और टीबी मुक्त अभियान की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने वन संपदा को आग से बचाने व मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक पौधरोपण करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के दो वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दोनों जांबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से यह साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज़ ऑन AIR और ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा आश्रय गृहों में रहने वाले वयस्कों व असहाय बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष आधार अपडेट केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को आधार सेवाएं आसानी से मिल सकें। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण व 5 व 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्पेशल मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अभियान 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह निशुल्क चलाया जा रहा है। रेशम कीट पालन प्रदेश सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तहत रेशम कीट पालन कार्यक्रम अब ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सिहारन गांव की मधु इस सफलता की एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने विभागीय जागरूकता शिविर से जानकारी लेकर सरकारी सहायता और मार्गदर्शन के साथ यह कार्य शुरू किया। मधु के अनुसार वे घर पर ही रेशम उत्पादन कर रही है और साल में 2 सीजन लगाकर वो 50,000 रूपए कमा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें रेयरिंग स्टैंड, ट्रेन, नेट, रेशम कक्ष, शहतूत के पौधे और रेशम सीड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन भी लगातार दिया जा रहा है। इस योजना से न केवल आय के अवसर बढ़े हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है। वर्तमान में क्षेत्र में लगभग 40 से 50 महिलाएं इस गतिविधि से जुड़ चुकी हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: लाहौल स्पीति जिले में मिनी तिब्बत के नाम से मशहूर स्पीति घाटी के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धरोहर स्थलों में शामिल ढंकर बौद्ध मठ जरूरी मुरम्मत कार्यों व उचित रख रखाव के चलते आगामी 5 दिनों के लिए पर्यटकों सहित यात्रियों के लिए बंद रहेगा। मठ प्रशासन ने इस कार्य के चलते सभी से सहयोग व धैर्य बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि रख रखाव का कार्य पूरा होने के बाद मठ को पुनः श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों

को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज व कल ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, HPTDC के बड़े पदाधिकारियों की सुविधाओं पर चली सुक्खू सरकार की कैंची। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पर्यटन निगम के पदाधिकारियों को नहीं मिलेगी विशेष सुविधाएं। अमर उजाला के शब्द है, निगम के होटलों में अब न 100 रुपये का कमरा, न खाने पर 50% छूट। शिमला में केबल ब्रिज, फ्लाईओवर, नई टनल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सीएम सुक्खू के 2200 करोड़ के स्ट्राइड प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी, ADB करेगा मदद। दैनिक भास्कर की एक खबर है, नई पंचायतों की पहली परीक्षा, आयोग की ग्रांट के लिए जून में पूरी करनी होंगी शर्तें। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में 3 जिलों के लिए 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज, राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, ऐसे आयोजनों से राज्य की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता को मिलता है संरक्षण। हिमाचल के 2 वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर व मेजर अंशुर बाल्टू शौर्य चक्कर से सम्मानित। मंडी जिले के सरकाघाट में रेशम कीट पालन से महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। और राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर व सोलन जिले के कुछ इलाकों में आज व कल हीट वेव का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए FM।

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और एफएम शिमला पर अब हाजिर हो गए हैं हम लेकर कार्यक्रम कुदरत के रंग।

और बिल्कुल इसी गीत की तरह हिमाचल की खूबसूरत वादियां बाहें फैलाए आप सभी का इंतजार कर रही हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। दोस्तों, जून का महीना है, मैदानी इलाकों में जहां सूरज देवता जी आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें हमारे हिमाचल की, हमारे पहाड़ों की रानी शिमला की, तो यहां की फिजाओं में इस वक्त कुछ अलग ही बात है। हालांकि दोपहर में थोड़ी धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम की जो ठंडी ठंडी बयां चलती है ना, आह, बिल्कुल सुकून दिल को मिल जाता है। और सबसे खास बात, इन दिनों शिमला में सज चुका है इंटरनेशनल समर फेस्टिवल। रिज मैदान पर रौनक है, रंग बिरंगी लाइट्स हैं, और शाम होते ही जो ठंडी हवा चलती है ना, वो रूह को सुकून दे जाती है। और आज कुदरत के रंग कार्यक्रम में हम कहीं दूर नहीं जाने वाले हैं, बल्कि अपनी इसी खूबसूरत शिमला की वादियों में घूमेंगे, समर फेस्टिवल की बात करेंगे, जानेंगे कि कुदरत ने इस शहर को किन खूबसूरत रंगों से नवाजा है। तो चलिए, सफ़र का आगाज हो चुका है और बेहतरीन से कुछ नगमे भी हम आपको सुनवा रहे हैं, और ऐसा ही एक और सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं। उसके बाद बातों का जो ये सिलसिला है वो यूं ही कंटिन्यू रहने वाला है।

जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, रिश्तों की मिठास हो या जीवन की खुशियाँ, हर रंग किसी न किसी एहसास से जुड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे कुदरत का हर रूप किसी खास कहानी को अपने भीतर समेटे हुए रहता है। और जैसा कि अभी हमने कहा है कि हम बात करेंगे आज शिमला समर फेस्टिवल की, बात करेंगे शिमला की। शिमला फेस्टिवल, शिमला जो समर फेस्टिवल है, ये सिर्फ गानों और स्टॉल्स का मेला नहीं है, ये हमारी संस्कृति का उत्सव है। जब आप रिज मैदान पर खड़े होते हैं तो एक तरफ आपको ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च दिखता है, दूसरी तरफ दूर तक फैली देवदार के पेड़ों की हरी भरी वादियाँ आपको दिखती है। और ख़ास करके जब सूरज ढल रहा होता है तो आसमान में जो नारंगी, लाल और गुलाबी रंग बिखरते हैं, सच में लगता है कि कुदरत ने अपनी कैनवास पर सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं पर बना दी है। और इस कुदरत के खूबसूरत नज़ारे के बीच जब समर फेस्टिवल की शाम को हिमाचली नाटी की थाम गूंजती है तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। क्या आपने कभी इस नज़ारे को महसूस किया है? चलिए अगर महसूस नहीं किया है तो आप शिमला समर फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं 8 जून यानी कि पिछले कल से आगे 12 जून तक आप भी आनंद ले सकते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एफएम शिमला पर इस समय आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम। और शिमला जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अक्सर मॉल रोड और रिज घूमकर चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको कुदरत के असली रंग देखने हैं तो थोड़ा सा हटके चलना होगा। समर फेस्टिवल की रौनक देखने के बाद आप सुबह सुबह जाखू हिल की तरफ जा सकते हैं, पोर्सल ग्लेन के जंगलों की तरफ जा सकते हैं आप। यहाँ पर देवदार के पत्तों से छनकर धूप आती है और चिड़ियों की आवाज़ें आपको अंदर तक बिल्कुल आपके मन को खुश कर देगी। और हाँ जी, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप शिमला फेस्टिवल में हैं, शिमला घूम रहे हैं इन दिनों, तो अगर आपको भूख लग जाए तो शिमला के लोकल जायके का आप आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि जो है फूड फेस्टिवल भी समर फेस्टिवल की एक शान है। और यहाँ पर आप तरह तरह के जायके का आनंद उठा सकते हैं, तरह तरह के फूड्स आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो आपसे बस यही हम कहना चाहेंगे, अगर आप यहाँ पर हैं, शिमला में हैं, तो इस फेस्टिवल का और यहाँ की वादियों का पूरा आनंद उठाइए, घूमिए फिरिए, खाइए और मौज कीजिए। बिल्कुल एफएम शिमला के साथ साथ सुनते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ शिमला में चल रहे समर फेस्टिवल का भी आनंद लीजिए।

चलिए जी, फिर शिमला का मॉल रूट घूम लिया, रिज भी घूम लिया, जाखू मंदिर भी घूम आए और समर फेस्टिवल का आनंद भी ले लिया। तो अब चलते चलते थोड़ी ही दूरी पर माँ श्यामला के यहाँ भी शीश नवाते आइए। बिल्कुल जी, कालीबाड़ी टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। ये मंदिर 1845 में बनाया गया था और ये देवी श्यामला, जो कि माँ काली का ही एक रूप है, उनको समर्पित है, जिनके नाम पर ही शिमला शहर का नाम भी पड़ा है। मंदिर की लकड़ी की अनूठी वास्तुकला और शांत वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है और ख़ास करके मंदिर परिसर से शाम के समय पहाड़ों के पीछे छिपते सूरज और ढलती शाम का नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत नज़र आता है।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरूपमा शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में संयुक्त सचिव अलार मेल मंगई डी ने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 180 से अधिक देशों में मनाया जाता है और दुनिया के सबसे बड़े जन स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। बैठक में योग दिवस के प्रचार प्रसार में रेडियो और डिजिटल माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ाने पर बल दिया गया। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा आश्रय गृहों में रहने वाले 18 वर्षों से अधिक आयु के जरूरतमंद व्यक्तियों और अनाथ

बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष आधार अपडेट केंद्र स्थापित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों का आधार पंजीकरण व 5 एवं 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्पेशल मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट अभियान 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह निःशुल्क चलाया जा रहा है। प्रदेश के 2 वीर सपूतों मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और शिमला जिले की जुब्बल तहसील के मेजर अंशुल वाल्टू को देश के प्रतिष्ठित

0: कि कैप्टन योगेंद्र और मेजर अंशुल ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से ये साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। 8 से 12 जून तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन आज सांस्कृतिक संध्या सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत दोपहर बाद हिमाचल की पहचान महानाटी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी कवि सम्मेलन, बॉलीवुड प्रतियोगिता और फन अट्रैक्शन में विभिन्न करेक्टर व स्टैचू मैन व फ्लावर शो का भी आयोजन किया जा रहा है। FM न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। कल सुबह 6:57 पर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम शिमला पर अब कार्यक्रम राग छाया।

0: राग छाया कार्यक्रम में ये गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म थी रिफ्यूजी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

0: राग छाया कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अदनान सामी और साथियों की आवाज़ों में बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत अभी आपने एंजॉय किया। आप सुन रहे हैं राग छाया कार्यक्रम।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: सरगम फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

रागछाया कार्यक्रम के आखिरी में आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे राग छाया कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। समारोह के दौरान जेपी नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज भव्य तरीके से हो गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस महोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: शिमला समर फेस्टिवल के महोत्सव में रिज मैदान, गेटी थिएटर, माल रोड और संजोली समेत पूरे शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बॉलीवुड पंजाबी कलाकारों के साथ हिमाचली नाट्य और लोक कलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्टैचू मैन के करतब, फ्लावर शो, स्कूली बच्चों की डांस प्रस्तुतियां लोगों को लुभा रही है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचली स्वाद फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। आज माल रोड पर माँ की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल के दौरान लोगों की सुविधा के लिए HRTC स्पेशल बसें व टैक्सी चला रहा है, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ करने के बाद कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन में आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को जहां ऐसे आयोजनों से अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है, तो वहीं शहर में आए पर्यटक भी प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होते हैं।
3: अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं।
1: प्रदेश के 2 वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दोनों जाबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घूंसा गाँव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से ये साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। SDM कुनिका एकर्स ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग

0: ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज व कल ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: FM

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। और अब समय हो चुका है पुरानी फिल्मों से गीतों का।

पुरानी फिल्मों से गीतों के इस सफर में आज आपकी हम सफर हूं मैं भारती, और पहला गीत जो मैंने आपके लिए चुना है उस फिल्म का नाम है सबसे बड़ा रुपया। महमूद और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत लिखा मजरूह ने है और संगीतकार हैं बासु मनोहरी। तो लीजिए, पेश है आपके लिए ये मस्ती भरा नगमा।

0: पुरानी फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और ये मस्ती भरे गीतों का सिलसिला यूं ही जारी है। अगला गीत हमने आपके लिए चुना है 2 और 2 5 इस फिल्म से। गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने, अनजान ने ये गीत लिखा है और स्वरबद्ध किया राजेश रोशन ने। तो लीजिए पेश है आपके रेडियो सेट्स पर हमारा अगला ट्रैक।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

कभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चित्रलेखा, पुरानी फिल्मों से गीतों के इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने आपके लिए इसी फिल्म से चुना है, जिसे अपनी आवाज दी है मन्ना डे ने, बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीतकार हैं रोशन। तो लीजिए, पेश है ये अगला नगमा आपके लिए।

शरारत भरे इन पुराने फिल्मी गीतों का मजा आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। देश प्रेमी इस फिल्म से अब आप सुनेंगे अगला नगमा किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और सुरों से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

0: बोलता हूँ आजा।
1: अरे नहीं बाबा नहीं।
0: अरे सीधी तरह आजा।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
3: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: देखिए कार्यक्रम का वक्त अब पूरा हो चुका है। पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इतने सादगी भरे गीत सुनकर आपको जरूर मजा

आया होगा। पुरानी फिल्मों से गीतों का आनंद आप ले रहे थे 103.7 MHz FM शिमला पर, और अब वक्त है पहाड़ी संगीत का।

पहाड़ी संगीत में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। हर लोकगीत के पीछे एक कहानी है, ये हमारी संस्कृति को संजोए हुए है और हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो आइए सुनते हैं पहला लोकगीत ओम प्रकाश गर्ग की आवाज़ में।

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप आनंद ले रहे हैं पहाड़ी संगीत का। श्रोताओं, पहाड़ी लोक संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हिमालय की गोद में बसने वाले लोगों का जीवन है, उनका संघर्ष है, प्रेम और प्रकृति के साथ उनका अटूट रिश्ते का एक जीवंत दस्तावेज है। और अब इसी के साथ हम पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं अगला लोकगीत नरेंद्र कसरेक की आवाज में। उम्मीद है आपको ये लोकगीत जरूर पसंद आएगा।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी लोकगीतों की गहराई को समझने के लिए उनके सामाजिक संदर्भों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जानना जरूरी है। ये संगीत केवल आवाज का नहीं बल्कि पहाड़ों की गूंज का हिस्सा है। और कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज हुए हैं इन कार्यक्रमों में, इन लोकगीतों में जो आप सुनते हैं हमारे माध्यम से, इसके लिए आपको पहाड़ी संगीत सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं रेणु और साथियों की आवाज़ों में।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU।
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: पहाड़ी संगीत में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत गीता की आवाज में। यूं ही बने रहिए हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। लिखित इतिहास भले ही आम जनता तक ना पहुंचा हो, लेकिन लोकगीतों ने सदियों पुरानी परंपराओं, वीर गाथाओं और सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखा। इतिहास की स्याही भले ही आम जन तक ना पहुंच पाई, पर इन गीतों ने सदियों पुराने हर रीति रिवाज निभाई। वीर गाथाएं, सामाजिक ताना बाना और अपनों का प्यार लोकगीतों ने ही रखा है आज भी पुरखों का संसार जीवित। तो लीजिए, इसी बात पर आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत। आवाज दी है नीलम गंधर ने। आपके लिए पेश है ये लोकगीत 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: बजने को है, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। गीत संगीत मनोरंजन का ये सिलसिला यूं ही जारी है। लीजिए पेश है आपके लिए नगमा। फिल्म का नाम है मुसाफिर।

दो मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की

तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से महिलाएं सुनेंगी अपना दैनिक कार्यक्रम महिला सम्मेलन। आप हमारा यह कार्यक्रम FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।

0: बहनों, मुस्कुराहट किसी मेले में नहीं बिकती, खुशी किसी दुकान पर नहीं मिलती। यह तो मन की वह संपत्ति है जो छोटी छोटी बातों में छिपी होती हैं, कभी बच्चों की हंसी में, कभी परिवार के साथ बिताए गए पलों में, तो कभी किसी की मदद करके मिले संतोष में।
1: जी, महिला सम्मेलन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ मीनाक्षी शर्मा
0: और मैं हूँ दयावती। आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: देखिए दयावती, आज हम जिस टॉपिक पे बहनों से बात करेंगे वो है, देखिए, एक ऐसे एहसास की जिसकी चाह हर व्यक्ति की होती है।
0: जी,
1: आज हम बात करेंगे खुशी की।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, खुशी एक ऐसा खजाना है जिसे पाने के बाद हम कुछ समय के लिए अपने दुख, चिंताएं और परेशानियां भी भूल जाते हैं। और वो क्या है? खुशी तो है
1: जी, लेकिन अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में ही मिलेगी, यानी कि जब घर की कोई बड़ी समस्या हल होगी, या जब कोई बड़ा सपना पूरा होगा, या जब जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? दरअसल जीवन हमें सिखाता है कि खुशी केवल बड़ी बातों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी मिलती है।
0: जी हाँ, यानी कि सुबह की एक प्यारी सी शुरुआत, परिवार के साथ चाय का एक कप, किसी पुराने दोस्त का फोन आ जाना, यानी कि अचानक से जब फोन आ जाता है, या फिर बच्चों की सफलता, या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके मिला संतोष। बहनों, ये सब खुशी के छोटे छोटे स्रोत होते हैं जो हमें यूं ही मिल जाते हैं।
1: देखिए, वहीं महिलाओं के जीवन में तो खुशी के अनेक रंग होते हैं।
0: जी,
1: कभी बच्चों की मुस्कान में, कभी परिवार के साथ उनका जो स्वास्थ्य है उसमें, कभी किसी अपने की सफलता में, तो कभी अपने किसी छोटे से सपने के पूरे होने में भी जो महिलाएं वो खुश हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि जो हमारी जो बहनें हैं ना, इस समय आपके और हमारे चेहरे पर भी वैसी ही खुशी हैं जो हम अपनी बहनों से इस समय हर बात साझा करती हैं, तो कितनी प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर भी आ जाती है और हमारी बहनों के चेहरे पर भी आ जाती हैं। और देखिए बहनों, एक बात तो हम सभी जानते हैं ना, कि और हमने ये महसूस भी किया होगा कि जब हम किसी और को खुश करते हैं ना, तब हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है।
1: जी जी,
0: किसी को हौसला देना, किसी की मदद करना, या फिर किसी दुखी व्यक्ति को दो मीठे बोल कह देना, ये जो है ना, ये छोटी छोटी बातें हमारे मन को भी प्रसन्न कर देती हैं। और यही एक जो है खुशी जो होती है, छोटा छोटी खुशियां जो होती हैं वो बड़ा ही सुकून भी देती हैं हमें।
1: बिल्कुल, यही कारण है कि कहा जाता है कि खुशी बांटने से घटती नहीं है, कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। मैंने खुशी का संबंध केवल मन से नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य से भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: देखिए क्या होता है ना दयावती, जब हम खुश रहते हैं तो हम महसूस करते हैं कि तनाव भी जो है कुछ कम हो गया है, और जो हमारा मन है ना वो भी हल्का रहता है।
0: जी हाँ।
1: और जो हमारा जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण होता है वो भी एक सकारात्मक सा हो जाता है ना। और खुश रहने वाला व्यक्ति जैसी भी परिस्थितियाँ उसके जीवन में आए, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ उसके जीवन में आए, उसका सामना बड़े साहस के साथ करता है ना।
0: बिल्कुल, और यही इसीलिए जो है खुशी को भविष्य के लिए जो है ना बहनों, उसे टालिए मत, ये मत सोचिए कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तब हम खुश होंगे, बल्कि आज इसी क्षण इसी समय अपने जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां हैं उन्हें पहचानिए और उनमें खुश रहना सीखिए।
1: और देखिए ना, बहुत से जो लोग प्रसन्न रहते हैं वो जो, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना जो है बड़े धैर्य से, बड़े साहस के साथ कर लेते हैं। खुशी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है ना।
0: जी हाँ, इसका अर्थ ये तो नहीं है बहनों कि जीवन में दुख या फिर चुनौतियाँ नहीं आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी कभी गम आते हैं, लेकिन खुश रहने की आदत हमें कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने की शक्ति देती है। यानी कि अगर हम खुश रहेंगे तो देखिए सकारात्मक माहौल बना रहेगा और परिस्थिति जैसी भी होगी, चाहे कितनी भी कठिन होगी, हम उसका सामना डटकर कर पाएंगे।
1: तो बस जीवन की छोटी छोटी खुशियों को

0: बहनों, आपको पहचानना है, उन्हें अपनाएं और दूसरों के जीवन में भी खुशी के कुछ पल जोड़ने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं।
1: बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहनों, खुशियाँ बड़ी नहीं होती, उन्हें महसूस करने वाला दिल बड़ा होता है। जो हर पल में अच्छाई ढूंढ ले, वही सच्चे अर्थों में खुश रहना सीख जाता है। और वैसे भी हमारी बहनों को, अगर हम अपनी बहन को एक गीत सुनवा दें तो वो वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो अब गीत का भी वक्त हो चला है, सुनाते हैं ये बहनों को ये गीत।
0: जी

0: तो मीनाक्षी, अब बात करते हैं अपनी बहनों से नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में।
1: जी
0: नशा मुक्ति अभियान एक ऐसा अभियान है बहनों, जिसका उद्देश्य लोगों को नशे की आदत से मुक्त कराना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। क्योंकि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है।
1: जी नशे की समस्या एक बड़ी गंभीर समस्या है।
0: जी
1: ये सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा भी है जो विशेष रूप से युवा वर्ग को प्रभावित कर रही है। ये ऐसी समस्या है, और
0: जी
1: भारत जैसे देश में जहाँ पर जो युवा आबादी है ना देवती, वो बहुत ज़्यादा है, और नशा भी एक बड़ी चुनौती बन गया है।
0: बिल्कुल
1: नशा चाहे फिर किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, सिगरेट, ड्रग्स, किसी भी चीज़ का हो, ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बर्बाद करता है।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, भारत में नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान लोगों को नशे के खतरे से अवगत कराने, उन्हें सही राह दिखाने और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करने का काम कर रहा है। और
1: जी
0: साथ ही बहनों, ये अभियान सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलाया जाता है।
1: जी बिल्कुल। और नशा मुक्त जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्तों का सहयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समाज भी इस समस्या के खिलाफ एकजुट हो जाए
0: जी
1: तो नशे पर काबू पाया जा सकता है।
0: बिल्कुल
1: हमें इस दिशा में जागरूकता फैलाने और एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है,
0: बिल्कुल
1: ताकि नशे को जड़ से ही खत्म किया जा सके।
0: बिल्कुल। और नशा एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। कई बार लोग अपनी समस्याओं से बचने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये उनकी मुश्किलों को और यानी कि अधिक बढ़ा देता है। ये व्यक्ति को ना केवल आर्थिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि उनके रिश्तों को भी बर्बाद कर देता है।
1: जी, और इसलिए नशे की लत से जूझ रहे लोगों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। देखिए देवती, क्या होता है ना, कई बार लोग कह देते हैं कि हम जो है गम भुलाने के लिए पीते हैं ना,
0: जी
1: इससे मन को शांति मिलती है, लेकिन क्या सचमुच नशा करने से व्यक्ति दुखों से मुक्त हो पाता है? जी नहीं, अगर ऐसा होता तो पूरे जो संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी होता ही नहीं, कोई भी चिंताग्रस्त नहीं होता है ना।
0: बिल्कुल। और कहने का अर्थ यही है बहनों कि नशे से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। इसे इस आदत को जो छोड़ देना ही बेहतर है। और लेकिन कई बार व्यक्ति नशे की लत में इतना पड़ जाता है, तो देखिए उसके लिए जो है नशा छोड़ना इतना आसान नहीं हो पाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: इसलिए नशा छोड़ना या छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं बहनों, और इन केंद्रों में लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
1: बिल्कुल। युवा वर्ग जो है वो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर
0: जी
1: युवा ही नशे की गिरफ्त में आ जाए तो देश की जो प्रगति है, जो देश की जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है।
0: बिल्कुल
1: इसलिए हमें खेल, शिक्षा, योग और भी बहुत सारी गतिविधियाँ, जैसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ और जो सकारात्मक जीवन शैली है ना, उसको अपनाकर जो हमारे युवा है उनको सही दिशा देनी चाहिए।
0: बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि नशे से बचने के लिए हमें बच्चों को अच्छी संगति अपनाने के लिए, खेल कूद और योग में भाग लेने के लिए और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और साथ ही माता पिता को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें नशे के दुष्प्रयोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों से प्रतिदिन जब वो स्कूल से बाहर आते हैं या कहीं से भी बाहर आते हैं, तो वो बच्चे से पूरे दिन का दिनचर्या पूछे कि उसने आज क्या क्या किया। दोस्त बनकर आप उनसे पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे।
1: जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और नशे के खिलाफ जो है वो लड़ाई केवल अगर हम ये सोचें कि ये सरकार की ही है, तो बहनों ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब समाज जागरूक होगा तभी नशा मुक्त और स्वस्थ भारत का निर्माण जो हम देख रहे हैं, जो सपना, वो पूरा होगा।
0: जी
1: और नशा मुक्त जीवन एक स्वस्थ, सुखी और सफल जीवन की भी

0: तो बहनों, भारत सरकार द्वारा समय समय पर लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं और इन योजनाओं का उद्देश्य जन कल्याण है। और इन्हीं योजनाओं में से एक है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे।
1: जी, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक ऐसी छोटी बचत योजना है जो बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए शुरू की गई है।
0: जी हाँ, इसका उद्देश्य है कि माता पिता अपनी बेटी की शिक्षा और शादी के लिए अच्छी राशि जमा कर सकें।
1: जी, इस योजना में माता पिता या अभिभावक अपनी बेटी के नाम से बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकते हैं। ये खाता बेटी के जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक कभी भी खोला जा सकता है। इसमें हर साल न्यूनतम 250 रुपये से और अधिकतम 1,50,000 रुपये तक जमा किया जा सकता है। और इस योजना की खासियत ये है कि इसमें अन्य योजनाओं की तुलना में ज़्यादा ब्याज दर मिलती है और साथ ही इसमें टैक्स से छूट भी मिलती है। यानी ये निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और फ़ायदेमंद भी है।
0: बिल्कुल, आप ये पैसे चेक के माध्यम से, नगद या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी जमा कर सकती हैं बहनों। और इस योजना के तहत आपको सिर्फ 15 साल तक पैसे जमा करने हैं और इसके बाद अगले 6 वर्ष तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। लेकिन इसमें ब्याज जुड़ती जाएगी और 21 वर्ष पूरे होने पर पैसा ब्याज सहित उस बेटी को वापस मिल जाता है जिसके नाम पर ये अकाउंट खुला है।
1: जी, तो अब बात करते हैं खाता कैसे खोलें। इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में जाना होगा। वहां जाकर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने हेतु फॉर्म में लिखी गई सारी जो जानकारियां हैं वो दर्ज करवानी होगी और मांगे गए सभी दस्तावेजों को उसके साथ आपको लगाना होगा, जैसे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पहचान पत्र आदि।
0: जी, अब आपको ये फॉर्म डाक घर या फिर बैंक में जमा कर देना होगा बहनों। इसके अलावा खाते खुलने के लिए जो है प्रीमियम राशि 250 रुपये भी जमा करनी होगी।
1: जी, सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ के बारे में भी बहनों आपको बता देते हैं। ये एक बेहतर योजना है जो आपको बेहतर ब्याज दर प्रदान करती है।
0: जी, साथ ही इस योजना में निवेश करने से आपको टैक्स पर भी छूट का लाभ मिलता है।
1: जी, इस योजना में आप 250 से 1,50,000 तक की राशि जमा करवा सकते हैं।
0: और साथ ही बहनों, ये योजना एक लंबी अवधि की निवेश योजना है। अगर आप इस योजना के अंतर्गत निवेश करते हैं तो आपको एक लंबी अवधि में शानदार रिटर्न का लाभ भी मिलेगा। तो हुआ ना फायदा ही फायदा।
1: बिल्कुल, और इस अकाउंट का संचालन करने वाले माता पिता या अभिभावक इस अकाउंट को देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर करवा सकते हैं।
0: जी, तो बहनों उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना का लाभ उठाएंगी और अपने आसपास सभी लोगों को भी जागरूक करेंगी।
1: जी।

0: तो बहनों, समय समय पर भारत सरकार सभी स्तरों पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती हैं।
1: जी, अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें देश के अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विशेष समुदायों को सशक्त बनाने पर बल दिया जाता है।
0: जी, तो चलिए अब आपको बताते हैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में।

0: जी, इसी के अंतर्गत आता है एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए आर्थिक संसाधन
1: जी, और मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना
0: जी, साथ ही में गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता
1: जी, और वहीं राज्य एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास में उचित हिस्सेदारी और अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन यानी कि गंदी बस्तियों की स्थिति में सुधार
0: जी, साथ ही में सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास, ये सभी जो है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और दैवती, आज हम बहनों से बात करेंगे गरीबों के कल्याण के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना
1: के बारे में। जी हाँ, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्वरोजगार कार्यक्रम के उद्देश्य हैं गरीब ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ऐसा बैंक ऋण और सरकारी सहायता के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक भौतिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
0: जी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के 2 मुख्य घटक हैं। नंबर 1 शहरी स्वरोजगार योजना और दूसरा है शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम।
1: जी,
0: इन कार्यक्रमों के अंतर्गत भौतिक और आर्थिक लक्ष्यों का कुछ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।
1: जी, और वहीं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना और एक टिकाऊ समुदाय व सामाजिक आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करना। क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 200 जिलों में शुरू किया गया है।
0: जी, इन जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है।
1: जी,
0: बचे हुए जिलों में संपूर्ण ग्रामीण योजना के अंतर्गत आवंटन जो है वो किया गया है,
1: निश्चित किया गया है। और प्रतिशत गरीबी को की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के लिए कुछ समय तक निर्धारित किया जाएगा, जब तक इन जिलों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
0: जी, साथ ही आवंटन का निश्चित प्रतिशत ऐसे गांवों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की काफ़ी आबादी है।
1: जी, तो ये हैं बहनों गरीबों के लिए स्वरोजगार एवं मजदूरी रोजगार योजना, जो कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में से एक हैं।
0: जी, तो दयावती, क्यों ना कार्यक्रम का अंतिम गीत बहनों को सुनवा दिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

बहनों अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास लौट कर आता है। तो इसी विचार के साथ अनुमति लेते हैं कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सम्मेलन कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: जागृति शर्मा।

गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं।

0: के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of Nation First, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 1:10 हो चुके हैं। पेश है लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला।

नमस्कार। दोपहर की इस सुनहरे सफर कार्यक्रम हेलो शिमला में मैं आपकी हम सफर भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज चलिए कार्यक्रम में यादों के संदूक को खोलते हैं। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आपके बचपन की उस जादुई दोपहर की, जिसमें आप शायद मस्तियाँ करते हों, आम तोड़ते हों, कोई गेम खेलते हों, या कोई ऐसी बचपन की बात जो आज भी आपकी यादों को ताज़ा करती हो। तो उठाइए फ़ोन, लगाइए हमें कॉल और बताइए कि आपके बचपन की दोपहर कैसी थी, क्या बदमाशी आप करते थे, क्या खेल आप खेलते थे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में आज आवाज़ आपकी होगी और गीत हमारे होंगे। अब बातों का जब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे, उससे पहले आपको फ़ोन नंबर हम बता देते हैं। फ़ोन नंबर है 0177, ये हमारा एसटीडी कोड है, 2808034 और 2808152। इन नंबर पर आप हमें कॉल करें और बताएं आपकी बचपन की दोपहर कैसी थी। कार्यक्रम का ये बातों का जो सिलसिला है, ये शुरू करने से पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये नगमा।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो शिमला। और फोन इन इस कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं, सुनते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं तहसील कसौ जिला मंडी कृष्णनाथ बात कर रहा हूँ।
0: जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपका नाम नहीं सुन पाई, फिर से बताएं प्लीज, कौन बात कर रहे हैं?
1: कृष्णलाल, तहसील कसौ से बात कर रहा हूँ मैम।
0: कृष्णलाल जी, आप हेलो शिमला कार्यक्रम के हमारे आज के पहले कॉलर हैं। करसोग से आप बात कर रहे हैं, हिमाचल से ही, और आपको हम बता दें कि यादों के इस सफ़र में आज हम बात कर रहे हैं आपके बचपन की दोपहर की, तो कोई बात साझा कीजिए।
1: जी मैम, देखिए मैम, मैं बड़ा शरारती हुआ करता था बचपन में, और जैसे दोपहर में कोई घर में, जब मैं छुट्टी के दिन घर में होता था
0: जी,
1: मम्मी पापा दोपहर में आराम कर रहे होते।
0: अच्छा,
1: और मैं पानी लाता था गिलास में और उन पर छिड़कना, वो उनकी नींद खराब हो जाती थी, और डांट मिलती थी मेरे को, बहुत डांट मिलती थी, कभी मुझे मार भी खानी पड़ती थी। मैं इन शर्तों में बड़े मुश्किल से बाज आया।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कृष्ण जी कि आपने हमसे ये साझा किया, और आपको अब भी ये शरारत आपकी याद है। माता पिता हमेशा बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर ये जो बचपन की मार और डांट है, शायद ये भी ज़रूरी होती है हमें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए। बिल्कुल
1: जी
0: कृष्ण जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, हमसे बात साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम प्ले कर रहे हैं आपके लिए ये सॉन्ग।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो शिमला और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कौन है वो। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार। हेलो शिमला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
3: अरे मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
2: सतीश जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। उम्मीद है आपको विषय के बारे में पता है।
3: हाँ, मुझे पता है बचपन की यादें कैसे साझा कर सकते हैं।
2: जी तो कीजिए कि बचपन में दोपहर में आप क्या किया करते थे?
3: दोपहर में सुबह से बचपन में जैसे दोपहर में जैसे जाते थे सुबह से जैसे 10 बजे से जाते थे खाना ना खाए के
2: जी।
3: तो बचपन में शरारत करते कैसे गिल्ली डंडा खेलते थे और डिंगू वगैरह जो नचाते थे, लिप्पो वगैरह, खो खो है। और दोपहर में जैसे कहीं काऊ घर में बैठते थे तो पहले बचपन में टीवी चलती थी और जैसे रामायण आती थी, शक्तिमान आता था, सब वो भी देखते थे बचपन में। और जैसे चोर सिपाही वाला गेम था वो भी अच्छा लगता था, गेम पहले खेलते थे।
2: तो मतलब बहुत ही सुनहरा बचपन बीता है आपका, खेल कूद से भरा हुआ, टीवी सीरियल्स आपने सारे जो है आपकी यादों में अभी भी बसे हुए हैं।
3: हाँ हाँ, और मैडम जी जैसे मामा मामा घर पे आते थे तो पहले साइकिल की वैल्यू ज्यादा थी तो साइकिल कम थी है तो मोटरसाइकिल अब तो ज्यादा और कम होगी साइकिल की, लेकिन मोटरसाइकिल ज्यादा होगी। साइकिल मामा मामा आते थे तो गाँव में बहुत कम साइकिल मिलती थी तो मामा मामा आते तो साइकिल साइकिल चुरा के धीरे से ले जाते थे सीखने के लिए।
2: अच्छा, मतलब उनकी साइकिल आप चुपके से लेके जाते थे चलाने के लिए, सीखने के लिए?
3: हाँ, सीखने के लिए। एक दिन मेरे का हुआ
2: जी
3: वो उसमें

0: ट्रक छिट गया ट्यूब में टायर में, तो पंचर हो गई
1: जी।
0: तो मेरी बहुत डांट पड़ी, मार भी पड़ी थी, तो ऐसी शरारतें हैं, और टूट गई थी साइकिल। तो पहले स्कूल में जाते थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो कहो कि पेंसिल चुरा लेते थे, किताब वगैरह ऐसे, और ऐसे यही काम होते रहते थे बचपन में, दुकान स्कूल में मास्टर मारते थे।
1: सतीश जी, तो ये सारी यादें अभी भी आपके जहन में हैं, और उम्मीद है इनको याद करके आज भी आप मुस्कुराते होंगे।
0: अब तो जैसे अब तो मैडम जी, अब तो ज़्यादातर मोबाइल में आजकल सोशल मीडिया चल रही है, मोबाइल पे चल रही है, इतना बचपन में क्या, तो आदमी के पास टाइम भी नहीं है, बच्चे के पास रहती थी, माँ रोती है, वो बच्चा रोता तो माँ कहती थी अरे मोबाइल ले तो गेम खेलेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेकिन अब वो बात दौर चला गया, क्योंकि हमारे बचपन में मोबाइल वाल चलती नहीं थी, तो यही गेम से बहुत अच्छा लगता था, और मेरे लड़का लड़कियाँ आती हैं संग, तो उसमें डिक्का मिक्की खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें जैसे कहीं भी पानी नहीं बरसता था, तो बारिश नहीं होती, तो मेरे इधर गांव में जैसे जो भौरियाँ होती हैं मेरे इधर, जो आटे की मार के तो उसे सेकी जाती हैं, उसमें कंडे की आग हो तो उसमें सेकी जाती हैं, और तो फिर वो सेक के पूरे गाँव को खिलाते थे, तब घर घर द्वारे, फिर उससे पानी छिड़कते थे, तब लोटते थे घर के द्वारे, तो फिर टाइम से फिर बारिश होने लगती थी।
1: बिल्कुल, आजकल जैसी गर्मियां हैं, आपको जो ये आप करते थे पहले, ये एक बार फिर से ज़रूर करना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं कार्यक्रम में समय थोड़ा सीमित रहता है, और आपने इतनी सारी अपने बचपन की यादें हमसे साझा की, हमें बहुत अच्छा लगा सतीश जी।
0: क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो मैडम जी जैसे कलिंदे खरबूजा ककड़ी खीरा है, तो इनका सेवन करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी।
0: और जैसे पत्तियों को पानी रखना चाहिए, कहेंगी तो उसमें पानी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, कितने अच्छे संदेश आप सतीश जी दे रहे हैं कि ये सब करना चाहिए। आपने अपने बचपन की याद साझा की, अभी और भी बहुत से कॉलर्स हैं जिनकी यादें हमें सुननी है, तो आपके कॉल को अब यहीं विराम देते हैं, और आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में ये नगमा। सतीश जी, आपने कार्यक्रम में कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी FM शिमला पर प्रोग्राम चल रहा है लाइव इन हेलो शिमला। कार्यक्रम में आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 0177 ये हमारा STD कोड है, 2808034 या 2808152 पर कॉल करें, हमसे बात करें। आज आवाज आपकी है और गीत हमारे हैं। अगले हमारे कॉलर कौन से जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
4: जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ आकाशवाणी FM शिमला के साथ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।
3: वाह वाह, क्या बात है। कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
4: बात ही मैं, नमस्कार, गुड आफ्टरनून।
3: नमस्कार जी।
4: आकाशवाणी FM शिमला का नियमित श्रोता और आप सभी का शुभचिंतक अनिल शर्मा सुनाम पंजाब से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ जी।
3: अनिल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज आप कार्यक्रम
4: मैम आपका भी स्वागत है, जहाँ तक आपकी से मधुर सी आवाज आ रही है, आपका भी स्वागत है
3: जी। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो आज हम यादों के पिटारों को खोलकर उसमें से कुछ यादें निकाल रहे हैं। तो आपकी याद कौन सी है बचपन की, दोपहर की, वो बताएं।
4: बिल्कुल मैम, यादें तो बहुत होती हैं, लेकिन एक याद मैं शेयर करूंगा आपसे कि हमारे पंजाब में बरसात बहुत कम होती है
3: जी,
4: और हिमाचल तो खैर बरसात होती रहती है
3: जी।
4: हमारे जब दोपहर को बरसात होती थी ना, गर्मी में खासकर जैसे आजकल
3: जी,
4: तो हम बचपन में क्या करते थे, जैसे पानी चलता था ना गलियों में से जाता था,
3: हाँ जी,
4: हम उस पानी में बैठ जाते थे।
3: अच्छा, चलते पानी में सड़क पर ही बैठ जाते थे?
4: बिल्कुल मैम, चलते पानी हम बैठ जाते थे और बहुत आनंद लेते थे। ठंडे पानी, बरसात का पानी आता था ना जी, बहुत आनंद लेते हम।
3: मतलब तपती गर्मी से आपको राहत मिलती थी उस बारिश में बैठ कर?
4: मैम बहुत दूर तक भाग जाते थे और हमारे घर वाले हमारे पीछे पीछे।
3: फिर जब पकड़ते होंगे आपको तो पिटाई भी होती होगी?
4: बिल्कुल मैम, पिटाई भी होती थी। वो एक तो कपड़े भी नहीं पहने थे, वो पंजे छप जाते थे।

0: माता के हाथों के।
1: अनिल जी, आपकी जो ये शरारत थी जिसमें मस्ती भी थी, और खैर आपको तो गर्मी से राहत मिलती थी उस वक्त।
0: हाँ बिल्कुल, मैं गर्मी से राहत तो खैर मिलती है, आज आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ, कम से कम मेरे ख्याल में 44-45 नियर रोड है टेम्परेचर पंजाब में।
1: बिल्कुल जी,
0: लेकिन हम वेट कर रहे हैं बरसात की, कब बरसात हो और हमें थोड़ी राहत मिले। वो कुछ यादें बहुत हैं वैसे बचपन की, ये याद खास है हमारे लिए।
1: देखिए, ये अपने दोस्तों के साथ की हुई जो मस्ती होती है ना, यही वो है जो हमें आगे चलकर भी याद रहती है।
0: हाँ बिल्कुल, मैं वही है ना, आज बहुत दिन याद करते हैं, लेकिन उस टाइम बरसात होती थी अक्सर। आजकल तो क्या के पेड़ वगैरह नहीं है, लोगों ने काट दिए
1: जी,
0: तो बहुत फर्क पड़ गया, बरसात बहुत कम होती है पंजाब में।
1: चलिए,
0: होती है तो वही 2-3 दिन के लिए होती, ज्यादा नहीं होती।
1: अनिल जी, ये यादें जो संजो के हमने रखी होती हैं, ये खास होती हैं, और आपने हमसे ये खास यादें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हेलो शिमला कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए गीत, कॉल करने के लिए
0: थैंक यू मैम,
1: धन्यवाद अनिल जी।
0: थैंक यू।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो शिमला, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बचपन की उस जादुई दोपहर की, जिसमें आप क्या शरारतें करते थे, क्या कुछ करते थे, वो आप हमसे आज साझा कर रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो।
5: हेलो, नमस्कार।
4: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, शिमला कोट हाई से।
4: राकेश जी, हेलो शिमला कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: जी, धन्यवाद आपका।
4: अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो जानते ही होंगे आज हमारा विषय क्या है।
5: जी, मैं कार्यक्रम सुन रहा हूँ और आज के बचपन की यादें मैं शेयर करना चाहता हूँ।
4: जी
5: हेलो।
4: जी राकेश जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताएं।
5: तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन में जो हम जो है क्या बोलते बड़े साथ करते, जब गर्मी में हम जाते थे, जैसे कई बार मैं क्या करता था बचपन में, यह किसी को पानी फेंकना सबसे पहले ये क्या बोलते बचपन में ये करते थे, जो होली वाली जो पचकारी होती है।
4: जी जी
5: हाँ, तो उससे जो है पानी फेंकता था। और एक बार
4: नहीं, होली पे पानी फेंकते थे या कभी भी किसी पे भी पानी फेंकते थे?
5: सभी गर्म में जैसे कोई भी आता था तो मैं या पानी फेंकना या किसी को पत्थर मारना।
4: मतलब आप अपने बचपन में किसी पे भी पानी फेंक देते थे या फिर आप ये कह रहे हैं कि आप पत्थर मारते थे, तो सर चोट नहीं लग जाती थी उनको राकेश जी?
5: तो चोट तो लग जाती थी लेकिन आपको पता है बच्चे तो है, बच्चे तो लगा थे पत्थर जो बंदूक नहीं थी पहले गोली वाली।
4: जी जी जी, गोली वाली बंदूक से आप अच्छा उसमें आप पत्थर भर के फिर मार देते थे, तो किसी को चोट लग जाती थी, ऐसा कुछ होता था तो आप को फिर डांट पड़ती होगी
5: ना? तभी तो मैं बोलता हूँ आजकल के बच्चों को कि भी इस तरह से शरारती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बचपन में नहीं करता था, या किसी को पत्थर मारना, छोटे छोटे पत्थर से मारना, ये करना।
4: मतलब अपने बचपन से सीख लेकर आप अब नए बच्चों को ये सिखाते हैं कि ये नहीं करना है।
5: जी जी
4: जी, अच्छी याद है सर आपकी कि आप इस तरह से करते थे जो कि गलत था, नहीं करना चाहिए, किसी को भी चोट लग सकती है।
5: लेकिन हम तो जिसको मानो ये चीज गलत थी, लेकिन किसी को अगर अगर मानो कि ये तो शुक्र मानो, किसी को क्या बोलते अगर चोट लग गई तो फिर वो कितना नुकसान होना था।
4: बिल्कुल
5: लेकिन
4: बिल्कुल
5: क्या करते थे, तो फिर वो भी मारते थे तो हम एक दूसरे को मारते रहते थे कि किसका निशाना, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे कि क्या बोलते बचपन में अगर किसी को चोट लग गई या किसी क्या या सिर में लगी या किसी को आंख में लगी तो फिर वो लेने की देनी पड़ती, तो वो पता वो कब तक उसको कितना नुकसान होना था।
4: जी, पर अच्छी बात ये है कि आपने इससे सीख ली और आप जो और बच्चे हैं आप उनको ये बताते हैं कि आप बचपन में क्या करते थे तो ये नहीं करना चाहिए, है ना जी?
5: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं और बच्चे को भी बताता था कि बचपन में शरारती तो करो।

0: बात नहीं, इससे जो है बच्चा का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है, लेकिन ऐसी शरारत ना करो कि किसी को जो
1: किसी को चोट लग
0: है क्या
1: जाए।
0: बोलते
1: जी
0: नुकसान हो जाए।
1: हाँ जी, आपने ये हमसे याद साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हेलो शिमला कार्यक्रम में अब हम आपके लिए एक सॉन्ग प्ले करेंगे, ठीक है राकेश जी?
0: जी
1: कॉल
0: जी
1: करने के लिए
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम,
0: हेलो, शिमला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: हम कुलदीप सिंह बोल रहे हैं जी, लुधियाना से।
0: कुलदीप जी, हेलो, शिमला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम बचपन की दोपहर की
1: बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम बहुत देर बाद हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: धन्यवाद जी। तो आज विषय है बचपन की दोपहर की कोई याद, तो आपकी कोई ऐसी याद है?
1: पहले तो हमको बेनती है आपको, अखंड शिमला पर प्रोग्राम बांधना कीजिए। हम 31 साल पुराने दोस्त हैं, हमको अच्छा नहीं लगता मैम
0: जी। हमारी दोस्ती यूं ही बनी रहेगी, तो आपको याद आप साझा कर दीजिए जी। कुलदीप जी,
1: हाँ जी, हाँ जी मैम, हम हमारी याद है एक
0: जी,
1: हमने जब बच्चे होते थे
0: जी
1: साइकिल लेकर गए तो साइकिल हम गवाए हैं जी।
0: गवाए मतलब कहीं गुम हो गई?
1: गुम हो गया जी।
0: तो अच्छा,
1: नया साइकिल था तो हमारा बाद में हमारी पिटाई बहुत हो गई माता पिता से।
0: अच्छा, नई साइकिल थी, आप कहीं खेलने के लिए लेकर गए और आप गुम करके आ गए?
1: हाँ जी, हाँ जी मैम, हमको

0: मैं अभी तो साइकिल तो घर में नहीं है, माँ बाप देखने लगा, तो शाम को हम लेकर गए तो वहाँ पर ही छोड़ आए।
1: अच्छा, शाम को खेलने गए और मस्ती मस्ती में साइकिल वहीं छोड़ा है आप?
0: छोड़ा है मैम।
1: चलिए,
0: दुकान पर ही छोड़ा है तो हुआ, सुबह देखा तो दुकान पर साइकिल ही नहीं मिला,
1: मतलब दुकान से वो चोरी हो गई।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: चलिए सर, ये भी एक याद है बचपन की कि ऐसी भी चीज़ें होती थी कि मस्ती भरा वो आलम होता था, खेलते खेलते पता ही नहीं चलता था कि कब कौन सी चीज़ कहाँ रह गई है।
0: मस्ती भरा ही आलम होता है बचपन में ही।
1: ये बहुत अच्छी बात है और आपने हमसे साझा की, इससे हम
0: हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात किया, हमारा दिल बहुत खुश हुआ जी।
1: तो कुलदीप जी, आपने कॉल किया इसके लिए आपका धन्यवाद, और आपके लिए हम ये गीत प्ले करने वाले हैं।
0: थैंक यू जी।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो शिमला, और आज बचपन की उस जादुई दोपहर को हम साझा कर रहे हैं कि आप बचपन में क्या क्या करते थे, कौन सी शरारतें थी, वो बातें हमसे आज आप साझा कर रहे हैं हेलो शिमला कार्यक्रम में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला पर। और अब पेश है ये गीत।

0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: सुखबीर सिंह बात कर रहा हूँ, संगरूर पंजाब से।
1: सुखबीर जी, हेलो शिमला कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
0: शुक्रिया मैडम, थैंक यू।
1: तो आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बचपन की किसी सुनहरी याद की, तो आपकी कोई ऐसी शरारत, कोई बात आपको याद है?
0: मैंने शरारते तो देखो बचपन नानके घर जाया करते थे जी।
1: जी
0: हाँ जी हाँ, वहाँ खूब मस्ती किया करते थे जी।
1: तो ऐसा ही कोई याद जो आपको अभी भी आपके जहन में हो बात, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं?
0: मैडम देखो बचपन में प्यार बड़ा था जी।
1: जी
0: जो दोस्त मित्र हुआ करते थे, जब किसी ने कोई चीज बनानी हो, जैसे पकौड़े वगैरह, कोई घर से घी ले आता, कोई तेल ले आता, कोई मिर्ची ले आता, इतना अच्छा था माहौल उस टाइम जी।
1: मतलब आप दोस्ती में आप कहीं बाहर जाते थे तो सब कुछ सामान इकट्ठा करके बाहर कुछ खाने का बनाते थे?
0: घर में तो बस होता था ना, बाहर दीवार बना दिया करते थे हम, ऐसी शरारते किया करते थे जी।
1: ये तो एक अच्छी शरारत थी।
0: हाँ जी,
1: ये तो एक अच्छी शरारत थी।
0: हाँ जी हाँ।
1: अच्छा, तो मतलब उस टाइम आप बात कर रहे थे?
0: हाँ जी हाँ।
1: तो
0: प्यार था बचपन, अब वो बचपन नहीं रहा ना, अब खो गया है बचपन कहीं।
1: तो वो दोस्त तो अभी भी आपके साथ होंगे, अभी भी आपकी दोस्ती कायम होगी?
0: हाँ जी, अब नाम के घर अभी गया नहीं, बहुत टाइम बाद जाता हूँ मैं, एक साल में एक दो बार जाया जाता है, वैसे मिल के आता हूँ मैं सभी को
1: जी। जिम्मेवारियाँ कई बार हमें दोस्तों से दूर कर देती है, मगर ये ऐसा बंधन होता है जो हमेशा बंधा ही रहता है, टूटता नहीं।
0: देखो आपसे भी दोस्ती है जी, दो कितने साल हो गए आपके चैनल पर फोन कर लेते हैं जी।
1: जी बिल्कुल,
0: ये रिश्ता है ना
1: जी, ये भी एक रिश्ता है और बहुत प्यारा ये रिश्ता है हमारा, आपका हो, दोस्ती का हो। और आपने बचपन की जो याद हमसे साझा की है, इसके लिए आपका धन्यवाद सुखबीर जी। कार्यक्रम का वक्त हो रहा है तो आपके लिए हम एक गीत प्ले कर देते हैं।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू
1: कॉल करने के लिए, आपका धन्यवाद।
0: ओके मैम, बाय।
2: मना लेंगे वो तो बिगला है, बना लेंगे वो तो लोटा है, हंसा लेंगे।

0: हेलो शिमला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। और अब जैसे कि कार्यक्रम का वक्त भी होता जा रहा है तो आखिरी कॉलर हमारे कौन हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो मैडम।

बचपन की इन्हीं यादों के साथ हेलो शिमला कार्यक्रम का आज का लाइव फोन इन कार्यक्रम का ये सफर हम यहीं संपन्न करते हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो शिमला, अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। दो बज चुके हैं और अब आप सुनेंगे सबरंग। सबरंग में आइए सुनते हैं गीतों के कुछ और।

सब रंग में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के गीतों से अलग कुछ नगमे हम आपको इसमें सुनवाते हैं और पंकज उदास की आवाज़ में आपको सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

सब रंग में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के गीतों से अलग कुछ नगमे हम आपको इसमें सुनवाते हैं और पंकज उदास की आवाज़ में आपको सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सबरंग, और अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक को। अगला गीत आपके लिए कुणाल गांजावाला की आवाज में लीजिए पेश है।

0: अभी आप सुन रहे थे सबरंग 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। 2:15 होने को हैं दोपहर हिंदी समाचारों के लिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान कैंपेन ऑफ मिलिट्री पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी

0: राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के

0: मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान।

श्रोताओं नमस्कार, ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम के साथ मैं हूं सरोज ठाकुर। विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विज्ञान की रोचक, ज्ञानवर्धक और नवीनतम जानकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं। विज्ञान आज सिर्फ प्रयोगशाला

0: कलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मोबाइल फोन से लेकर अंतरिक्ष की खोज तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक, विज्ञान ने मानव जीवन को नई दिशा और नई गति प्रदान की है। आज कार्यक्रम में हम भी विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों, नई खोजों और ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करता है। जी हाँ, एक ऐसी समस्या जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है, और वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पानी की बोतलें, पॉलीथिन बैग, खाद्य पदार्थों की पैकिंग, घरेलू सामान और अनेक वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती हैं। इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके ज्यादा उपयोग और अनुचित निपटान ने पर्यावरण के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन इसका अनियंत्रित उपयोग पर्यावरण, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। सड़कों से लेकर नदियों और महासागरों तक प्लास्टिक कचरा हर जगह दिखाई देता है। ये न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित करता है, बल्कि मिट्टी, जल और वायु को भी दूषित कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का क्या होता है, इसके प्रदूषण से क्या दुष्प्रभाव होते हैं और इसके बचाव के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता प्लास्टिक पॉल्यूशन, और वार्ताकार हैं रितम शर्मा।
1: नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण की, एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। पानी की बोतलें, पॉलीथीन बैग, ऑनलाइन खरीदारी के पैकेट आदि वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आज का युग सुविधाओं का युग है। हम तेज और आसान जीवन शैली के आदि हो चुके हैं। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है। ये हल्का, सस्ता और टिकाऊ होता है, लेकिन यही टिकाऊपन आज हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है, इसके दुष्परिणाम हमारे जीवन और पर्यावरण को किस तरह प्रभावित करते हैं, और हम सब मिलकर इस समस्या को कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक प्रदूषण है क्या? सरल शब्दों में कहें तो जब प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद उसे सही तरीके से एकत्रित, रीयूज या रिसाइकिल नहीं किया जाता और ये वातावरण में फैलने लगता है, तब यही प्लास्टिक प्रदूषण का रूप ले लेता है। लेकिन इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए हमें प्लास्टिक की एक और विशेषता को जानना होगा। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता। एक प्लास्टिक की बोतल, थैली या अन्य सामग्री वर्षों तक धरती पर वैसी ही पड़ी रह जाती है। इसका कारण ये है कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता। अब बात ये करते हैं कि प्लास्टिक बनता कैसे है। ये एक मानव निर्मित यानी सिंथेटिक मटेरियल है जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैसों से बनता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में प्लास्टिक प्रदूषण मानव सभ्यता के सामने एक बड़ा संकट बनके उभर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक प्रदूषण इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है सिंगल यूज प्लास्टिक, अर्थात ऐसी प्लास्टिक वस्तुएं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। हमारी दैनिक जीवन शैली में इनका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्लास्टिक के कप, प्लेट, प्लास्टिक स्ट्रो आदि वस्तुएं सुविधा तो प्रदान करती है, लेकिन उपयोग के बाद कचरे का हिस्सा भी बन जाती है। एक और बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। कई बार लोग ये

जानते हुए भी कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसे इधर उधर फेंक देते हैं, सड़क किनारे, पार्कों में, नालियों में या सार्वजनिक स्थानों पर पड़ा कचरा इसी लापरवाही का नतीजा है। सच तो ये है कि प्लास्टिक प्रदूषण केवल किसी एक व्यक्ति या एक शहर की समस्या नहीं है, ये हमारी जीवन शैली, हमारी आदतों और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी से जुड़ा एक विषय है। हालांकि स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। देश के कई हिस्सों में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और इसके रिसाइकिल की दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। याद रखिए, छोटे छोटे कदम एक नया बदलाव ला सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा हर प्रयास स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा योगदान है। लेकिन जरा सोचिए, आखिर इस बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण का हमारे पर्यावरण, पशु पक्षियों, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? आज नदियाँ, झीलें और समुद्र बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे से प्रभावित हो रहे हैं। जब प्लास्टिक जल में पहुँचता है तो वे धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटता है। इन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये सूक्ष्म कण पानी में घुलकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और जल को प्रदूषित बना देते हैं। आज हैरानी की बात ये भी है कि प्लास्टिक की मौजूदगी जल में सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करती है। इससे जल का पीएच स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे जल पीने योग्य भी नहीं रह जाता। समस्या यही समाप्त नहीं होती। जल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक मछलियों, कछुओं और अन्य जलीय जीवों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बाद में यही जीव हमारी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, फिर हमारे भोजन और हमारे शरीर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ये पर्यावरण के साथ मानव स्वास्थ्य का भी एक गंभीर विषय है। इसके अलावा कई जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं। इससे उनके शरीर में प्लास्टिक जमा होने लगता है, उनका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है और कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। सोचिए, जिस प्लास्टिक को हम कुछ ही मिनटों के लिए उपयोग में लाते हैं, वही किसी जीव के जीवन भर की पीड़ा का कारण बन सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो उससे कई जहरीली गैसें निकलती हैं। इनमें डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य विषैले रसायन शामिल होते हैं। ये गैसें वायु को प्रदूषित करती है। हमारे शरीर में श्वास संबंधी समस्याएं, एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। आज वैज्ञानिकों ने भोजन, पानी और यहाँ तक कि हवा में भी प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति दर्ज की है। यही माइक्रोप्लास्टिक हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारे भोजन, पानी और सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर अभी भी शोध जारी है, फिर भी इसके संभावित दुष्प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका कारण इसके निर्माण में प्रयुक्त कुछ रसायन जैसे BPA और थैलेट्स भी है। अब वैज्ञानिकों ने नैनोप्लास्टिक की भी पहचान की है। ये माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे कण हैं, जो 1 मिलीमीटर या इससे भी छोटे हो सकते हैं। ये भले ही छोटे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव काफ़ी गंभीर है। इसके अलावा मिट्टी की बात करें तो प्लास्टिक ने मिट्टी की उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी पर भी प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, वर्षा के जल को धरती तक पहुंचने से भी रोका है, जिससे भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समस्या के समाधान के प्रति कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं लगातार कार्य कर रही है और कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग कर फेंक दिए जाने वाली प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू किया गया। इसका उद्देश्य इसके निर्माण, बिक्री और उपयोग को कम करना था। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कदम है EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरल शब्दों में कहें तो जब कंपनियां प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न करती है तो उन कंपनियों की ये जिम्मेदारी भी होगी
कि उससे उत्पन्न कचरे को उचित संग्रह

रिसाइकिल और निपटान के लिए भेजा जाए। इसी सोच को साकार करने के लिए भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत घर घर से कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे को रिसाइकिलिंग तक पहुंचाना शामिल है। इससे प्लास्टिक को खुले में फेंकने या लैंडफिल्स तक पहुंचने से रोका जा सकता है। प्लास्टिक से निपटने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि उद्योग जगत और समाज भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसी दिशा में इंडिया प्लास्टिक पैक जैसी पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य प्लास्टिक पैकेजिंग को अधिक टिकाऊ, पुनः उपयोगी और पुनर्चक्रण योग्य बनाना है। आज देश के कई हिस्से में प्लास्टिक फ्री विलेज यानी प्लास्टिक मुक्त गांव की पहल भी देखने को मिल रही है। इन गांवों में लोग कपड़ों के बैग, मिट्टी और धातु से बने उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम भी कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बात करें तो कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसे अभियान दुनिया भर में लोगों को संदेश देते हैं कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम केवल प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर चर्चा के साथ समाधान का भी हिस्सा बने। ज़रा सोचिए, यदि हम दैनिक जीवन में कुछ छोटी छोटी आदतों को बदले तो कितना बड़ा परिवर्तन संभव है। उदाहरण के लिए, बाजार जाते समय प्लास्टिक के थैले की जगह कपड़े या जूट के थैले और प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील या तांबे की बोतल, और एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पादों से दूरी बनाना। ये छोटे छोटे कदम पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज कई लोग समुदाय पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना रहे हैं। कुछ गांव ने स्वयं को प्लास्टिक मुक्त गांव घोषित कर लिया है, तो कई विद्यालय और महाविद्यालय जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए हम 3R सिद्धांत को भी अपना सकते हैं। 3R का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सबसे पहले बात करें रिड्यूस अर्थात प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। जब आवश्यकता ना हो तो प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग ना करें। दूसरा रूल है रीयूज अर्थात किसी वस्तु का पुनः उपयोग करना। यदि किसी वस्तु का दोबारा उपयोग किया जा सकता है तो उसे तुरंत कचरे में ना फेंके। और तीसरा रूल है रिसाइकिल यानी प्लास्टिक और अन्य उपयोगी सामग्री को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में भेजना ताकि उनसे नए उत्पाद बनाए जा सकें और कचरे की मात्रा कम की जा सके। 3R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल केवल एक पर्यावरणीय संदेश नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जीवन शैली का आधार है। जब हम सभी अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं, वस्तुओं का पुनः उपयोग करते हैं और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया तक पहुंचते हैं, तब हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये संदेश आज प्लास्टिक प्रदूषण जैसी चुनौतियों के संदर्भ में भी प्रासंगिक हो रहा है। यदि हम बदलाव की शुरुआत स्वयं से करेंगे तो समाज और देश में भी सकारात्मक परिवर्तन हमें ज़रूर दिखाई देंगे। यदि हम अपने दैनिक जीवन में एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े या जूट के थैले का उपयोग अपनाएं, प्लास्टिक कचरे का उचित निपटारा करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें, तो हम इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाए गए एक छोटे छोटे कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त भारत और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण का संकल्प लें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लास्टिक प्रदूषण केवल एक समस्या ही नहीं अपितु हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न है। हमारी एक छोटी सी लापरवाही इस धरती को एक जहरीले स्थल में बदल सकती है। समय आ गया है कि हम जागे और पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प ले, आज से ही और अभी से ही, तभी बड़ा बदलाव लाया जा

0: आ सकता है। हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे कदम भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। धन्यवाद
1: श्रोताओं, ये तो सुनी आपने वार्ता और जाना कि प्लास्टिक पोल्यूशन किस प्रकार हमारे पर्यावरण, जल स्रोतों, वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ये समस्या सिर्फ सरकारों और संस्थाओं की नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को भले ही सुविधाजनक बनाया हो लेकिन इसका अनियंत्रित उपयोग पृथ्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें आज ही संकल्प लेना होगा कि हम इसका उपयोग कम करेंगे, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देंगे, साथ ही अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। तो अब हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं। ग्लेशियर, जिन्हें बर्फ की विशाल नदियां भी कहा जाता है, पृथ्वी के मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। हिमालय से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक फैले ये ग्लेशियर लाखों लोगों के जीवन और पर्यावरणीय संतुलन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये तेजी से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं और जल संकट की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ग्लेशियर बर्फ का विशाल भंडार होते हैं जो हजारों वर्षों में बर्फ के लगातार जमाव से बनते हैं। ये प्राकृतिक जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं और अनेक नदियों को जल भी प्रदान करते हैं। इनके पिघलने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि है। मानव गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधनों का ज्यादा उपयोग, उद्योगों से निकलने वाली गैसें और वनों की कटाई के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं और इससे ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण और धूल के कण भी इसकी सतह पर जमा हो जाते हैं। इससे बर्फ की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता कम हो जाती है और वो अधिक गर्मी अवशोषित करने लगते हैं, जिससे पिघलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। दुनिया भर में ग्लेशियर कई सौ से लेकर कई हजार साल पुराने हो सकते हैं और ये इस बात का वैज्ञानिक रिकॉर्ड देते हैं कि समय के साथ जलवायु में किस तरह बदलाव आया है। इनके अध्ययन से हमें इस बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है कि ग्रह किस हद तक तेजी से गर्म हो रहा है। ये वैज्ञानिकों को इस बात का रिकॉर्ड भी देते हैं कि समय के साथ जलवायु में किस तरह से बदलाव आया है। आज पृथ्वी पर लगभग 10% भूमि क्षेत्र हिमनद बर्फ से ढका हुआ है। लगभग 90% अंटार्कटिका में है, जबकि शेष 10% ग्रीनलैंड बर्फ टोपी में है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में तेजी से पिघलते ग्लेशियरों का प्रभाव समुद्री धाराओं पर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में बहुत ठंडा ग्लेशियर पिघला हुआ पानी गर्म समुद्री जल में प्रवेश कर रहा है, जिससे समुद्री धाराएं धीमी हो जाती हैं और जैसे जैसे जमीन पर बर्फ पिघलेगी समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाएगा। समुद्री बर्फ समुद्र में ही बनती और पिघलती है जबकि ग्लेशियर जमीन पर बनते हैं। हिमखंड हिमनदों की बर्फ के टुकड़े होते हैं जो ग्लेशियरों से टूटकर समुद्र में गिरते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी भूमि पर जमा हो जाता है और अपवाह के कारण समुद्र में पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जिससे वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि होती है। और वहीं दूसरी ओर समुद्री बर्फ की तुलना अक्सर एक गिलास पानी के बर्फ के टुकड़ों से की जाती है। जब ये पिघलती है तो ये सीधे गिलास में पानी के स्तर को नहीं बदलती है। इसके बजाय अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के घटने से कई अन्य विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत से ही दुनिया भर में कई ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इस घटना के मूल में मानवीय गतिविधियां आती हैं, खास तौर पर औद्योगिक क्रांति के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने तापमान को बढ़ा दिया है, ध्रुवों में तो और भी ज्यादा, और इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र में गिर रहे हैं और जमीन पर वापस आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर उत्सर्जन में

नियंत्रित वृद्धि जारी रही तो आने वाले समय तक अंटार्कटिक क्षेत्र गर्मियों में बर्फ रहित हो सकता है। पिघलते ग्लेशियर समुद्र के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे तटीय कटाव बढ़ जाता है और तूफानी लहरें भी बढ़ती हैं, क्योंकि गर्म हवा और समुद्र का तापमान तूफान और टाइफून जैसे तटीय तूफानों को अधिक लगातार और तीव्र बनाता है। विशेष रूप से ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ की चादरें वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। अभी ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर 2003 की तुलना में 4 गुना तेजी से गायब हो रही है और पहले से ही वर्तमान समुद्र स्तर में 20% की वृद्धि में योगदान दे रही हैं। आज अंटार्कटिक क्षेत्र पृथ्वी पर किसी भी स्थान की तुलना में 2 गुनी गति से गर्म हो रहा है और वहां समुद्री बर्फ हर 10 वर्ष में 10% से अधिक घट रही है। जैसे जैसे ये बर्फ पिघलती है, समुद्र के गहरे रंग के धब्बे उभरने लगते हैं, जो ध्रुवों को ठंडा करने वाले प्रभाव को खत्म कर देते हैं, जिससे हवा का तापमान गर्म हो जाता है और बदले में महासागर परिसंचरण के सामान्य पैटर्न में बाधा उत्पन्न होती है। शोध से पता चलता है कि अंटार्कटिक और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म हवा और समुद्र के तापमान के संयोजन के कारण जेट स्ट्रीम में बदलाव के कारण ध्रुवीय भंवर अंटार्कटिक के बाहर अधिक बार दिखाई दे रहे हैं। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में आज जो हिमनद हमें पिघलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अटलांटिक महासागर के परिसंचरण को बदल रहे हैं और इसे मेन की खाड़ी में मत्स्य पालन में पतन और ग्रह के चारों ओर अधिक विनाशकारी तूफानों और चक्रवातों से जोड़ा गया है। ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री बर्फ के नुकसान का मानव और वन्य जीवों पर भी प्रभाव दिखाई देता है। इन स्थानों पर जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसे जैसे समुद्री बर्फ और ग्लेशियर पिघलते हैं और महासागर गर्म होते हैं, समुद्री धाराएं दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को बाधित करती हैं। जीवंत मत्स्य पालन पर पनपने वाले उद्योग प्रभावित होते हैं, क्योंकि गर्म पानी में मछलियां कहां और कब अंडे देती हैं ये बदल जाता है। पृथ्वी पर 2 तरह के ग्लेशियर पाए जाते हैं, पहले अल्पपाइन या घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर। ये ऊंचे पर्वतों की घाटियों में पाए जाते हैं और नदी की तरह नीचे की ओर बहते रहते हैं। हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर इसी श्रेणी में आते हैं। हिमचादर वो ग्लेशियर होते हैं जो बहुत विशाल होते हैं। ये बड़े भूभाग को ढक लेते हैं और अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में विश्व की सबसे बड़ी हिमचादरें स्थित हैं। आइस कैंप ग्लेशियर आकार में हिमचादरों से छोटे होते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों को ढक लेते हैं। पाइंडमोंट ग्लेशियर पर्वतीय ग्लेशियर घाटी से निकलकर समतल भूमि पर फैल जाते हैं, जो उन्हें पाइडमोंट ग्लेशियर कहा जाता है। ज्वारीय ग्लेशियर ये समुद्र तक पहुंचते हैं और इनसे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में गिरते रहते हैं। ग्लेशियर के पिघलने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये गैसें पृथ्वी की गर्मी को रोककर वातावरण में गर्मी को बढ़ाती हैं और वनों की कटाई के कारण भी पर्यावरण पर असर देखा जाता है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वनों की कटाई ने ये प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है और तापमान में वृद्धि होने लगी है। अगर बात की जाए औद्योगिक और वाहन प्रदूषण की, तो कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है। ग्लेशियर की सतह पर जमा कालिख और धूल सूर्य की गर्मी को अधिक अवशोषित करते हैं, जिससे बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। ग्लेशियरों के पिघलने से उत्पन्न होने वाली कई तरह की समस्याएं हैं जो आने वाले समय में हमें झेलनी पड़ सकती हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, इससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि कटाव का खतरा बढ़ जाता है। शुरुआत में नदियों में जल प्रवाह बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में ग्लेशियरों के सिकुड़ने से नदियों में पानी की कमी हो सकती है।

होती है, जिससे पेयजल और सिंचाई प्रभावित होती है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। इससे ग्लेशियल झील का निर्माण होता है। इनके फटने से अचानक बाढ़ आ सकती है, जिससे भारी धन और जन की हानि होती है। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले कई पशु पक्षियों और वनस्पतियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। अगर कृषि की बात करें तो जल की उपलब्धता कम होने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है और खाद्य सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है। ग्लेशियर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनके पिघलने से मौसम चक्र भी प्रभावित होता है और चरम मौसम घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें, सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, ऊर्जा की बचत करें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली नीतियों का समर्थन करें। तो श्रोताओं, समय रहते हमें इस बात को जरूर जान लेना होगा कि ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, बल्कि वो पृथ्वी के जल, जलवायु और जीवन के संतुलन के महत्वपूर्ण आधार हैं। उनका तेजी से पिघलना हमें ये संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं और समय रहते प्रभावी कदम उठाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आज हम पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संतुलित पृथ्वी का निर्माण कर सकते हैं। प्रकृति की रक्षा करना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का कर्तव्य बनता है। तो इसी के साथ घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय भी हो चला है। तो इस वादे के साथ कि कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ज्ञान विज्ञान, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि 3:30 पर आप सुनेंगे वॉइस ऑफ द यूथ कार्यक्रम युववाणी। एफएम शिमला पर आप बने रहिए यूं ही हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अभी कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आईं भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माण व विध्वंस मलबे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता, श्रेष्ठ प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों

बागवानों, पशुपालकों और मछुआरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का फैसला लिया है जिनकी भूमि नीलामी के खतरे में है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार पात्र किसानों के 3 लाख रुपये तक के ऋण कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी का 50% वहन करेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा। धर्माणी ने कहा कि सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू करने को

0: एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स चमियाना को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ हर रोज ओपीडी की संख्या 1000 से ऊपर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और सीटी स्कैन व एक्सरे सुविधा शुरू कर दी गई है और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के 2 वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोनों जांबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से ये साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रदेश सरकार ने बीएमसी केंद्रों से आज से दूध की खरीद बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों की आजीविका पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दूध उत्पादक किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और भाजपा हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीब, किसान, महिला और युवा विरोधी फैसले लेने का आरोप भी लगाया।
1: कल सरकार से आदेश आया है, जो सरकार का सुखी सरकार का तुगलकी फरमान जो आया है, जारी हुआ है कि मंगलवार को दत्तनगर के जितने भी बीएमसी है उसके अंतर्गत जो दूध नहीं खरीदा जाएगा और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आप एक तरफ से महिला किसानों को और दूध उत्पादक किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी आय को दुगुना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से 2-2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी के अंतर्गत आज सुनिए ऊना जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं राजेश कुमार और वाचक स्वर है पूनम शर्मा का।
0: ऊना जिला में पंचायती राज चुनावों के चलते गत माह चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच चुनावी सरगर्मियां भी तेज रहीं। जिला में स्थानीय नगर निकायों एवं सभी 249 पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंचों के मतों की गिनती 26, 28 और 30 मई को मतदान के तुरंत बाद की गई, जबकि नगर निकायों, जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती 4 जून को जिला के 5 उपमंडलों के मुख्यालयों पर संपन्न हुई। ऊना, महतपुर, बसदेहड़ा, संतोखगढ़, नंगलखुर्द और गगरेट नगर निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बहुमत जीत दर्ज करवाई, जबकि अंब और दौलतपुर चौक में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का बोलबाला रहा। जिला परिषद की 17 सीटों में से 11 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसे जिला भाजपा संगठन ने आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल करार दिया। उधर गत वर्ष नगर परिषद से नगर निगम में स्तरोन्नत हुए ऊना नगर निगम और बंगाणा नगर पंचायत के चुनाव अगले चरण में होने तय हैं। नगर निगम के चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के तहत तैयार की गई मतदाता नामावली 8 जून से आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध की गई है। मतदाता नामावली में नाम शामिल करने के लिए 1 अप्रैल 2026,

0: कार्यकर्ता तिथि निर्धारित की गई है। इस माह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में उपमंडल अंब व गगरेट के विभिन्न संस्थानों में आयुष विभाग की ओर से योग व स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जहां विद्यार्थियों, कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों को नियमित योगाभ्यास के महत्व और उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी गई, वहीं आम जन को योग व स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। उपमंडल बंगाणा में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय जिला स्तरीय पिपलू मेला इस वर्ष 24 से 26 जून तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रबी की फसल के उपरांत स्थानीय किसान परिवारों द्वारा उपज का कुछ भाग देवता को भेंट करने के उद्देश्य से इस मेले का हर वर्ष आयोजन किया जाता है, जिसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों से लोग पिपलू गांव में स्थित पिपलू मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस मेले में श्रद्धा से भाग लेते हैं। 24 जून को पारंपरिक फेरी व झंडा रस्म के साथ पिपलू मेले का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। क्षेत्र की लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेले के दौरान पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हिमाचली लोक कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला ऊना की सभी 249 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया। इन विशेष बैठकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्राम सभाओं में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया और ठोस व प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन में परिवारों, स्थानीय संस्थाओं और समुदाय की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही कचरे के पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी, जैविक कचरे से कंपोस्ट तैयार करने और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इन दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेडिएशन फॉर द नेशन 2 नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। आपके मनोरंजन के लिए ओल्ड हिट फिल्म संगीत लेकर हम फिर से एक बार हाजिर हैं और आपको इस कार्यक्रम में पहला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म एक नज़र से। अपनी आवाज़ें दी हैं इस गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है। तो लीजिए, पेश है ये नगमा आपके लिए।

0: रूना लैला और भूपेंद्र सिंह को आइए अब सुनते हैं फिल्म घरौंदा में। गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं जयदेव। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं ओल्ड हिट फिल्म संगीत।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में। दो दीवाने शहर में।

बाजार फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे कंपोज किया खयाम ने और बोल मीर ताकि मीर के। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग, आवाज़ किशोर कुमार की है और इस गीत को लिखा है फारूख कैसर ने, बप्पी लहरी ने इसे संगीत दिया। लीजिए पेश है ये नगमा।

ओल्ड हिट फिल्म संगीत में ये तराने आपके मन को जरूर भाए होंगे, क्योंकि गोल्डन ईरा के ये सॉन्ग्स आज भी कुछ खास हैं। अब 3:30 होने को हैं द वॉइस ऑफ द यूथ प्रोग्राम युववाणी। अब आप सुनेंगे

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युवानी और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे विषय पर जो देश के लाखों युवाओं, परिवारों और समाज से जुड़ा है। आज का हमारा विषय है बढ़ती बेरोजगारी और हम बात करेंगे इसकी चुनौती, कारण और समाधान की। दोस्तों, बेरोजगारी केवल रोजगार का अभाव नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के आत्मविश्वास, परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज के प्रति और उसको प्रभावित करती है। आज शिक्षित युवा डिग्रियां लेकर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, कई बार योग्य होने के बावजूद अवसर नहीं मिलते, जिससे निराशा बढ़ती है। लेकिन हर चुनौती के साथ समाधान भी जुड़ा होता है दोस्तों। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और बीच बीच में सुनेंगे कुछ प्रेरणादायक गीत। दोस्तों, कार्यक्रम तो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनाते हैं आपको ये विशेष जानकारी। दोस्तों, जनगणना 2027 के प्रथम चरण, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित दिनांकों के अनुसार किया जा रहा है। 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों के लिए उपलब्ध रहेगा। निवासी se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएँ संकलित करेंगे। प्रथम

में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंसाधन कार्य हेतु किया जाता है। जानकारी समाप्त हुई। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेरोजगारी। दोस्तों, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और क्षमता रखने के बावजूद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में ये समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। आज तकनीक तेजी से बदल रही है, जहां कुछ लोग नए रोजगार तो पैदा कर रहे हैं, वहीं कई पारंपरिक नौकरियों भी समाप्त हो रही है। ऐसे में युवाओं के लिए स्वयं को नए कौशलों से लैस करना अति आवश्यक हो गया है। दोस्तों, जब जीवन में संघर्ष आता है तो उम्मीद की किरण भी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आइए सुनते हैं इस शक्ति को दर्शाता ये प्रेरणादायक गीत।

एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बेरोजगारी क्या है, अब हम बात करते हैं बेरोजगारी बढ़ने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। दोस्तों, कई बार शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकता के बीच में अंतर होता है। युवाओं के पास डिग्रियां तो होती है, लेकिन रोजगार के लिए जरूरी कौशल नहीं होते। कई बार ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कई पारंपरिक नौकरियां की मांग कम हो रही है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के सीमित अवसर मिलते हैं, जिससे उन्हें शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। इसका अन्य कारण, अनेक युवा केवल सरकारी या बड़ी निजी नौकरियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि उद्यमिता की दिशा में कम कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, मेहनत और विश्वास से उन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। इसी भावना को दर्शाता हमारा ये अगला गीत।

आप है एफएम शिमला के साथ और आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। कार्यक्रम में के पूर्व में हमने बात की कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी बढ़ने के मुख्य कारण क्या है। अब हम बात करेंगे बेरोजगारी का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, बेरोजगारी केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसका असर परिवार की आय घटने पर पड़ता है और जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। लगातार असफलता और रोजगार की कमी से तनाव, चिंता और आत्मविश्वास में कमी आती है। सामाजिक प्रभाव, अपराध, नशाखोरी, सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। देश के कई प्रतिभाशाली युवा अवसरों के अभाव में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जिस कारण वे चिंतित रहते हैं। दोस्तों, जब परिस्थितियां कठिन हो तब खुद पर भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। आइए सुनते हैं एक जोश से भर देने वाला ये गीत।

दोस्तों, आप है एफएम शिमला के साथ और कार्यक्रम चल रहा है युववाणी। युववाणी में आज हमारा विषय है बढ़ती बेरोजगारी। दोस्तों, हमने बात की बेरोजगारी क्या है और उसके कारण क्या है। अब बात करते हैं बेरोजगारी के से निपटने के समाधान क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी होना चाहिए। दोस्तों, नई तकनीकों, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाषा कौशल और संचार कौशल सीखना समय की आवश्यकता बन गई है। छोटे व्यवसाय, ऑनलाइन सेवाएं, कृषि आधारित उद्योग और स्टार्टअप्स नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, सफलता अक्सर उन लोगों को ही मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास जारी रखते हैं। मेहनत और लगन से ही सपनों को मंजिल मिलती है। इसी भावना के साथ सुनते हैं ये प्रेरक गीत।

एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। आज बातचीत हो रही है बढ़ती बेरोजगारी की। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार, उद्योग और समाज सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। नए उद्योगों को निवेश देना होगा। युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने वाला होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से पलायन कम किया जा सकता है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर लाखों रोजगार पैदा किया जा सकता है। महिलाओं के लिए अधिक अवसर और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक गीत।

दोस्तों, बढ़ती बेरोजगारी निश्चित रूप से एक गंभीर चुनौती है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। यदि युवा नए कौशल सीखे, स्वरोजगार की ओर बढ़े, सकारात्मक सोच रखे और सरकार के साथ मिलकर अवसरों का निर्माण करे, तो इस चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, बल्कि उन्हें बदलने का साहस भी रखते हैं। इसी संदेश के साथ मैं अमित कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM शिमला।

युववाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। तो मनोरंजन का ये सिलसिला यूं ही जारी है और आपके लिए अब हम प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक फिल्म अलबेला से। कंपोज किया है जतिन ललित ने, समीर ने इसके बोल लिखे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में। लीजिए पेश है ये गीत।

ये सिर्फ रोशनी नहीं, तरक्की की एक नई उड़ान है। अंधेरे से लड़ती हुई आज के दौर की ये पहचान है। थम जाती है जिंदगी की रफ्तार इसके रूठ जाने से, मानो वक्त की नब्ज रुक गई हो इसके चले जाने से। देखिए, बिजली बोर्ड द्वारा सर्दियों और मॉनसून की तैयारी के तहत 11 केवी की हाई टेंशन लाइनों की मरम्मत और पेड़ों की कटाई का काम किया जाता है। इसके लिए दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कुछ घंटों के लिए पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, शटडाउन कर दी जाती है। और आजकल न्यू शिमला क्षेत्र में ये मरम्मत का काम चल रहा है, तो अगर बिजली नहीं है तो समझिए इस बात को कि बिजली कितनी ज़रूरी है, तो इसका रखरखाव भी उतना ही ज़रूरी होगा। 103.7 MHz FM शिमला आप सुन रहे हैं, और आपके लिए हम पेश कर रहे हैं एक और नगमा। फिल्म का नाम है तनु वेद्स मनु। मोहित चौहान ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है, बोल लिखे हैं राजशेखर ने और संगीतकार हैं कृष्णा।

आजकल चल रहा है इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल। अगर आप भी समर फेस्टिवल को लेकर एक्साइटेड हैं और आज आप जाना चाह रहे हैं कि आज आप भी ऐतिहासिक रिज मैदान पर जाएं, तो आपको बता दें कि आज स्टार नाइट में बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर ज्योतिका टांगरी हेडलाइन परफॉर्मर के रूप में लाइव परफॉर्मेंस देंगी। वो अपने लोकप्रिय बॉलीवुड गानों से ऐतिहासिक रिज मैदान पर शाम को संगीतमय बनाने आ रही हैं। रिज मैदान पर आजकल और भी बहुत कुछ खास चल रहा है, तो अगर आप शिमला से ही हैं तो आप ज़रूर जाइए, और अगर आप बाहर से भी कहीं यहाँ घूमने आए हुए हैं तो शिमला समर फेस्टिवल का मज़ा ज़रूर लीजिए। अब आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है दिल तो बच्चा है जी, मोहित चौहान की आवाज़ है और इस गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने, प्रीतम का संगीत। लीजिए पेश है

अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 के तहत ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आजकल हो रहा है नाटकों का मंचन। तो अगर आप शौक रखते हैं तो शाम 6 बजे वहां पहुंच जाएं, एक नए नाटक के साथ आज आपका वहां स्वागत होगा। नाटक का नाम है डबल ट्रबल, तो ज़रूर आज आप अगर इसके शौकीन हैं तो वहां जा सकते हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है, मशहूर गीत है ये, लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने ये गीत लिखा है और संगीतकार हैं प्रीतम।

गीत संगीत मनोरंजन और जानकारी का ये सफर आज आपने तय किया भारती के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

कुड़वे खेजुन जी सुबेदारो ही भेटे और उकी संपत्ति के बारे दे लगभग 33% पूछ दे। और जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना दे जो जी भी क्या मैं अपने सूचना देऊँ बे के जानकारी देऊँ बे सहज भाद्य जानकारी गोपनीय थोई दी, जिन्हें का उपयोग सिर्फ नीति योजना बनने के या अनुसंधान के कामों के करा जाता। तो ऐसे थे जनगणना 2027 के बारे दे एक सूचना। अब अपने बात का सिलसिला शुरू कर बे और इतलो के कार्यक्रम दे बात लाऊं बे सेहत गशी अपने स्वास्थ्य गशी जकीने की बेरुए रोएश होए जो इतलो हमारे राशन पानी सा ज्यादा पैसा दवाई खे और अस्पताल पुणे लगा चौके। और बात लाऊं बे जे स्वास्थ्य जो है से कतरा जो है से जरूरी असो और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन असो। इन्हें के साथ ही इतलो बात लाऊं बे भारत सरकार की योजना मिशन इंद्रधनुष गशी। जब मिशन इंद्रधनुष का असो कोसखे असो और कई सरकारें ऐसी योजना चलाए थे तो इनू भद्दी बातों गशी बातचीत लाऊं बे और इनू बातों लाना सुनो खे मुँह अरे जुड़े अंदर हुआ और इंदशा आगे सुनाऊं दे एक सिरमौरी लोकगीत।

ऐसा सुना तू है ब्रह्मदत्त की आवाज दा दगे बठिया गीत। तो बात रहे थे लागे सेहत गशी। संस्कृत दी एक बात बोलो जय आरोग्यम परम धनम, जिन्हें का मतलब हुओ जय सेहत ही सबसे बड़ा धन हो। सो एज बात जैसी कुणिया भी बोले थोए से बड़े सोचे समझियो और परख्यो थोए बोले, बड़े जाचियो थोए बोले, क्योंकि तुए भी ऐसी बात मानो ले जे जब हमारा शरीर रोगे भी हुआ, जब हमें बीमार हुआ, तो ना तो किए सु करो खाई दो पींदो, ना के थी घूमी दो फिरी दो, ना सासो देव चौ नौंदे और ना शरीर के आराम भेटदा। त्यों वक्त दो इंसान चौफेर शो बेदनिया रिव गिरो दो। जब स्वास्थ्य ठीक न होंदा शरीर रोगे वाला, तो की भद्दी सुख सुविधा और पैसियारी भी इंसानों के चौन भेट देने। सुख सुविधा और पैसे से भी चौन तभी भेटो जब शरीर ठीक हुआ, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तभी स्वास्थ्य के सबसे बड़ा धन बोले जाओ, क्योंकि ओकी भद्दे धन का आधार हो। सो जब स्वास्थ्य और सेहत की बात करबे तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इतनी नहीं थी जब शरीर दिखे बीमारी ने ओए, बल्कि स्वास्थ्य का मतलब असो जय शरीर अरी हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, यानी दिमागी तौर दे भी हमें स्वस्थ होनी चाहिए। इतलो की वक्त दे भाग दौड़ वाली जिंदगी असो, जिशो से फिर रहता हूँ लोग पैसे कमाने दे व्यस्त असो, और अज बात सही भी असो जब पैसा भी भाई जरूरी है, पर पैसे पची भागदे लोग जो बेसरे जाओ जेनू पैसे का और उसकी बद्दी सुख सुविधा से भी तभी चौन भेट दे जब स्वास्थ्य ठीक रोला और सेहत बढ़िया रोले। ऐसे बात ठीक बोलो जब शरीर सोबी की हुओ पर स्वास्थ्य सोबी की आंदा ने, जब हमें अपनी जवानी का शिव नोया हुओ तो त्यों वक्त दा हमें अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान जुए से थों देने, पर बिस्ता बिस्ता उम्र बढ़ने के साथ साथ जुए से पता लागो जो शरीर और स्वास्थ्य का जुए से कितना जरूरी है सो ठीक होना। जिसका स्वास्थ्य ठीक होला तेदा टोले साड़नों का भी उजाश रौंदा, शरीर दे फुरते भी रौंदे, जुन जो कुने स्कूलिया शरीर और दिमागी तौर दो स्वस्थ हो लो से बुढ़िया ठीक ढंग से अपने पढ़ाई लिखाई का काम भी कर दो, खेल कूदो भी आगे रौंदो, और जब स्वास्थ्य ठीक हुआ तभी यो जिंदगी का भी मजा सो। अबे बात लाऊंबे जे यो अस्त व्यस्त वाली जिंदगी दा, यो बाग दौड़ वाली जिंदगी दा आमे जुए से अपने शरीर अपने स्वास्थ्य का कैसा दे जुए से ध्यान थोए सको। तो पहले बात जे अमु अपने सोतनों ब्योजनों का बखौत जुए से ठीक थोड़ा चाहिए, नीज पूरे करने चाहिए, खड़ियो दस बोरे टोले सांडियो दस बोरे काम करियो ये जो जरूरी हो सो जे अमु सुआ करियो आराम करना चाहिए, अपने नीज पूरे करने चाहिए ताकि शरीर और दिमाग दुई के आराम भेटला। दूजे बात जे जिशो ब्योजियो कम से कम 25-20 मिनट अमु किए योगा व्यायाम करना चाहिए और ध्यान लाना चाहिए ताकि शरीर के साथ साथ हमारा जो दिमाग है से भी स्वस्थ रोला। इन्हीं के साथ साथ सबसे खास बात अमु अपने खानों पीनों का खास ध्यान थोड़ा चाहिए, वक्त दो खानों के खाओ सज्जो खाओ, ये जो बहुत जरूरी है।

उमारे स्वास्थ्य का आल उमारी खानों की थाल दाऊं। जिस शो खाई लो त्यों ज्यों डंग शो खाई लो और ज्यों बख्तो दो खाई लो, इंदे गशी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करो। स्वास्थ्य के सबसे बड़ा धन भी तो वही बोलो, क्योंकि उनकी भद्दी संपत्ति और सुख सुविधा का भी इंसान तभी आनंद लो सको जब स्वास्थ्य ठीक होला। यानी कि उनके भद्दे धन दौलत का आधार भी स्वास्थ्य असो। तभी काम करियो, पैसा भी तभी कमाइयो जब स्वास्थ्य ठीक होला, और तभी तीनों पैसे और सुख सुविधा कमाइयो का भी फायदा असो जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होला, शरीर ठीक होला। तो अपने बातचीत लाए थो बे इंदे शागे आनंद लुए की सिरमौरी लोकगीत का, क्योंकि मनोरंजन करना भी जुए से स्वास्थ्य के बहुत जरूरी है। तो सुनो तू है जोगिंद्र सिंह हावी की आवाज़ दा एक सिरमौरी लोकगीत।

ਐਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਵੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਬੱਠੀਆਂ ਗੀਤ। ਇਹ ਪੇ ਬਾਤਚੀਤ ਆਗੇ ਬੜੋਂਬੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਬੇ ਉਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਕਸ਼ੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 25 December 2014 ਦੇ ਥੋਏ ਥਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਤਲੋ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਰ ਦੇ ਚਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਔਰ ਨਾਨੀੜਿਆ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਖੈ ਇਤਲੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਭੇਟਦੇ ਲਾਗੇ। ਯੋ ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੋ ਨਾਨੀੜਿਆ ਪੇਟਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਤਿਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਨੀੜਿਆ ਖੇਜੂਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਵਸਥ ਪੈਦਾ ਹੋਲਾ, ਸਵਸਥ ਠੀਕ ਰਹਲਾ ਔਰ ਸਵਸਥ ਤਰੀਕਾ ਸੇ ਬੜਾ ਬਣਲਾ ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਜੂਏ ਸੇ ਸਵਸਥ ਰਹਲੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੇਟਬਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਔਰ ਨਾਨੀੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਭੀ ਖੇਜੂਏ से जानलेवा बीमारी से बचाने की तई है वक्त वक्त गशी टीकाकरण का कार्यक्रम जुए से चलाए थो। इन सभी कार्यक्रम उनछा ए कार्यक्रम सो मिशन इंद्रधनुष जिन्हें गशी एतलो मारे बात रह लगे। तुओ की पता होला जपेट बारे महिला दे और एक ही दूसरा लोग ननड़िया दे एतलो वक्त वक्त गशी बांति बांति के टीके लाए ले ताकि तिंदी किए बीमारी न लागो। पर अगड़े का ऊँ थियो जुंजे है भी बड़े बुजुर्ग मुआरियों कार्यक्रम मरी जुड़ियों दियो सो तिनके ही अच्छी ढंग से पता होला जे अगड़े ननड़िया टिकाणो बड़ा मुश्किल काम हो थिया। पैदाणों के एक दो साल बितरो जुए से ननड़िया दी बांति बांति की बीमारी लागो थी और भूती भय ननड़िया जुए से तित की जान भी जाओ थे। तो इन्हें की तई है ताकि ननड़िया और माँ दुनिया सुरक्षित रोले, बीमारी से बुचियो रोले और स्वस्थ रोले उमारी सरकार है एज योजना इंद्रधनुष लियाए। यो मिशन को नाव इंद्रधनुष तभी तो थे क्योंकि ज्यो बाती है इंद्रधनुष दे सात रंगू जिन्हें ख्याम के थी पणियारे भी भूलो। त्यों ही बात है जब ऐसा कार्यक्रम शुरू करा तो इंदा साथी बीमारी से बचाव करने का और छुटकारा पाने का मकसद हुई था थोए सरकार है ताकि ननड़िया और माँ जुए से दुनिया स्वस्थ रोले। जब 2014 दा ऐसा मिशन पूरे भारत दा शुरू करत हुई था तब तो टीकाकरण के माध्यम से साथी बीमारी शाह माँ और ननड़िया का बचाव करना इंदे का खास उद्देश्य थिया और जी सात बीमारियों सो जशो टीबी हो, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया या खसरा जैसे रोगों सो इन भत्ती बीमारी शाह छुटकारा पाना भारत सरकार का मकसद थिया। यह योजना के अंतर्गत जुंजे टीका लाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों सो से गौरव गौरव जाइयो तीनों सभी 5 साल ताओं के ननड़िया और खास करके तो 2 साल तक के ननड़िया और इन देख साथी महिला दार टीका लाने का काम करो जिन्हें देखे जरूरत हो। यो इंद्रधनुष मिशन के माध्यम से सरकार के स्वास्थ्य कर्मचारी गौरे गौरे उठियो जांच पड़ताल करे और जो सिको सीधा टीकाकरण की जरूरत थे तेंदे वक्तों वक्तों गशी टीके लाए और यो मिशन इंद्रधनुष सफल बनने दा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वाले जो वर्करों सो तिनका खास योगदानों सो। 2017 दा टीकाकरण की कवरेज बढ़ानो है सरकारे सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू करा और इंदा खास ध्यान सरकारे तीनों जिले

और इलाके दा दिया जिंदे टीकाकरण के जो कवरेज है से बहुत कम थे, और जो सघन मिशन इंद्रधनुष के अगले चरण का काम जो है से 2019 दा सरकार है शुरू करा, और भद्दे दूर दराज के इलाके ताऊ माँ और ननड़िया के टीकाकरण के जुए सुविधा से तीन ताऊ पहुँचाने का काम करा। जब 2020 दे कोरोना महामारी पूरे दुनिया दे फैल रहे थे तो भारत भी कोरोना की चपेट दो जिंदगी वजह से एजा मिशन इंद्रधनुष जुए से ढीला पड़ा और ठीक ढंग से जुए से लागू नहीं कर बोटी। तो जुन जे माँ और ननड़िया टीकाकरण से छोटे गिए तीन खे 2021 दा मिशन इंद्रधनुष का नवा चरण शुरू करा सरकार है, और तीनों सोभीताओं टीकाकरण का लाभ पहुँचाना है सरकार है जो ऐसे एज ए पहल शुरू करे। तो ऐज लागे बात हमारे मिशन इंद्रधनुष गशी, तो अब सुनाऊ दे एक सिरमौरी लोकगीत।

एजा सुना तू है कृष्ण लाल सेगल की बाशदा बैगे बठिया गीत। एपे पाऊं बे अपने नजर एतलो के कुछ खबर समाचार गशी। हिमाचल प्रदेश के दो वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू के देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से तीनू सम्मानित थे करे। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बुलो जब प्रदेश के जा गर्व का बख्त सो और यो मौके गशी तिनिये धुइये तीनु धुई जवानों के बधाई भी दे। ब्याली राज्यपाल कविंद गुप्ता है बुलो जे एतलो के बख्त दे अमू अपने नोइया अपनी संस्कृति परंपरा अरी जोड़नों का जुए से जरूरत सो ताकि एतलो के नोइया अपनी जिम्मेदारी समझने वाले बुन ले और देश की भलाई करने वाले अच्छे नागरिक बुन ले। ब्याली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुए शिमले के मशोबरा दो हिमाचल का पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र जुए से तिने का शुभारंभ था करे। तिने बुलो जे नशा जुए से हिमाचल दे एक बहुत बड़ी समस्या सो। तो ऐसे थे एतलो के कुछ खबर समाचार। एबे हमारी सरमौरी कार्यक्रम का वक्त है चला एबे भेटियूं बे शुक्र है तो बताओ के मुख्य दियो इजाजत अपना थो ध्यान तुआ सो भी सुनने वाले खे शीतल शर्मा का राम राम।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता के निशा शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। आशा है पे तुसे सब ठीक ठाक होने और अपने सेहत का ध्यान रखने लगे होने। देखो आज अपने कार्यक्रमों दे आसा गलबात करनी अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख ध्याड़े रे बारे दे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे बारे दे। आपने सुनने वाले के खास खास खबर भी सुनानी और साथ साथ तिनारा मनोरंजन भी करना, पर सभी तो पहला गलबात करनी जनगणना 2027 रे बारे दे। जनगणना 2027 रे पहले चरण रा आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य दे निर्धारित तरीका रे अनुसार 16 जून 2026 थे 15 जुलाई 2026 तक करया जाना। एते थे ठीक 15 दिन पहला यानी कि 1 जून 2026 थे 15 जून 2026 तक स्वगणना यानी कि आपो गिनने रा मौका भी हिमाचल वासिया रे रहना। निवासी जो है scensusgov.in पोर्टलों पर दिखाए कि आपो अपनी जो है से जानकारी जो है देते दे भरी सको। जनगणना 2027 रा काम डिजिटल माध्यमों से करया जाना। पहले चरणों दे मकाना री स्थिति, परिवारों के उपलब्ध जो सुविधा या और परिसंपत्तियां से संबंधित कुल जो है 33 प्रश्न जो है से इत्ते दे पूछे जाने। जनगणना अधिनियम 1948 रे अंतर्गत जनगणना दे दी गई सारी जानकारी जो है से गोपनीय होई, मतलब ओरिजिनली ये दसी जांदी और इतरा जो उपयोग हुआ केवल नीति निर्माण और अनुसंधान का हमारी तही जो कराया जावा। तो आशा के जो है इत्ते दे शामिल होना चाहिए और अपनी जानकारी आपो भी तुसे भरी सको इत्ते दे। तो ये तो थी थोड़ी जी गलबात जनगणना 2027 बारे दे। ये भी अपने सुनने वाले के पहला से एक लोकगीत सुनाना।

ठंडी ठंडी शिमलेरी, गाने वाली थी शकुंतला जी। ए भी असा गल बात करनी अंतरराष्ट्रीय अभिलेख ध्याड़े रे बारे दे। दुनिया रे रीत और इतिहास गवाह है पे पुरानी गाथा संस्कृति और बीती री गल्ला खे संजोई की राखने री तें कागजात री भूमिका सभी थे बड़ी रोई। किसी भी देश समाज या संस्था रा बीत्या दा वक्त तिनारे अभिलेखागारा दे सुरक्षित रवा। इना ही पुराने सरकारी कागजा रे महत्व री तई लोका के जागरूक करने और दुनिया पर ओदे अभिलेखागारा रे कामा री सराहना करने री तई जो है हर साल 9 जून के यानी कि आज के दिने जो है से अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख त्याड़ा जो है से मनाया जावा। ये दिन आशा के याद दिलावा पे ये पीले पड़े कागज पुराने कागज नहीं बल्कि ये आसारी पहचान आसारे अधिकार और आसारे इतिहास और जीवंत आत्माएं। 9 जून 1948 के

यूनेस्को देख रेखा दे अंतरराष्ट्रीय अभिलेख परिषद जो है से बनाई गई थी। ए तेरा मकसद पूरी दुनिया दे पुराने दस्तावेजा के संभालना और तिना के बचाई की रखना था। साल 2007 दे ए ICAD आम सभा दे ये फैसला लाया गया भाई परिषद रे स्थापना तैयारी यानी कि 9 जून के हर साल जो है से अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख तैयारी रूपों दे जो है से मनाया जाना। सरकारी तौर पर दे पहला अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख त्याड़ा जो है से 9 जून 2008 के मनाया गया था। तदुथे लई कि आजो तक हर साल पूरी दुनिया दे ये दिन एक खास थीम यानी कि विषय साथे मनाया जावा। आऊँ तुसा के दस दूँ भी अभिलेख जो है से ओ क्या है। आसान शब्दा दे अगर बोलूँ तो अभिलेख तिना कागजा चिट्ठियाँ फोटो नक्शे सरकारी हुक्मा और डिजिटल फाइलरा कट्ठा करया दा रूप आए जिना के तिनारे ऐतिहासिक और कानूनी महत्व री खातर हमेशा सहेजी की राख्या जावा। ये आसारे इतिहासों के जानने रा सभी थे पहला और पक्का जरिया है। इस त्याड़े के मनाने रा क्या उद्देश्य है तस्वीरों तो सक दस दूँ प्यासे कौं इस त्याड़े के मनाने लग रहे हैं लोका के समझाना आम लोका के दसना पे ये जो पुराने दस्तावेज आए तिनारे हकोरी रक्षा करना और इतिहासों के जानने तई कितने जरूरी आए। दुनिया भरो दे अभिलेखगारा सरकारा और नीति बनाने वाले रे बीच दे आपसी तालमेल के बढ़ाना ताकि जो युवासर अभिलेख है इन्ना के ठीक तरह थे रखा जा सको। जो मुश्किलात है मिलो कागज तिना के आसे किया बचाना लड़ाई आपदा या मानवरी लापरवाही थे खराब होने लगे रही जो पुराने दस्तावेज कागज है तिना के जो है आशा के बचाने पाते जो है ध्यान देना चाहिए ताकि इसे जो है खराब ना हो जाओ। इतने से क्या होना अगर यो जो कागज है पुराने खराब हो गए तो आशा के जो है वह आसारी संस्कृति आसारी जो है जो भी जानकारी है पुरानी से आशा के नहीं मिलनी। समाज और देश छोड़े तई ए तेरा क्या महत्व है आऊँ तेसा के तेते के भी तुसा के दस दूँ। देखो बिना किसी लिखे दे कागज या दस्तावेज थे इतिहास एक सिर्फ सुनी सुनाई कहानी बनी की रही जाना मतलब आशा के तो कोई पता ही नहीं है कोई प्रमाण ही नहीं आसे बोलूँ है ना फिर बताओ किया दस सको तुसे तो जब आशा के कोई कागज ही नहीं होना ही नहीं तो उसे आशा के सुनी सुनाई कहानी है से बातों से आदि प्रदी प्रदी रनी याद और जो खत्म हो जानी लास्टों तक। ये अभिलेख आशा के दसों भी आशा रे दादे परदादे किया रहो थे राजे महाराजे और सरकार रे नीतियाँ केड़िया ओथिया अभिलेखा रे कानूनों दे भी बड़ा मोलवा देशों रे सरहद सीमा रे कागज जमीन रिकॉर्ड और अदालती फैसले ये सब अभिलेखा रे रूपों दे सुरक्षित रहो किसी भी लड़ाई झगड़े दे कागज ही आखिरी सबूत जो ऐसे मानने जाओ। एक लोकतांत्रिक देशों दे लोका के सरकार रे काम जानने रा हक है सूचना रा अधिकार जेड़ा कानून भी इना ही रिकॉर्ड पांदे टिकिया दाए अगर सरकारी फाइल और रिकॉर्ड सही तरीके थे संभाल की नहीं रखे जाने तो भ्रष्टाचार बढ़ना और जवाबदेही तय नहीं होनी नहीं। अगर आशा कोई कागज ही नहीं है तो अगर आशा तो कोई जानकारी पूछोगा भी बताओ भी ए तेरे बारे दे तो आशा के तो कोई कागज नहीं आशा किया दसना तो तेते से क्या हो जाना भ्रष्टाचार जो ऐसे बढ़ जाना। अतीतों दे लए गए दे फैसले तिनारे नतीजिया के पड़ी की भविष्य री अच्छी नीतियाँ जो ऐसे बनाई जा सको या चाहे से कोई महामारी रा इतिहास हो आर्थिक मंदी हो या पर्यावरण रा बदलाव हो पुराने रिकॉर्ड ही आने वाले वक्तों री तई नीति बनाने वाले आखे तूरा रास्ता जो ऐसे दसो है। भारत रा इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है एती अभिलेखा रा बड़ा खजाना है। नवी दिल्ली दे भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आए जेती करोड़ों पुरानी फाइला मुगल कालो रे शाही फरमान राजाओं रे आपसी समझौते और आज़ादी रे वक्तों रे गुप्त दस्तावेज रखी रखे। ए तेरी स्थापना जो है 1891 दे कोलकाता दे हुई थी। अगर आसे हिमाचल प्रदेश की गल करिए तो आसारा राजकीय अभिलेखागार शिमले दे आए एती जो है पहाड़

नवी चुनौती और मौके दोनों आए। आज दुनिया भरों दे पुरानी कागजी फाइलां जो कि स्कैन करी कि कंप्यूटरों दे डिजिटल रूपों दे सुरक्षित करी जाए करो या एते थे ये फायदा हुआ पे मूल कागजा के बार बार हाथ लगाने थे खराब नहीं होने से और दुनिया रे किसी भी कोने से बैठा मानू जो है इंटरनेट पाते एते के जो है से देखी सको। तो ये भी चुनौतियाँ क्या आई है से भी दूसरा के दस्तूँ। देखो डिजिटल फाइला रा जो हैक होने रा कंप्यूटर वायरस वायरसों आते थे खराब होने रा खतरा जो है हमेशा बना दरा हुआ। तकनीक बहुत तेजी साथे बदल दी रोई जेड़ी चीज़ा पहला थिया जेड़ी कि सीडी होगी या फ्लॉपी दे रखी दी रख रखोते से आज रे कंप्यूटर दे नहीं खुल दिया नहीं डेटा के नवे सॉफ्टवेयर दे बदलना एक बहुत बड़ा जो है से काम आए। कई जगह पुराने दस्तावेजा के दीमक सीलन और आगे थे बचाने तई आधुनिक मशीना और बजटोरी कमी भी हुई जाए। ये दिन किया मनाया जावा तेतर बारे दे भी अंतुसा के दस दूँ। राष्ट्रीय राज्य अभिलेखगार आम लोकारी तई खोले जाए और जेड़े दुर्लभ ऐतिहासिक कागज या तस्वीर आम तौर पाते जो है नई दिस्तिया तीना रीते ही जो है इनारी प्रदर्शनी लगाई जाए। बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालय के इतिहासकार इकट्ठा हुए और पुराने दस्तावेजा के बचाने रीते ही नई तकनीक पाती जो है से चर्चा करो भी किया इना के बचाया जा सको। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख त्याड़ा केवल एक कैलेंडर रित्री की नहीं आए बल्कि अपने बीते वक्त के संभालने रहा और तेस के आदत देने रहा एक बड़ा संकल्प आए। अभिलेख आसारे समाज जोरी याद आए और जिस समाज जोरी अपनी याद और इतिहास नहीं होंदा तीसरा कोई भविष्य नहीं हो सकता। एते अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख त्याड़े पांदे आशा के अपनी पहाड़ी धरोहर और देशोरे इतिहास के बचाने रा प्रण लेना चाहिए। तो ए तो थी देखो गल बात अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख त्याड़े रे बारे दे ए भी जो है आपने सुनने वाले के एक लोकगीत फिर सुनाना।

तेरे निरैण या दो गाने वाली थी रेनू भारद्वाज और साथी। तो ये भी ऐसा गल बात करनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे दे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जेतेरा उद्देश्य गांवा दे सड़कारा सुधार करना है। ए ते योजना रे तहत सरकारें जो है गांवा री सड़का के बनाने और तिना के ठीक रखने री तई एक योजना तैयार कर रखी, जेते थे जो है गांवा दे रहने वाले लोका के शहरा और कस्बिया तक पहुंचने दे आसानी हो। ए ते योजना के जो है 25 दिसंबर 2000 के तत्काल जो है अटल बिहारी वाजपेयी सरकारें शुरू कराया था। ए ते योजना रे क्या उद्देश्य है तिना भी तुसा की दस दूँ। गाँव दे जो है सड़कारा सुधार करना ताकि लोका के ओरे पोरे जाने दे कोई दिक्कत ना हो। गाँव दे रहने वाले लोका के शहरा और कस्बे तक पहुँचने दे आसानी हो। गाँव दे आर्थिक विकास हो दे बढ़ावा देना और स्वास्थ्य शिक्षा और जरूरी सेवाओं दे सुधार करना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे शुरू होने थे क्या लाभ हुआ तिनारे बारे भी थोड़ा तुसा दस दूँ। जब गावा गावा दे सड़का दे सुधार हुआ तो लोका के जो है देखो शहरा दे पहुँचने दे आसानी होगी। कई बार एड़ा होता ना भी लोग बीमार हो जाओ थे तथो तक सड़का नहीं होती तो तिना के अस्पताल दे पहुँचाने तक बड़ा भारी मुश्किल होती, तिना के चक्की के लियाना पड़ो था। और कई बार जो कई आदमी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो थे नहीं पहुँच पाओ थे तो तिनारे मौत भी हो जाती। पर जब गाँवा दे सड़का पहुँच गया तो तिना के जो है शहरा दे अस्पताल दे पहुँचने तक जो है सुविधा होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे जो है तीन चरण है। पहले चरणों दे जो है से 2000 थे शुरू हुई कि 2013 तक था। एते चरणों दे योजना रा उद्देश्य जो है गाँवा दे सड़का दे सुधार करना था और 24,210 किलोमीटर सड़का के एते योजना रे तहत जो है से बनाया गया। दूजा चरण जो है 2013 से 2019 तक हुआ। एते चरणों दे योजना रा उद्देश्य गाँव री सड़क संपर्क दे सुधार करना और सरकारी गुणवत्ता दे सुधार करना था। एते चरणों दे जो है 2,585 किलोमीटर सड़क के जो है से बनाया गया। कोई जो टूटिया दिया सड़क थिया तो तिना के जो है से ठीक कराया गया। जो तेरा तीजा चरण था से 2019 थे लई की 2025 तक था। एते चरणों दे योजना रा उद्देश्य जो है थे गाँवा दे सड़क संपर्क दे सुधार करना और सरकारी गुणवत्ता दे सुधार करना था। एते चरणों दे जो है 1,25,000 किलोमीटर सड़का के बनाया गया। एते योजना रे अंतर्गत जो सड़का 6 साल थे

पुरानी आए तिना री मुरम्मत करी गई। और जो सड़का 6 साल थे भी ज़्यादा पुरानी थिया तिना 5 दिन नई सड़क जो है से बनाई गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थे गाँव रे जीवनों दे बहुत बदलाव आया, तिना रे जीवन शैली दे भी जो है से बदलेगी। क्योंकि देखो जदों तक आशा की सुविधा नहीं होंगी नहीं ना तदों तक आसे कुछ नहीं कर पाते नहीं। जब आशा की थोड़ी थोड़ी सुविधा हो जाओ या तो इतने थे बहुत ज़्यादा आशा के फायदे हुए जियाँ कि जियाँ सड़क बनिया तो इतने थे आर्थिक विकास हुआ, किसान की फसल जो है आसानी साथ बड़े बाजारा तक पहुँची जेते थे जो है तिनारी जो है से कमाई भी बढ़ी। पक्की सड़क होने थे एम्बुलेंस आसानी थे जियाँ कि मैं बोले पे गाँव आते पहुँच सको थी और बच्चे स्कूल कॉलेज जा रही तई जो है शहर आदे आई सको थे। सड़कारे बनने दौरान स्थानीय लोगों के भी जो है तेती काम काज भी मिलिया। ये तो योजना तहत बनी सड़कारी गुणवत्ता पाते विशेष ध्यान दिया जावा और इनारे रख खाव री जिम्मेदारी भी तय करी जाए ताकि लंबे वक्तों तक जो है यो सड़क जो है से खराब ना। तो ये तो थी थोड़ी जी जानकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। तो देखो ये भी आपने सुनने वाले के कुछ खास खास जो है सा खबर भी सुनाणियाँ। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी जी बोलिया पे प्रदेश सरकार जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती देने लगी रही। एती रीत सरकारें जो है किसाना बागवाना पशुपालका और मछुआरे के कल्याण रीत महत्वपूर्ण निर्णय लाए। धर्माणी जी आज घुमावी के लोककारी समस्या सुनते हुए बोलिया पई सरकारें एड़े किसानों रीत कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का फैसला ले रखा जिन्हों की जमीन जो है नीलामी के खतरे दे आई। ए तो योजना के तहत प्रदेश सरकार पात्र किसानों के 3 लाख रुपए तक रे कृषि ऋणों पाते ब्याज देनदारी का 50% वहन कर जाना। सरकार रे ए तो ऋण थे प्रदेश और 6,356 किसानों के लाभ मिलना। तीन बोलिया पे सरकारें राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का 4वां चरण शुरू करने की भी मंजूरी देती थी। तीन ए तो मौके पाते ज़्यादातर समस्याओं का तेथे ही जो है से निपटारा करीता। प्रदेश के 2 वीर सपूता कैप्टन जोगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू के देश और प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित जो है से कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एते के गौरवपूर्ण क्षण दसते हुए दोनों जाबाजा के एते सम्मान रीते ही जो है से बधाई भी देती। एम्स चमियाणा के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा जी बोलिया पई एते अस्पतालों के अगले 1 महीने के 3 टेल्सा MRI मशीन लगी जानी। तीने एक पत्रकार वार्ता के संबोधित करते हुए बोलिया भी एम्स चमियाणा के बहुत कम वक्तों दे पूरी तरह से क्रियाशील करता दाए। तीने बोलिया भी अस्पतालों दे मरीजों की संख्या दे लगातार बढ़ोतरी होने लगी रही और एती हर रोज OPD की संख्या 1,000 से उबे पहुँच गई दी है। तीने बोलिया भी अस्पतालों दे 24 घंटे की लैब सुविधा ब्लड स्टोरेज सेंटर और CT स्कैन और एक्सरे सुविधा शुरू करती दिया है और डायलिसिस री सुविधा भी मरीजा के दे जाए करो। तो यो तो थिया कुछ खास खास खबर। तो जानते जानते आपने सुनने वाले के एक लोकगीत फिर सुनाना।

शिवदत्त कुमार रेगा लोगी तो साथे देखो आसारे कार्यक्रम का वक्त भी होगा मुलाकात होने आने वाले शनिचरे तो दो इजाजत सभी सुनने वाले के निशा शर्मा राम राम।

ये था महासुवी कार्यक्रम। अब प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला पर भी सुने जा सकते हैं।

बेटी है अनमोल योजना तेने हिमाचल प्रदेश सरकार की तेने मिनांग खाक्षमो योजना जी खींदुक्सिया तेने ई जुलाई तरी जुलाई नितोंग चुल तेने गोसु कई हिंदुसिया ई योजना बीपेल योकन जिमे गिवे तेने फोमो गेला पेंजोर की थोकला तेने रोकलम फेन्ना की फिले हिंदुसिया तेने ई योजना की तेने रोकलम छे तेने फांतो दे तेने खाम्बाची चिंग नेलो तेने फोमो नीलमनी थपका मासिया सरकार पोमो रे रे वे तेने पोस्ट ऑफिस छे जी यहाँ बैंक के खातरों तेने पोमो के जगाबला तेने 1,000 जमा जो आसिया तेने ई वी मेयू सवो दे तेने पोमो गेला तेने मूल गोशु योसना छे तेने यहाँ लोब जुंग पे तो डोसना ची ना खांगे थोल ही ना पोमो गेला आत्मनिर्भर सुना हिंसिया ये बोला जमा धांगबो ने लो तेने कॉलेज थोंटन रूपा तेने पोमो गेला लोला 450 ने लो 5,000 के स्कॉलरशिप का त्यासिया और तेने पोमो ये किताब छे तेने यहाँ खोलाक रंग होते गया न्यों ने दिखासिया तेने ई योजना की तेने मियूल द चीन दो पास ने तेने ची सौ नांग दो छे तेने नांग में भी नांग दो पोमो की फिला यहाँ थुआ डारे से मिंदु पा यहाँ नेगेटिव नरेशन नरेटिव योगन ग्यारह होते गले तेने गिर चुना इंसिया तेने पोमो की भी तेने पोमो गले चुकुन ल पामा तांग दा मिंदु पा होते गले तेने रोके जुना इंसिया तेने पोमो गले स्कूल ल चुक चिलो तेने पोमो गले सिल चुना इंसिया तेने पोमो गले तेने मूल योगना योगन लेवा फेन्ना की फिला पोमो गले रोपा फेन्ना इंसिया एसिड चुना इंसिया तेने पोमो गले तेने आत्मनिर्भर सुना इंसिया तेने पोमो गले स्कॉलरशिप की गुन लो यहाँ ये सिलना डिकासिया तेने ई की तेने फंतो तो सुसुल थप को पा तेने फंतो तो ची को पास ने तेने हिमाचल सरकार तेने ई योजना की गुन लो पोमो गले पोमो के स्थान ने लो तेने पोमो के जिलो तेने पोमो भी तेने पोस्ट ऑफिस या बैंक के खाते भी नांग दो तेने 1,000 जमा जो आसिया ते यहाँ पोमो जमा तांबो ने लो तेने सोमवार सिलेन यो ना खोबो गेल लोल तेने 450 को आसिया तेने जमा जिपार सिलेन यो ना दुंगे निपचो दो तेने अपार सिलेन यो ना गुप्त गुप्त गया छे तेने ठुपा दुंबार सिलेन यो ना तोंची रंग निपचो दो तेने जमा गेपार सिलेन यो ना तेने गेचुंगी दो तेने जमा गुपा चुपार सिलेन यो ना गेचो यंगा छे तेने जमा चुकचिक चुंगी सिलेन यो ना नितोंग निपगे निपचो दो तेने स्कूल थोंचे गाबला तेने यहाँ कॉलेज सिलेन टू गेले यहाँ बीए पमो बीए जोइन यो ना छे बीकॉम जोइन यो ना छे बीएससी छे बीटेक एमबीबीएस छे एलएलबी रंग बीए रंग ची जोइन यो ना तेने खोंबा गेले तेने लोला तोंगा थपकासिया तेने तेने इसु कांगने दिखा पासन तेने ई कांगेंगे तेने हिमाचल की हिमाचल प्रदेश उद्यागा निवासी जी योंग गुशुसिया तेने पमो बीपेल पमोल बीपेल योंग गुशुसिया तेने बीपेल को जिमे गेल तेने मंगा लोंगो सेन नाजिन पमो नील मने तेने थपतांग थपका मासिया तेने पमो जुलाई तरी जुलाई की तरी ngा नितोंग चु के गाबले के दगा पमो तोले तेने ई की फंतोक थपका सिया तेने यांग पमो लोचोब गे छाजी छाज गब लमन तेने भामा जो नाम है खासिया तेने ई भी पिला तेने वाई गिची पे कुछ पास ने तेने ई ऑनलाइन कांग ना दिखासिया तेने ऑनलाइन कांग ना छे ऑनलाइन कांग जिलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ना योगा ते यहाँ शे मौसम ना यहाँ अंगनवाड़ी सेंटर लडो ना दिखा यहाँ सी डी पी ओ ऑफिस लडो ना दिखा लोक भीतर केंद्र के पूछ लो यहाँ कांग ना दिखा तेने ई फॉर्म कांग जी गब ला तेने ई फॉर्म ला तेने अंगनवाड़ी लेवल पे वर्कर गिर तेने दिखा तेने खोब गया अंगनवाड़ी लेवल पे कहेंगे तेने ये पोस्ट ऑफिस छे बैंक गिर तेने टू गी मिल खाता पिया तेने लोचोप गे छाज गब ला तेने पोमो पोमो पोमो ला तेने मूल तरह पोमो थोपकासिया तेने स्कॉलरशिप नाम थोको पासन तेने पोमो गे एडमिशन नेंज गाबलो थोपकासिया तेने वती फिले तेने फामा गे तेने स्कूल की यहाँ हेड मास्टर जाऊते गे यहाँ मिदबा खोंबो गेला तेने एप्लीकेशन टीच देर गोशोसिया तेने स्कूल के हेड मास्टर तेने ई बेटी है अनमोल योजना की तेने परियोजना अधिकारी के यंग माबा खोंबो गेलती आसिया तेने खोंबो गे तेने इचाला पास सोसिया तेने ओतु सिंधु तेने यांग सुतोंग जी ई विफंतो नेन मेन तेने या नेन ना मेना मति याकु दुसु शुनाइन तेने यम जी इन ता ई के गबला अन तशी सोमो के लुन्य बुशिंग नाइन।

ई जनगणना नितों जिस सब दुन के पहला चरण के कोला हिन त एक काबत रें कि खास लोन डरेंगे ना हिन तेने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू सने तेने हिमाचल प्रदेश नॉर्वे की नियम बोला एडवांस वेस्ट मैनेजमेंट चे जलो सतत विकास के फिलहाल लेवा पे ना हिन सिया मुख्यमंत्री तिरिंग शिमला रो तेने खोंग ला थूक तु यो नॉर्वे के एम्बेसिडर की नियम बोला तांग वासिया तेने मुख्यमंत्री सेने हिमाचल यर्गे तांग ना छे तेने किमसे गेला तेने यहाँ दोबारा फ्यूचर चुना की फिल तेने नॉर्वे नॉर्वे की तेने एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए फ्यूचर ताना एजेंसिया खोंग से ना प्रदेश सरकार सतत छेजल पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास ला तेने बढ़ावा ताना की फिल ला तेने नॉर्वे की जब डेवलप होने में ना या कोई उनसे दुख सिया तेने खोंग नॉर्वे की कंपनी के लिए हिमाचल तो हिमाचल रू तेने पर्यटन छे ग्रीन एनर्जी छे जियो थर्मल एनर्जी गेला तेने इन्वेस्ट होना दिखासिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी सेना तेने प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला तेने मजबूत जोना हिंसिया तेने ई विफिला तेने सरकार किसान गे छे तेने बागवान गेल छे तेने पशुपालन जोइंग गे छे तेने यांग न्याशलेन रंग होते गेल तेने होते गी फिला खाचमु डिसीजन जिने परेसिया तेने खोंग थिरिंग मिगिन्यंबो तेने लापतांग सेन तेने खोंग ई छे सोंसिया तेने एम्स जमियाना की प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिज शर्मा सेना तेने श्री टिस्ला एमआरए मशीन तेने टिंगमा दावा रूपा तेने मंगखांग रू तेने इंस्टॉल जोना हिंसिया तेने डॉक्टर ब्रिज शर्मा सेना तेने एम्स जमियाना गोवा पूरा ऑपरेट जोना हिंसिया तेने खोंग से तेने मंगखांग रू तेने नतपा गे मीनांग मत योंग दूसिया तेने खोंग से शाह ला तेने पेशेंट चिकटोंग थल योंग दूसिया तेने खोंग से मंगखांग ला तेने 24 घंटे वे लैब फैसिलिटी छे तेने ब्लड स्टोरेज सेंटर छे तेने सीटी स्कैन छे एक्सरे रंग होते गेवा योगासिया तेने यम जी इन ता एक गावला तेरिंग की पिती लुजुंग ने बोडा रेंगे ना इन।

स्पीति कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अनीता परमार की आवाज में ये लोकगीत।

0: लोकगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिमला से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायतों की पहली बैठक में प्रधानों द्वारा हाल ही में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति द्वारा असाधारण साहस, पराक्रम और राष्ट्र सेवा के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश के 6 वीर सपूतों को बधाई दी है। उन्होंने आज हमीरपुर में कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और छोटा राज्य होने के बावजूद देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए यहाँ के युवा हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल संबंधित सैनिकों और उनके परिवारों का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन शहर के माल रोड पर आयोजित महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक हिमाचली परिधानों में 320 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस महानाटी का थीम माँ यानी मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन था। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस मौके पर महिलाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक भाजपा के 2 पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई है। अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। चंबा के SDM प्रियांशु खाती ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी।
1: इसी मुद्दे को लेके यहाँ अपोजिट पार्टी जो थी वो माननीय हाईकोर्ट में गई है एंड हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली इसके ऑर्डर पे स्टे कर दिया है एंड इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 15th को रखी गई। तो उसके बाद ही इसमें क्या निर्णय आता है हाईकोर्ट का, अगर उसके बाद ही हम इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते। इसमें बेसिकली हमसे रिप्लाई फाइल करने को बोला है, तो इसमें एक रिप्लाई हमारी तरफ से फाइल होगा। उस रिप्लाई के बाद फिर से डायरेक्शन क्या आती है, जैसी डायरेक्शन आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा।
0: हमीरपुर की उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने जिला के सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए एहतियात के तौर पर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मॉनसून की तैयारियों को लेकर एक बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपदा की

शंका वाले स्थान चिन्हित करने और मशीनरी व अन्य संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नालों और नालियों की सफाई करने व खतरनाक पेड़ों को हटाने को भी कहा। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिले के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंकों और विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला स्तरीय सलाहकार व समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बैंकों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण

0: महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। प्रदेश सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। सिरमौर जिला की नाहन तहसील के ग्राम धौण के राजमिस्त्री गोपाल सिंह की दो बेटियों को बोर्ड की इस योजना के तहत 72,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इस राशि से इन दोनों बहनों ने स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
1: दोन गांव सिरमौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं और हमें श्रमिक कल्याण बोर्ड से 36,000 की दो किस्तें मिली है, जिससे मेरी पढ़ाई में काफी मदद हुई है और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है।
0: केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लेकर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कांगड़ा जिला के 4 युवाओं का चयन हुआ है। इनमें तमन्ना राहुल, दीपिका राणा और शगुन चौधरी शामिल हैं। ये युवा 14 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

कृष्णा शर्मा दी आवाज़ सुने तुसा ए लोकगीत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गल करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की एक खास कल्याणकारी योजना है जिसका मकसद आर्थिक तौर पर कमजोर टबरां खासकर जनानियां जो स्वच्छ ईंधन मुहैया कराना कने पारंपरिक चुल्हों से होने वाले धुएं से होने वाले नुकसान से बचाना है। इस योजना का मकसद यही है कि गरीब टबरों जो LPG गैस कनैक्शन मुहैया कराना जनानियों की सेहत की सुरक्षा बधाना कने इन्हां दे टैम कने मेहनत जो बचाना है। योजना ते क्या फायदा है? पात्र टबरों जो मुफ्त LPG कनैक्शन प्रदान किया जाता है, गैस सिलेंडर रेगुलेटर कने जरूरी दस्तावेज ते मदद मुहैया कराई जाती है। जनानियां जो सुरक्षित ईंधन का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है कने इन्हां दी सेहत ठीक रहती है। इस योजना का फायदा चुकने ताई जरूरी दस्तावेज चाहते होंगे हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता ब्यौरा, पासपोर्ट्स आकार का फोटो। आवेदन किन्या करना हुंदा है? नेड़े दे LPG वितरक ते पता करना, आवेदन पत्र लैने ते बाद भरन कने जरूरी दस्तावेज जड़े न से लगाना इस जरूरी हैं। उसके बाद पात्र पाए जाने ते बाद गैस कनैक्शन जारी किया जाता है। तो यह थी उज्ज्वला योजना की जानकारी कने हुण खास खास खबरां अपने सूबे दियां भी लगांदे हन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू होरां ने गलाया कि हिमाचल नॉर्वे दे कन्ने लगातार विकास दे क्षेत्र च काम करगा। मुख्यमंत्री होरां अज शिमला च उन्हां ने मिलने आई भारत च नॉर्वे दी राजदूत च एलिन स्टेनर ने गलबात कराते थे। मुख्यमंत्री होरां गलाया कि हिमाचल निर्माण कने विकार मलबे दे प्रबंधन कने इसो द्वारा इस्तेमाल दे क्षेत्र च नॉर्वे दी विशेषकता श्रेष्ठ प्रणालियां कने उन्नत इसका लाभ चुकगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होरां ने गलाया

की प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो मजबूती दिया दी है, इस वास्ते सरकार ने किसाना बागवाना पशुपालका कने मछुआरा दे कल्याण वास्ते खास फैसले लियो हन। धर्माणी जी, अज घुमारवीं च लोकां दी समस्या सुनने दे मौके पर बोला दे थे। उन्हां गलाया कि सरकार ने दे किसानां वास्ते कृषि ऋण ब्याज अनुदान शुरू करने दा फैसला कीता है, जिन्हां दी जमीन नीलामी दे खतरे च है। इस योजना दे तहत प्रदेश सरकार पात्र किसानां दे 3 लाख रुपए तक दे कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी दा 50% बहन करेगी। सरकार दे इस फैसले ते प्रदेश दे 6,356 किसानां जो फायदा मिलगा। धर्माणी होरां ने गलाया कि सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना दा 4था चरण शुरू करने जो भी मंजूरी दे दियो है। उन्हां इस मौके पर ज़्यादातर समस्या मौके पर निपटाइयां। प्रदेश सरकार ने BMC केंद्रां ते अजे ते दुद्धे दी खरीद बंद करी दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार दे इस फैसले दा कड़ा विरोध कीता है। आनी दे विधायक लोकेंद्र कुमार होरां ने गलाया कि सरकार दा इह फैसला किसानां दी आजीविका पर हमला है। उन्हां गलाया कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने वास्ते नोएं नोएं बहाने तोपा दी है। उन्हां गलाया कि प्रदेश दी अर्थव्यवस्था कने ग्रामीणां दी आय च खास योगदान देने वास्ते दुद्ध उत्पादक किसानां दे कन्ने इस तरह का वे इंसाफी सहन नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के आखिर सुनते हैं राजेश कुमार की आवाज़ ए लोक गीत।

कांगड़ी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिमला से। लीजिए अब प्रस्तुत है लाहौली कार्यक्रम।

जुले नमस्ते इनी हिंची बचाई दो गीत तंजन आंगमो मांगची आकाशवाणी शिमला ची गर्जपई प्रोग्राम दो आदर नांग यंपो स्वागत लिखत थंथे प्रोग्राम की शुरुआत जनगणना 2027 की बोंठे फेंके हिमाचल प्रदेश रो क्यूमई सूची लिखचा नांग छाई की गिनती लिखचुंगी लेन 16 जून रोकची 15 जुलाई अस्तो क्यमेश स्वयं जानकारी पिंचा लो नांग क्यूम क्यूम रो एल जी सर्वे लिखचा ठीक 15 दिन दूरे युलगी मी छाई राई जानकारी ऑनलाइन पिंचा ठुपचियन छो ठे फारम पिंचा बोंठे मी छो सवगणना पोर्टल sesensusgovernment.in रो एल जी राई पता दचा ठुपचियेश थे जनगणना मोबाइल नांग हितीन ऐप रोकची डिजिटल रोकची क्यमेश थे नाना लेन लिखची पा मोबाइल रोकची पता इकट्ठा लिखचू साई बसल तेजी चरण दो क्यूंगी हालत टबर छाई दो खुशी चु सुविधा नांग टबर जोगी तेई चु संपत्ति छाई की बोंठे 33 सवाल शुचुश जनगणना कानून 1948 की तहत छाई की नीति पता जी प्राइवेट बुचुश थे मी छाई की जानकारी हे नाक तो मेश सरकारी लेन नांग रिसर्च लिखचा बोंठे लिखचुश दथनगी समाचार हिनकते प्रदेश सरकार जी बीएमसी केंद्र रोकची थिंचा पेलसी योगचा बंद लिखचीश प्रदेश भाजपा जी सरकार जी थे फैसला रो विरोध लिखता आनी ही विधायक लोकेंद्र कुमार जी लोशीश की सरकार की थे फैसला युलगी रिदम लेनी पर जो बोंठे एपोमेश ताल जी लोशीश की सरकार राई नामकी रो पहचक बोंठे प्याक्चा बोंठे नुई नुई बहाना दचियेश दरुंग युलगी अर्थव्यवस्था लोनंग लेक्स जो दवा कमाई लिखचा बोंठे पेलसी लांगजी मी यमपुर थे चोकसे अन्याय लिखचा दचुमेश लोता तालजी प्रदेश सरकार की यरतो मतई पजो रीदंग लेनी पजो लस्मी नंग नचुम शर्बा खिलाफ थिंची फैसला लिखचगी आरोप तत्ता प्रदेश की निस्किंग वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर नंग मेजर अंशुल बाल्टू रो युलगी छाई बसल तेजी वीरता सम्मान शौर्य चक्र यंपू सम्मानित लिखता प्रदेश की गर्व की फैस हेश लोजी धुरे की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ताल निस्पिर दो बधाई देता कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिला की जोगेंद्र ग्राम पंचायत दारट बागला नंग मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिला की जुबल तहसील की गूसा लिख्स रुकचियेश थे फैसती की गर्व लिखचुंगी के जिमेश बल्कि युलगी युवा बेते जो प्रेरणा थिंचुंगी हेश द थे फैस क्या खोमगे थे तिकी लला हिंकते सुशीला नंग यतोई थिरची लला सिम लेते हो।

आकाशवाणी की थे प्रोग्राम दो थनहेर ग्यूनशी फ्यस भूंटे फेके थसु ग्यूनशी सु फ्यस का हिजलोनंग स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। महात्मा गांधी जी लोशीश की तमशी जोदे एरांगशो स्वतंत्रता रुकचि रोई गुशीश तालगी मांग सपना ते येश की एरी भारत युल रो राजनीति रोकचि के जिमई बल्कि साफ सफाई नंग स्वास्थ्य रोकचि शिचन लिखच ग्यूनशीश थन हिंग जी थजु सपना रो पूरा लिखच बोंठे थजु अमची रो इल के गोयिंचो स्वच्छता नंग स्वस्थ निस्पे

ई राजेश, क्या री थोई थोई नंग वही वही लिक्स रमेश। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जी युलगी हजार लिक्स पर जो एपो बदलाव ऋषिश थन गुई लिक्स जो बारदोई तई अमसी ची लिपचु मई नींस नुमांग इल्दे त लोई के येश थे योजनाई लिक्स थाई गी अर्थव्यवस्था रो शेत दचीश विकसित रायम पुजुराई लिखचैश थे योजना लेक्स जो तेजी तेजी युल रिदंग लेनी पर जो हटी रोकची नंग बेते जो शिक्षा नंग मरीज जो मनखांग रोकची जुराई लिख चाहिश थन हिंगजी विकसित भारत लिख चबूंठे थन लिख चीन छो थे योजना इरी लक्ष्य पूरा लिख चबूंठे तेजी योगदान दचीश थे योजना लुशीश की इरी लिख्स पर जो धुरे बढ़ाई किया नंग इरी युल रोरे विकास के अमेश थे संदेश नंग यंपो हेर ललती हिंकते।

0: Shire nagariye niru channi thirchi lala nangyampo thangi garjapai program kya khomgate giro ijazat dhani chule namaste.
1: लाहौली कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।

0: necessary preparations ahead of the implementation of the Act. Benchmark domestic equity indices ended over 0.5% up today, snapping two-day losing streak. The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. And that is the end of this news bulletin.
1: पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। शाम के 7:10 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं राजेंद्र
3: और मैं शैलजा शर्मा।
2: शैलजा, क्या हालचाल है
3: जी? राजेंद्र जी बिल्कुल ठीक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी सकुशल होंगे और अपने दैनिक कार्य में व्यस्त होंगे।
2: जी शैलजा, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और हम काम की बातों में बात करेंगे सेब के रोग और उपचारों के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से
3: और सुनवाएंगे जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण जिसका विषय है कीटनाशकों के प्रयोग में होने वाली समस्याएं।
2: जी बात करते हैं सेब के प्रमुख रोगों के बारे में। तो शैलजा, सेब का स्कैब रोग कितना व्यापक और भयानक है इसका अनुभव हमारे बागवानों को हो चुका है। स्कैब रोग ने बागवानों में बागीचों की देखरेख और उनसे संबंधित हर तकनीकी जानकारी को अपनाने और प्रयोग में लाने के लिए जागरूकता भी पैदा कर दी है। आज छोटे से छोटा बागवान भी 2 से 3 छिड़काव करता है, जबकि अधिकांश प्रगतिशील बागवान प्रति वर्ष 6 से 7 छिड़काव सारणी के अनुसार करते हैं।
3: जी, भारतवर्ष के जिन राज्यों में सेब उगाया जाता है वहाँ स्कैब रोग विद्यमान है। इस रोग द्वारा अन्य सभी रोगों और कीट आदि की अपेक्षा सेब के पौधों को अधिक हानि होती है। ये रोग सेब की लगभग सभी किस्मों पर पनपता है। हिमाचल प्रदेश में स्कैब की बढ़ोतरी एवं फैलाव की गति अन्य सभी राज्यों की तुलना में अधिक रही है, जिसके आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। जिस प्रदेश में केवल 5 वर्षों के अंतराल में ही स्कैब महामारी का रूप धारण कर गया था, जिसका प्रमुख कारण डेलिशियस जैसी संग्रहक किस्मों को उगाया जाना और अनुकूल जलवायु का होना समझा जाता है। आर्थिक दृष्टि से यह राज्य सेब उत्पादन में अन्य सभी राज्यों से अग्रणी है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रजातियों के उत्पादन में और देश की कुल मांग और उत्पादकता को प्रभावित करने की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है।
2: देखिए शैलजा जी, इस रोग का सर्वप्रथम 1977 में बागीचे जैसे शिमला जिले के कोटखाई, कुल्लू के कई गांवों में और मंडी के गांवों में, चंबा के गांवों में इसे देखा गया और इस रोग का फैलाव इतना तीव्र था कि ये 90% तक बागीचों में जल्दी ही फैल गया और प्रभावित बागीचों की 75% से 80% पत्तियां और 35% से 45% फल स्कैब से प्रभावित हुए थे। लेकिन शुष्क मौसम के कारण रोग का प्रकोप कम रहा, अधिक नमी के कारण रोग की बढ़ोतरी को देखा गया। तो देखिए, इस रोग का जो कारण है वो फफूंद होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे मरते नहीं परंतु धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, पत्तियां समय से पहले गिरने लगती हैं, जिससे आने वाली वर्ष में फल उत्पादन प्रभावित होता है। रोगग्रस्त फल विकृत होने लगते हैं जिससे मंडियों में उचित दाम नहीं मिल पाते, आर्थिक हानि हमारे किसान बागवानों को उठानी पड़ती है। ऐसे फलों का भंडारण भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बागवानों को रोग नियंत्रण के लिए फफूंदनाशकों के छिड़काव के लिए अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है।
3: जी, बात करते हैं स्कैब रोग का जीवन चक्र के बारे में। स्कैब फफूंद की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक परजीवी या गर्मियों की अवस्था जिसे मार्च से सितंबर महीने के बीच में हरी पत्तियों और फलों पर देखा जाता है। इसी अवस्था में जीवाणु संक्रमक और हानिकारक होते हैं। फफूंद इस अवस्था में अनेकों रोग चक्र पूरे करता है और असंख्य कोनिडिया बीजाणु उत्पन्न होकर हवा में तैरते रहते हैं। अवस्था के अंत में पतझड़ से पूर्व फफूंद जाले के रूप में पत्तियों के भीतर दूसरी अवस्था में चली जाती है। जाले मृत जीवियों या सुसुप्त अवस्था कहलाती है और मार्च तक गिरे हुए सूखे पत्तों पर देखी जा सकती है। इस अवस्था में फफूंद की प्रजनन

0: क्रिया होती है और बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार स्कैब रोग फफूंद का जीवन चक्र प्रतिवर्ष चलता रहता है, लेकिन इस जीवन चक्र को समयबद्ध पूरा करने के लिए अनुकूल मौसम और पौधे की रोगग्राही अवस्था का होना नितांत आवश्यक है।
1: शैलजा जी, इस रोग के नियंत्रण के लिए चांदी नुमा कली से ये अवस्था प्रारंभ होती है और इस अवस्था के समय यदि वर्षा होती है और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है तो एस्कोस्पोर्स का विसर्जन होता है, वातावरण में ये फैल जाता है जिनसे कुछ पौधे की कलियों पर ये अंकुरित होते हैं, संक्रमण आरंभ हो जाता है। जिन बागीचों में पिछले वर्ष स्कैब का संक्रमण रहा हो और मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में वर्षा हुई हो और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे तो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में चांदीनुमा से हरी कली की अवस्था में सेट नियंत्रण विधि के तहत रक्षक और टिकाऊ श्रेणी के फफूंदनाशक 200 लीटर पानी में डोडीन 150 ग्राम या मैंकोजेब 600 ग्राम का आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन जिन बागीचों या क्षेत्रों में पिछले वर्ष स्कैब का प्रकोप नहीं रहा, छिड़काव की आवश्यकता नहीं रहती।
0: किसान भाइयों, अब बात करते हैं चूर्णी लासिता रोग की। ये रोग पत्तियों, कलियों, हरी टहनियों और फलों को प्रभावित करता है। पत्तियों की निचली सतह फफूंद के धूसर या सफेद नमदे के समान धब्बे और पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमित पत्तियां मुड़कर सख्त और भंगुर हो जाती हैं। अधिक संक्रमण होने पर प्रभावित पत्तियां गर्मियों में समय से पहले ही झड़ जाती हैं।
1: अब बात करते हैं शैलजा जी, समय से पहले पत्ती झड़न रोग की। तो ये रोग पत्तियों और फलों पर दिखाई देता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर 5 से 10 मिलीमीटर गोलाकार के गहरे हरे रंग के धब्बे नजर आते हैं। ये हरे धब्बे पहले भूरे और फिर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। पत्तियों पर शेष भाग पीले रंग का हो जाता है। गर्मियों के मध्य में संक्रमित पत्तियां झड़ जाती हैं और पेड़ों पर केवल फल ही नजर आते हैं।
0: किसान भाइयों, अब बात करते हैं कैंकर रोग की। काष्ठीय पौधों के तने, शाखा या टहनी पर उत्कशीय अक्सर धंसे हुए विक्षित को कैंकर कहते हैं। क्षतिग्रस्त भाग में कैंकर अक्सर छाल की मृत्यु का कारण बनता है। कैंकर घाव का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। यह घाव काष्ठ के भीतरी भाग को संक्रमित कर सकता है या फिर छाल के ऊपरी भाग तक ही सीमित रहता है। एक घाव को कैंकर परिभाषित करने के लिए कैलस की पुनरावृत्ति होना आवश्यक है। गलत तरीके की कांट छांट, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति, शस्य क्रियाओं के दौरान हुए घाव या जख्म, नाशिकीट आदि कैंकर के प्रमुख कारण है।
1: बात करते हैं श्वेत मूल विगलन की। तो कवक पहले शुरू के जड़ों को संक्रमित करता है। ये संक्रमित जड़ें गहरे भूरे रंग की हो जाती है। बारिश के महीनों में सफेद रंग का कवक जाल पंखे के आकार में फैलता है। आरंभ के लक्षणों में भूमि बहिर्गत भागों में पत्तियां कांसे के रंग की हो जाती हैं। पौधों का कम विकास होता है। पत्तियों और टहनियों की वृद्धि में कमी आती है। रोगी पेड़ पर कम पत्तियां लगती है, पीली पड़कर ये असमय झड़ जाती है। अधिक संक्रमण की स्थिति में बाल रूपी जड़ें पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं। ब्राहक और अधोवाही कोशिकाएं फट जाती हैं। पौधों की मृत्यु तक हो जाती है। वर्षा ऋतु में कवक जाल मिट्टी और जड़ों पर देखा जा सकता है। संक्रमित पौधों पर कई बार 2 से 3 साल तक ये टिके रहते हैं और मिट्टी जनित फफूंदों में मिट्टी की किस्म और आर्द्रता रोग की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होते हैं। मिट्टी में 70% नमी होने पर कवक जाल तेजी से फैलता है।
0: बात करते हैं पर्णचित्ती रोग की। ग्रीष्मकाल के अंत और बरसात के आरंभ में कई प्रकार और रंगों के धब्बे सेब की पत्तियों पर देखे जा सकते हैं। अधिक संक्रमण की स्थिति में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और समय पूर्व ही झड़ जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए 15 दिन के अंतराल पर बरसात में कार्बन डेंजिम 25 से 30 ग्राम, मैनकोजेब 250 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलकर 2 से 4 बार छिड़काव करें।
1: अब बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की। संक्रमित पौधों की जड़ों में मूल मुकुट पर, काट छांट के घावों पर, कभी कभी तने पर 5 से 15 सेंटीमीटर के दृष्टस्फोट नजर आते हैं। दूसरे संक्रमण में जड़ों का विकास एक तरफ होता है, जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं और दृष्टस्फोटों के नजदीक का तना काला हो जाता है। इसके प्रबंधन के लिए मूल बिंतों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की उत्परिवर्तित संतति K84 के घोल में डुबोना चाहिए। संक्रमित पौधों के स्थान पर नए पौधों को नहीं लगाना चाहिए। बागीचे में जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए और जहां तक संभव हो रोग रोधी मूल बिंतों का ही प्रयोग होना चाहिए।
0: जी, बात करते हैं रोमदार जड़ें या हेरी रूट्स के रोग की। संक्रमित पौधों की आगंतुक मूलों को

0: झुंड में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। संक्रमित पौधा 2 से 3 साल में कमजोर हो जाता है और कम फल देता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए रोपण के लिए मूल वृंत स्वस्थ जड़ों वाला होना चाहिए। कमजोर और संक्रमित जड़ वाले मूल वृंत का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: जी, ये तो बात हुई सेब के रोगों और उपचारों के बारे में। तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का। आइए सुनते हैं स्मूथ स्वर में ये सहगान।

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने समूह स्वर में प्यारा सा लोकगीत। अब आपको सुनवा देते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय है कीटनाशकों के प्रयोग में होने वाली समस्याएं। बात करेंगे डॉक्टर रितेश कुमार गुप्ता से। सुरेखा,
1: किसान श्रोताओं, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए नए नए विषयों पर रोचक जानकारियां लेकर आते रहें अपने कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आपके लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कीटनाशकों के प्रयोग के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में, जिसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे डॉक्टर रितेश कुमार गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि बागवानी प्रधान हमारा प्रदेश है, और ऐसे में क्या होता है कि समय समय पर रोग या कीटों के उपचार के लिए हमारे किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग करते रहना पड़ता है, और हमारी कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग की आवश्यकता ही क्यों है, सबसे पहले आप ये बताएं।
2: सबसे पहले मेरे किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारी जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो बागवान भाई हैं या किसान भाई हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, और उसमें हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। हमारी फसलों को लगने वाले कीड़ों से ये जो हमारी फसलों की

0: रक्षा करते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण फायदा है वो ये है कि इन कीटनाशकों के प्रयोग से, चाहे वो यातायात में हम फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाएं, या फिर उनको हम भंडारण उनका हम फसलों का करें, तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के कीट उन पर आक्रमण करते हैं, तो उससे हमारी फसल की सुरक्षा हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसानों में लगने वाली बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, जैसे मलेरिया है या डेंगू है, ऐसी बीमारियां भी कीटों के बहुत सारे जो परजीवी हैं उनके वाहक होने के कारण होती है। तो इनके एक महत्वपूर्ण स्थान है कीटनाशकों का।
1: जी, आपके कहने का तात्पर्य है कि पेड़ पौधों के साथ साथ हम मनुष्यों को भी कीटों के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग की जरूरत होती
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल
1: ये बताएं कि एक अच्छे कीटनाशक में कौन-कौन सी खूबियां होनी चाहिए?
0: जी हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे किसान भाई जब भी किसी कीटनाशक को लेने बाजार जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात देखी जाती है कि जो कीटनाशक है उसकी आसानी से उपलब्धता है बाजार में कि नहीं। दूसरी बात, कीड़ों को मारने की उसकी जो क्षमता है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन लाभदायक जो कीट हैं, जो हमारी फसल की सुरक्षा करते हैं और उन हानिकारक कीटों को खाते हैं, उनको वो कोई नुकसान ना पहुंचाएं।
1: जी, यानी कि मित्र कीटों को वो
0: जी
1: नुकसान ना
0: बिल्कुल,
1: पहुंचाएं।
0: इंसानों को भी उनसे बिल्कुल कम खतरा होना चाहिए, क्योंकि इंसान ही उनसे डील करेंगे। और दूसरी बात है, पौधों पे जब हम उनका छिड़काव करें, तो पौधों को वो कोई भी नुकसान ना वो कीटनाशक पहुंचाएं। साथ ही जब किसान भाई उसका मिश्रण बनाए या उसका स्प्रे करें, तो किसी भी तरह की उनको असुविधा ना हो, मतलब आसानी से वो उसका स्प्रे कर सकें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का तात्पर्य है अगर ये तमाम बातें किसी एक कीटनाशक में होंगी तो एक आदर्श कीटनाशक होगा जो कि मित्र कीटों को नुकसान ना पहुंचाए और साथ ही हम मनुष्यों पर भी दुष्प्रभाव उसके ना पड़े।
0: जी बिल्कुल,
1: अगर कीटनाशक फायदेमंद होते हैं तो फिर इनके प्रयोग से इतनी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? जैसा कि आमतौर पर देखने, पढ़ने या सुनने में आता है, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी बार बार कहते हैं कि रसायन या कीटनाशक या फफूंदनाशक, जो भी रसायन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सावधानी बरते, क्योंकि इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। तो जानना चाहेंगे कि इसके प्रयोग से इतनी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं?
0: जी ये बहुत बार देखने में आया है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो कई तरह के कीटनाशक, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे कीटनाशक भी अवेलेबल हैं, और वो अपनी फसल को बचाने के लिए उन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो ये नहीं समझ पाते कि हमें उनका जो स्प्रे है वो कब करना है। कहने का मतलब है कि उनका अंधाधुंध प्रयोग हम करते हैं। हम
1: जी
0: सोचते हैं कि ज़्यादा अगर हम उसकी क्वांटिटी स्प्रे करेंगे तो जल्दी से वो जो कीड़ा है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एक तो ये बात थी, दूसरी बात है कि जो उसकी रिकमेंडेड जो डोज है, जो अनुमोदित जो मात्रा है, उससे अधिक जब भी हम उसका, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वो
1: जी
0: हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका और हमारे जो पौधे हैं उन पर भी उसका नुकसान होगा। और एक तीसरी जो बात है वो ये है कि जब भी फसल को वो उसकी कटाई करते हैं या सब्जियां हैं तो उसका तुड़ान करते हैं, तो अगर कीटनाशक का उन्होंने अपनी फसल पे स्प्रे किया हुआ है, छिड़काव किया है, तो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है कि कितने दिन के बाद जो फसल है वो मार्केट में किसान लेकर के जाए, तो उसको हम वेटिंग पीरियड कहते हैं। तो वेटिंग पीरियड का अमूमन बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता, जिस तरह आज स्प्रे करते हैं और शाम को या अगले दिन हम उसको तोड़ करके मार्केट में जो है वो ले जाते हैं बेचने के लिए। तो इस तरह की सब्जियाँ जब हम लोग खाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। और आजकल मार्केट में, जैसे हमने कहा, कंपटीशन का दौर है, तो बहुत सारे नकली जो हैं वो कीटनाशक भी मार्केट में उतारे गए हैं कुछ कंपनियों के द्वारा, तो उनसे भी किसान भाइयों को बचना है। और एक विशेष फसल के लिए विशेष तरह का ही कीटनाशक, विशेष कीड़े के लिए एक विशेष तरह का कीटनाशक ही अनुमोदित किया जाता है, तो सिर्फ वही कीटनाशक उस फसल के लिए लगाया जाए, कुछ और अपनी मर्जी से कोई मिश्रण बनाकर या कोई नया कीटनाशक अपनी फसल पे ना लगाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने तमाम बातें बताई जो हमारे किसान गलतियां करते हैं, उस वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी तो है कि जो कीटनाशक होते हैं या रसायन होते हैं या जिनके भी दवाइयों के छिड़काव होते हैं, उनके काफी दीर्घकालिक परिणाम भी मिलते हैं जो कि अक्सर दुष्प्रभावों में ही उनका परिणति होती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें?
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आजकल के जो परिप्रेक्ष्य है उसमें तो इसकी और भी ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि ये आवश्यक है कि अपनी फसल को बचाने के लिए कीटनाशक का जो है वो छिड़काव करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की बात है।
1: जी
0: लेकिन उसके, जब हम इस तरह के कीटनाशकों को बहुत लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो असली जो समस्या है वो ये है कि

0: गलत तरीके से
1: जी
0: हम जब अपने आप को उन कीटनाशकों के साथ एक्सपोज कर लेते हैं, चाहे वो हमारी त्वचा के माध्यम से या हमारे मुंह के रास्ते से या आंखों के रास्ते से, किसी भी तरह से या सांस लेने से, वो कीटनाशक उसकी मात्रा, थोड़ी थोड़ी मात्रा हर बार, हर छिड़काव के समय या मिश्रण बनाते समय वो मात्रा धीरे धीरे हमारे शरीर में जाती है, तो उससे वो एक तरह की टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे शरीर में वो हो जाती है उसकी एक निश्चित मात्रा होने पर, उसको हम क्रॉनिक टॉक्सिसिटी कहते हैं। और इस तरह की ये जो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है, ये बहुत ही इसकी जो परिणति, जैसे आपने कहा कि बहुत ही बुरी है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो हमको बहुत ही खतरनाक बीमारियों के रूप में नज़र आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई दीर्घकालिक प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि कैसे बचा जाए इन दीर्घकालिक कीटनाशकों के प्रयोग से। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि कम प्रयोग किया जाए कीटनाशकों का और प्रकृति से, हमारे शरीर से, जो पूरा तंत्र है इससे कम छेड़छाड़ हो?
0: जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी तरीके हैं जिनसे हमारे किसान भाई जो इनसे बच सकते हैं। देखिए, जैसा हमने कहा कि जब हम अपनी फसल में, पौधों पर जो है वो किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो बहुत सारे कीड़े हैं वो तो मारे जाते हैं जो हमारी फसल को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो है वो बहुत सारे मित्र कीट, लाभदायक कीट, और भी चाहे वो पशु पक्षी हैं या कोई जानवर, छोटे जानवर हैं, वो भी कीटनाशकों की कुछ मात्रा उनके शरीर में कहीं ना कहीं से खाद्य श्रृंखला के माध्यम से चली जाती है। तो मतलब जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी से। एक तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। दूसरे, हमारे जितने भी पेयजल के स्रोत हैं या भूमि है या वायु है, वो सभी प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि वो कीटनाशी जो है वो किसी ना किसी माध्यम से जो है वो हमारे इन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें ये जाकर के मिल जा रहे हैं, तो हमारे वातावरण पर तो इसका प्रतिकूल प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ रहा है।
1: तो क्या इसका कोई निदान नहीं है कि ये वातावरण पर उल्टा असर ना डालें, इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाए?
0: जी बिल्कुल, हम उस पर आने वाले हैं। एक बात और है जो मैं किसानों से साझा करना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, जब भी किसान भाई, जैसे हमने कहा कि वो मित्र कीट भी मारे जाते हैं, उसके साथ साथ होता क्या है कि जब वो मित्र कीट मारे जाते हैं, तो कुछ समय के बाद जो किसान भाइयों ने कीटनाशी का स्प्रे किया है, वो उसकी भी हमारी भूमि से या वातावरण से उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में जो जिस कीड़े को वो कंट्रोल कर रहे थे, जिसका वो प्रयास कर रहे थे कंट्रोल करने का, उसकी जनसंख्या फिर से बढ़ जाती है। तो उसकी जब जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसका जो अटैक है, जो आक्रमण है, वो बहुत बुरी तरह से हमारी फसल पे होता है, और वो फिर कंट्रोल से बाहर परिस्थिति हो जाती है। तो ये इस तरह की समस्याएं भी कीटनाशकों के गलत तरीके से प्रयोग में आ जाती है। दूसरी, हमारे जो कीड़े हैं, कई बार उनमें प्रतिरोध क्षमता उनकी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं। जैसे आप देखिए, जो मच्छर है, किसी वक्त DDT का जो प्रयोग है वो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता था बहुत ज़्यादा स्तर पर, लेकिन धीरे धीरे मच्छरों ने उसके प्रति जो है वो प्रतिरोध क्षमता विकसित कर ली, और इसलिए अब जो है वो उससे उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन वो जो DDT है, वो हमारे जैविक जो श्रृंखला है या हमारे जो शरीर हैं उनमें उसकी कहीं ना कहीं मात्रा चलेगी, जिसकी वजह से फिर से हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में तो जाहिर सी बात है हमारे किसान को जागरूक होना होगा, और सबसे पहले उसे मित्र कीटों को पहचानना होगा।
0: जी बिल्कुल,
1: ताकि वो उन कीड़ों का संरक्षण करे और अपनी खेती जो है बचाए।
0: जी हाँ।
1: और उन पर जो है इन कीटनाशकों का प्रयोग ना करे, ताकि उससे आने वाले समय में काफी मदद मिले।
0: जी बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर रितेश कुमार गुप्ता जी, अंत में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान हैं, ऐसा क्या करें, ऐसी किन बातों का ख्याल रखें जिससे कीटनाशकों के बुरे असर को कम किया जा सके, क्योंकि हम बच तो नहीं सकते। ये सत्य है कि खेती बाड़ी, कृषि, बागवानी सब कामों में कीटनाशक, फफूंदनाशक इत्यादि रसायनों का इस्तेमाल होता रहेगा, और इसका अभी कोई जल्दी ही विकल्प भी सामने नहीं है। लेकिन आप कौन सी ऐसी टिप्स देना चाहेंगे, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें बताना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को, जिससे वो इसके दुष्प्रभाव से बच सकें?
0: जी देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं, वो छिड़काव तो करते रहेंगे, होता भी रहेगा फसलों को बचाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका वो अगर ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पर इनके दुष्प्रभावों को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों को कीटों की पहचान करनी होगी, या अगर आपकी फसल में किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो उनको ये समझना होगा कि वो जो समस्या है, वो जो सिम्टम्स हैं फसल के ऊपर आ रहे हैं, वो क्या किसी कीड़े की वजह से हैं, या किसी बीमारी की वजह से हैं, या किसी पोषण

0: तत्व की कमी से तो नहीं है।
1: जी
0: जब वो ये जान लेंगे तो उसके बाद बात आती है रसायन के चुनाव की, वो जो छिड़काव के लिए रसायन है वो कौन सा रसायन उसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो
1: जी
0: सबसे पहला तो यही महत्वपूर्ण बात है जो जिसका उनको ध्यान रखना है। दूसरी बात है डोज की, उसकी जो मात्रा है, जो रिकमेंडेड डोज है, अनुमोदित मात्रा है, वो उसमें ही हमेशा स्प्रे करें। साथ ही उस स्प्रे को कब उनको करना है, दोपहर में जब तेज धूप हो, जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो स्प्रे ना किया जाए, सुबह और शाम के समय वो स्प्रे किया जाए। और साथ ही उसका जो स्प्रे करने का जो तरीका है उसकी भी उनको जानकारी होनी चाहिए, किस तरह का स्प्रे पंप वो यूज करें, उसमें किस तरह की नोजल लगाई जाए जिससे निश्चित क्वांटिटी जो है वो स्प्रे फ्लूड की जो है उनकी फसल के ऊपर जाए।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दोपहर को स्प्रे नहीं करनी चाहिए, हवा चल रही है उस समय तो जाहिर सी बात है कि दवाई इधर उधर जाएगी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बजाय, लेकिन क्या कारण है? हमारे किसान जानना चाहते होंगे कि क्या कारण है दोपहर के समय स्प्रे नहीं करनी चाहिए।
0: जी देखिए, दोपहर के समय एक तो बहुत तेज धूप रहती है, हमारी जो भी कीटनाशी होते हैं उनका हम डायरेक्ट स्प्रे नहीं करते हैं अपनी फसल के ऊपर, उनको पानी में मिला करके ज़्यादातर हम लोग जो है वो स्प्रे करते हैं।
1: जी
0: तो जब पानी में उनका हम घोल तैयार करते हैं तो उसकी जब हम स्प्रे करते हैं, तो अगर धूप बहुत तेज़ होगी, दिन में वो स्प्रे किया जाएगा, तो उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाष्पीकरण होकर के एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो उसका फसल के ऊपर जो है वो कम टिकाव होगा, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर कीट को या बीमारी अच्छी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए हम किसानों को कहते हैं कि सुबह और शाम जब हवा भी बिल्कुल शांत हो और सूर्य की जो किरणें हैं उनमें ज़्यादा गर्मी ना हो, उस वक्त जो है वो स्प्रे करें।
1: जी
0: इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं किसानों के लिए वो ये हैं कि जब भी वो कीटनाशी का घोल तैयार करें या उसको स्प्रे करने वाले हों, तो ग्लव्स का, अपने हाथों में ग्लव्स पहन के, और नाक को, जिस सभी मास्क लगाते हैं तो वो भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस तरह से अपने दस्ताने पहन के रखें, अपने पाँव को जूतों से ढकें और पूरी शरीर को पूरी तरह कपड़ों से ढककर रखें, तभी स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद उन कपड़ों को बदल लें। साथ ही जो पंप की जो नोजल्स हैं वो कहीं चोक हो गई हैं, बंद हो गई हैं किसी कारणवश, तो अमूमन किसान भाई उसको बिना सोचे समझे मुंह से खींच के खोलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी ना करें। और आजकल मार्केट में बहुत सारी जैविक कीटनाशी आ गए हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। और हमने बात की वेटिंग पीरियड का, कि फसल को कीटनाशी का स्प्रे करने के बाद जो है वो कुछ समय तक उसको छोड़ा जाए, एकदम बाजार में लेकर ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और कभी भी जब वो खेत में हों, स्प्रे कर रहे हों, तो कुछ भी खाएं पिए नहीं, और अपने आसपास बच्चों को या जानवरों को जो है वो ना रखें।
1: तो डॉक्टर रितेश कुमार गुप्ता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण होने वाली समस्याओं पर आपने विस्तार से चर्चा की। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था कीटनाशकों के प्रयोग में होने वाली समस्याएं। डॉक्टर रितेश कुमार से बातचीत कर रही थी सुरेखा। हम आशा करते हैं कि आप इस जानकारी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो अब कार्यक्रम में पुनः समय हो चला है मनोरंजन का। आइए सुनते हैं लेखराम पाल की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने लेखराम पाल की आवाज में प्यारा सा लोकगीत। अब आपको चलते चलते दे देते हैं जानकारी कल के आकर्षण की।
1: कल के आकर्षण में काम की बातों में हम बात करेंगे गुलाब की व्यावसायिक खेती के बारे में, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से और सुनवाएंगे एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी। तो शैलजा जी, घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी अपने किसान बहनों भाइयों से अनुमति चाहेंगे।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप ट्यून इन है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 होने को है,

0: कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विकसित भारत 2047 मिशन को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास जरूरी। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। मीडिया या सोशल मीडिया में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को, वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता, तकनीक आधारित कृषि परिवर्तन, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा, युवाओं में उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति का विकास करने और विश्वविद्यालय उद्योग साझेदारी को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। राज्यपाल आज डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि समर्पित नेतृत्व, प्रतिबद्ध संकाय और विद्यार्थियों के सहयोग से विश्वविद्यालय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आई भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माण व विध्वंस मलबे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता, श्रेष्ठ प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत व पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय और सामूहिक मिशन है और इस लक्ष्य को

0: हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास भी जरूरी है। पठानिया ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन दो को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत मिशन की नींव स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रखी गई थी, जिसकी आज कल्पना की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सभी को संगठित होना होगा और इसमें कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पठानिया ने यह भी कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा और बेरोजगारी को खत्म करने के प्रयास करने होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उनका निरीक्षण भी किया। अग्निहोत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ हैं और उनके कल्याण, सुरक्षा व सम्मान के लिए किया गया प्रयास सार्थक पहल है। रोहित ठाकुर आज शिमला में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की निशुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसी के शुभारम्भ व वितरण के मौके पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार 60 साल से अधिक की उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन शहर के माल रोड पर आयोजित महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक हिमाचली परिधानों में 320 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल शर्मा ने कहा कि इस महानाटी का थीम माँ यानी मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन था। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस मौके पर महिलाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई।
1: है महानाटी है, ये एक विशेष थीम के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और हमारा थीम है माँ, माँ मदर्स अगेंस्ट अब्यूज। तो जैसे कि हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ हिंसा भी, असमानता भी, अन्याय भी हमें समाज में देखने को मिलता है। तो आज हम सब महिलाओं ने यहाँ पे ये संकल्प लिया।
0: ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन आज जहां गेटी थिएटर में पहाड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहीं फ्लावर शो और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या के मौके पर पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी अपने गानों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति की आज शिमला में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। विधायक व अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब मीडिया या सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगी।
2: एक तो सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी अनुशासन के मामले में जो है अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा सख्त होने वाली है। कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़ा व्यक्ति मीडिया में नहीं जाए, ना ही सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी करेगा जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। वो सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है कि नीरज भारती जी को संगठन से, पार्टी से 6 वर्ष के लिए जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए।
0: प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायतों की पहली बैठक में प्रधानों द्वारा हाल ही में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य सचिव केके पंत ने सभी जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आगामी मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण आपदा और

0: से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने को कहा है। मुख्य सचिव आज शिमला में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों के बीच बेहतर समन्वय, चेतावनी प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला ज़िला के दत्तनगर क्षेत्र में बीएमसी केंद्रों से आज से दूध की खरीद बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों की आजीविका पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है।
1: कल सरकार से आदेश आया है, जो सरकार का सुखी सरकार का एक तुगलकी फरमान जो आया है, जारी हुआ है कि मंगलवार को दत्तनगर के जितने भी बीएमसी है उसके अंतर्गत जो दूध नहीं खरीदा जाएगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आप एक तरफ से महिला किसानों को और दूध उत्पादक किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी आय को दुगुना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से दो दो महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
0: प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक भाजपा के दो पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई है। अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। चंबा के एसडीएम प्रियांशु खाती ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स चमियाना को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहां हर रोज ओपीडी की संख्या 1000 से ऊपर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और सिटी स्कैन व एक्सरे सुविधा शुरू कर दी गई है और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विकसित भारत 2047 मिशन को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास जरूरी। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। मीडिया या सोशल मीडिया में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को, वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं देशगान।

देशगान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिमला से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।

0: रात्रि के 8 बजने को है। आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम। विषय है केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। प्रतिभागी हैं प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल, प्राध्यापक व पूर्व कुलपति डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन। इनसे भेंट कर रही हैं समाचार वाचक प्रभा शर्मा। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख रितेश कपूर ने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है।
1: श्रोताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ देश में कई आयाम स्थापित किए हैं। श्रोताओं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां करोड़ों लोगों की आजीविका खेती और इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर करती है। पिछले एक दशक से अधिक समय में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक योजनाएं और पहलें शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि अवसंरचना कोष, डिजिटल कृषि मिशन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी कई पहलों ने कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास किया है। इन योजनाओं का किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं और भविष्य की क्या चुनौतियां हैं, इन्हीं पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारी भेंट वार्ता का विषय है केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस विषय पर बातचीत के लिए आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी। प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, वर्तमान में आप प्राध्यापक हैं। प्राकृतिक खेती मिशन को सबसे पहले हिमाचल में प्रारंभ करने और सफलतापूर्वक इसका संचालन करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रोफेसर चंदेल जी, आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बड़े आवश्यक विषय पर आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया।
1: प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में कृषि के विकास के लिए एनडीए सरकार की क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं।
2: जैसा आपने कहा कि 12 वर्षों में एनडीए सरकार की किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या भूमिका रही है, तो मैं कहूंगा कि पिछले 12 वर्षों में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। एक सिर्फ विकास नहीं हुआ, पूरा जो किसान को देखने का अवलोकन सरकार का रहा। कोई वक्त था जब पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम बात करते थे कि उत्पादकता और उत्पादन कैसे बढ़े। धीरे धीरे ये प्रायोरिटीज, चाहे विश्वविद्यालय थे चाहे ICAR इंस्टीट्यूशंस थे, ये प्राथमिकता रही है। परंतु इस एनडीए सरकार की दूरदृष्टि से जब ये ध्यान में आया कि केवल उत्पादकता और उत्पादन बढ़ने से किसान की आय नहीं बढ़ेगी, किसान की समृद्धि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भूमि का ह्रास हो रहा था, जैव विविधता बहुत न्यूनतम स्तर पर जाती जा रही थी, आपका पॉलिनेटर्स खत्म हो रहा था, आपका उगाने वाले पर और खाने वाले पर, दोनों पर जो हम रसायन प्रयोग करते हैं खेती पे, उसके दुष्प्रभाव वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा विषय आज किसान के बीच आया, वो आया किसान की खेती की लागत बढ़ती जा रही है और उत्पादन या स्थिर हो रहा है या कम हो रहा है, ये विषय रहे। तो पिछले 12 वर्षों में विशेषकर दो रूप में, दो टायर सिस्टम में जो एनडीए सरकार ने किसानों के आजीविका बढ़ाने, किसानों का सर्वांगीण विकास, जैसा मैंने शब्द का प्रयोग किया, इसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन दो स्कीमों के माध्यम से काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं किसानों के लिए दी जिनसे उनकी आजीविका सुधरे, उनकी आय बढ़े और उनको लाभ मिले। ऐसी दो स्कीमों का नाम मैंने स्पेशल क्यों लिया कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो केंद्र प्लान करता है, केंद्र योजना बनाता है, केंद्र इंप्लीमेंट करता है और उसको अलग अलग श्रेणी के राज्यों के हिसाब से, जैसे जो आम राज्य हैं, अच्छे राज्य हैं, उनको 60-40 की रेशो से 60% केंद्र देगा और 40%

0: प्रतिशत प्रदेश उसकी सहभागिता करेगा और इन स्कीमों का इम्प्लीमेंटेशन होगा
1: जी।
0: और इसके साथ जो दूसरा स्कीमें दी वो दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें 100% जो बजट है वो केंद्र सरकार का होगा
1: जी,
0: प्रदेश सरकार इम्प्लीमेंट करेंगी परंतु पूरा धन का प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार से होगा
1: जी।
0: जो पहले वाली स्कीमें थी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उसमें 60-40 या जैसे जो विशेष राज्य है जैसे हिमाचल आप मान सकते हैं
1: जी,
0: पहाड़ी हिमालयन क्षेत्र के राज्य है या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको 90% केंद्र सरकार देता है, 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो
1: राज्य सरकार का।
0: जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो थी
1: जी,
0: जिसमें जो 100% जो पैसा है वो केंद्र सरकार का है, इम्प्लीमेंटेशन राज्यों के माध्यम से भी होगी
1: जी,
0: परंतु जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पीएम किसान निधि है
1: जी,
0: देश में पहली बार किसान के अकाउंट में खाता में सीधा पैसा जाए
1: जी,
0: ये जो पीएम किसान है ये स्कीम 6,000 रुपया किसान को मिलेगा
1: जी,
0: ये 3 किस्तों में 2,000 की किस्त में 3 किस्तों में किसान को पैसा मिल रहा है जो एलिजिबल किसान, तो ये बहुत बड़ा एक सीधा जो

0: सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पीएम किसान निधि है।
1: जी
0: देश में पहली बार किसान के अकाउंट में, खाता में सीधा पैसा जाए,
1: जी
0: ये जो पीएम किसान है ये स्कीम 6,000 रुपया किसान को मिलेगा।
1: जी
0: ये 3 किश्तों में, 2-2 हजार की किस्त में 3 किश्तों में किसान को पैसा मिल रहा है, जो एलिजिबल किसान। तो ये बहुत बड़ा एक सीधा जो किसान को लाभ मिला, ताकि उसका जो न्यूनतम आवश्यकता है।
1: जी
0: और मैं तो ये कहूंगा कि इस स्कीम ने जो छोटा और सीमांत किसान, क्योंकि भारतवर्ष में 70% के आसपास छोटा और सीमांत किसान है,
1: जी
0: तो उनको जो न्यूनतम आवश्यकता है वो कम
1: जी
0: से कम इस पैसे से पूरी होंगी।
1: जी
0: दूसरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपने वैल्यू एडिशन के लिए, स्टोरेज के लिए, अपने प्रोडक्ट को ले जाने के लिए ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना,
1: जी
0: इसमें किसानों को जो सुविधा डेब्ट के माध्यम से दी है, डेट है परंतु अगर टाइम से पूरा होता है तो 3% इंटरेस्ट जो लगेगा उससे सबवर्शन जो है
1: जी
0: वो केंद्र सरकार देगी। ये बहुत बड़ा लाभ है किसानों को दिया गया है।
1: जी
0: और इसका जो मुख्य लाभ है वो इंडिविजुअल किसान को या किसानों के समूह को,
1: जी
0: वो मुख्य रूप से इसका लाभ ले रहे हैं। कोई
1: जी
0: भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो सीधा पैसा केंद्र सरकार से मिलेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जो KMY है,
1: जी
0: जो प्रधानमंत्री मानधन योजना है, इस मानधन योजना में ये भी एक जैसे पीएम किसान निधि है,
1: जी
0: इसमें भी किसानों को बड़े छोटे से कंट्रीब्यूशन से, ये
1: जी
0: वॉलंटरली है,
1: जी
0: सबको आवश्यक नहीं है, परंतु तो छोटा सा अमाउंट वो कुछ निर्धारित समय पर डालेगा और 60 वर्ष जब किसान की आयु होगी तो न्यूनतम 3,000, उसके बाद उसको पेंशन लगेगी।
1: जी
0: एक किसान के लिए एक बहुत बड़ा लाभकारी एक
1: जी
0: निर्णय इस एनडीए सरकार ने किया है।
1: प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो मैं जानना चाहूंगी हिमाचल के संदर्भ में कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को इस योजना के लाभ का किस तरह से आप आकलन करते हैं।
0: सब योजनाओं का अगर आकलन करें
1: जी
0: तो आज हिमाचल प्रदेश के आम जन के,
1: जी
0: जिसमें मानते हैं कि लगभग 70% से ऊपर का आम व्यक्ति खेती से जुड़ा है, उसकी जो एनुअल इनकम है
1: जी
0: वो 2,40,000 के आसपास पर एनम पहुंच चुकी है। तो अच्छे राज्यों में
1: जी
0: हिमाचल प्रदेश को गिना जाता है।
1: यानी
0: तो ये
1: किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है।
0: बढ़ोतरी हुई
1: जी
0: है और ये दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के किसानों में हुई है। तो सीधा सीधा जब 6,000 सीधा किसान के खाते में आ रहा है, जिसमें न
1: जी
0: उसका खर्च है, ना उसका इंटरेस्ट है, ना उसको कोई और कहीं पे पैसा खर्च करना है, वो सीधा अकाउंट में आता है।
1: जी
0: तो आप मान के चलिए कि 6,000 की आमदन तो यही सीधी हो गई,
1: जी
0: बाकी जो परियोजना है वो अलग लाभ उसको दे रही है।
1: एक और योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: जी
1: इस योजना ने किसानों को जोखिम से बचाने में कितनी मदद की है? क्या हिमाचल प्रदेश में भी किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं?
0: देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इतनी लाभकारी सिद्ध हुई है
1: जी
0: हिमाचल प्रदेश का छोटा किसान, और
1: जी
0: यहाँ लगभग 82% जो है वो छोटा और सीमांत किसान है, यानी
1: जी
0: जिसकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है।
1: जी
0: और आप देख रहे हैं मौसम का बदलाव हो रहा है, मौसम के बदलाव के साथ साथ जब हम कैश क्रॉप पे जाते हैं तो ऐसी अनचाही, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेसेस,
1: जी
0: अनचाहे जो हमारे नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क हैं,
1: जी
0: आपने 2023 में देखा,
1: हाँ जी
0: 2025 में देखा, ऐसे अनप्रिवेंटेबल रिस्क हमारे पास आए जो किसी के बस में नहीं थे।
1: जी
0: किसान का खेत चला गया, किसान की फसल चली गई,
1: काफी ज्यादा नुकसान
0: बहुत
1: किसानों
0: ज्यादा
1: को हुआ
0: नुकसान हुआ है।
1: प्राकृतिक आपदा से।
0: तो
1: जी
0: अभी अफोर्डेबल पैसे पे,
1: जी
0: बहुत थोड़े अमाउंट से, अगर हम अपने फसल की, अपने बगीचों की अगर
1: जी
0: बीमा करवाते हैं तो
1: जी
0: हमें कम से कम उसका न्यूनतम दाम जो है वो मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक सहायता इस फसल बीमा योजना से किसान का ही होगा।
1: इसी से जुड़ा एक और सवाल है प्रोफेसर साहब, किसान क्रेडिट कार्ड और सस्ती कृषि ऋण सुविधाओं का किसानों को क्या क्या लाभ मिला है?
0: ये भी एक प्राथमिक जो प्रायोरिटी परियोजना है, और मैं जब प्रदेश सरकार में था प्राकृतिक खेती के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करता था, तो
1: जी
0: सबसे पहला जो प्रश्न आता था कि कितना सेचुरेशन लेवल हुआ इस योजना के अंतर्गत
1: जी
0: किसान क्रेडिट कार्ड में, यानी कितना मैक्सिमम किसान इसका लाभ, तो
1: जी
0: 4 लाख तक तो छोटा किसान इसका लाभ ले रहा है
1: जी
0: और उसमें भी 4% इंटरेस्ट पर है, और वो इंटरेस्ट भी अगर टाइमली देता है तो 1% की सबवेंशन उसको मिलती है।
1: जी
0: तो ये तो किसानों की सबसे पसंदीदा स्कीम बनी।
1: जी प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि समय के साथ साथ अब कृषि क्षेत्र में भी तकनीक का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डिजिटल तकनीक और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका रही है, और ड्रोन, सैटेलाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी नई तकनीकों ने खेती को कैसे बदला है, और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का डिजिटाइजेशन किस प्रकार हो सकता है?
0: एक ये प्रश्न गंभीर प्रश्न है, लेकिन नमो ड्रोन दीदी
1: जी
0: एक ऐसी स्कीम आई जिसमें आपने नाम सुना होगा लखपति दीदी
1: जी
0: और नमो ड्रोन दीदी
1: जी बिल्कुल।

0: यानी क्लस्टर स्तर पर महिलाओं के समूह स्तर पर, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है,
1: जी
0: चाहे वो महिला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, किसी
1: जी
0: भी रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें ड्रोन सरकार उपलब्ध करवाती है। उसमें ड्रोन्स में दीदियों को ट्रेन करना,
1: जी
0: और ट्रेन करके कैसे कैसे, क्योंकि लेबर की समस्याएं बढ़ रही हैं,
1: जी
0: एवरेज फैमिली साइज छोटा हो रहा है, और बच्चे छोटे छोटे रोजगार की तलाश में घरों से, गांव से, शहर की ओर निकल रहे हैं।
1: जी
0: तो आज की डेट में यदि बच्चा वापिस आके अपने घर में एक आधुनिक खेती करना चाहता है,
1: जी
0: तो पहाड़ की स्थिति है कि यहाँ लेबर मिलना मुश्किल है, और ये
1: जी
0: पहाड़ की नहीं, ये देश की समस्या बनती जा रही है। तो डिजिटाइजेशन पे जाना आवश्यक है।
1: जी
0: तो कैसे हम इन दीदियों को ट्रेन करें,
1: जी
0: और उसके बाद ये पेड बेसिस पर अपने सराउंडिंग्स के फार्मर्स को, जो फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन हम करते हैं,
1: जी
0: जिसमें लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे करना है, वो
1: जी
0: सुविधा आसपास के किसानों को देगी, वो पेड स्कीम होगी। तो
1: जी
0: इससे दो लाभ है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है,
1: जी
0: दूसरा इसके साथ आप देखेंगे कि किसान आधुनिक तकनीक की ओर भी प्रेरित हो रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ आप मौसम का देखेंगे, तो
1: जी
0: मौसम के आधार पर विश्वविद्यालय
1: जी
0: प्रेडिक्शंस देते हैं, कितना ह्यूमिडिटी होने वाली है, कितना टेम्परेचर होने वाला है, अगले 15 दिनों में
1: जी
0: क्या स्थितियां बनने वाली हैं, जो किस कीट के लिए, किस बीमारी के लिए सुविधाजनक है,
1: जी
0: किसको कम करेंगी, तो उस
1: जी
0: हिसाब से किसान अपनी तैयारी करता है।
1: यानी कि ड्रोन दीदी,
0: जी,
1: इससे हिमाचल में भी किसानों को लाभ
0: इससे
1: मिल
0: इससे
1: रहा है।
0: लाभ मिलेगा, और किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि
1: जी
0: डिजिटाइजेशन की ओर जाना अति आवश्यक है।
1: हाँ
0: लेबर को रिप्लेस
1: जी
0: करना है,
1: जी
0: डिजिटाइज्ड माध्यम से ही हमें रिप्लेस करना पड़ेगा।
1: जी प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, पिछले 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस दिशा में अनेक कदम उठा रही है। आपका क्या मानना है कि प्राकृतिक और जैविक खेती से किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं? और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्राकृतिक और जैविक खेती में अंतर क्या है?
0: 80 के दशक के बाद देश में, जब US बॉट सिस्टम हमने एजुकेशन का लिया एग्रीकल्चर में,
1: जी
0: और उसके जब नुकसान लगे आने, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है, तो एक जैविक विधि देश में कुछ NGOs के माध्यम से आई। परंतु
1: जी
0: तो धीरे धीरे आप सबके ध्यान में होगा कि जैविक खेती में जो खर्चा था वो बढ़ता गया, क्योंकि जितनी भी इनपुट थी, चाहे वो जैविक थी,
1: जी
0: वो भी इंडस्ट्री से लगी आने। और एक स्लोगन जो जैविक खेती करवाने के लिए प्रेरित करता था, उसने कहा कि जैविक उगाइए, आपको
1: जी
0: प्रीमियम प्राइस मिलेगा। परंतु आज तक ना हम वो प्रीमियम प्राइस दिला सके,
1: जी
0: ना हम प्रीमियम को डिसाइड कर पाए, ना स्थान बता पाए कि कौन से स्थान है जहां प्रीमियम प्राइस मिले।
1: जी
0: दूसरा विषय आता है कि भारत जैसे देश में, जहां आज भी हिमाचल की मैं बात करता हूं कि अभी भी लगभग 22.5% जो महिलाएं हैं
1: जी
0: वो माल न्यूट्रिशन है, बच्चे
1: जी
0: 5 साल की ग्रोथ जिनकी हुई है, 28% बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है, वो
1: जी
0: माल न्यूट्रिशन है। तो हमें जब तक डाइवर्स फूड नहीं मिलेगा,
1: जी
0: अच्छा फूड, न्यूट्रिशनल रिच फूड नहीं मिलेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात, जब जैविक खेती की हम करते हैं, तो जैविक खेती मॉल्स में अवेलेबल है उसका प्रोडक्ट,
1: जी
0: तो अगर अवेलेबल है तो क्या वो अफोर्डेबल है? अगर वो महंगा है तो क्या आम जन के लिए, जिसकी मैं डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल तो नहीं है।
1: नहीं है,
0: तो क्या अच्छा भोजन खाना केवल शहर के कुछ अमीरों के लिए ही बना है?
1: बाकी उससे वंचित रह रहे हैं।
0: तो इसलिए मैं दो बातों आपसे करूंगा, ये जो डिफरेंस है, ये प्राकृतिक खेती को जैविक खेती से अलग करता है। जैविक खेती आम किसान का ये खेती विधि नहीं बन पाई। छोटा किसान आज हिमाचल से ही पिछले 20 सालों में लगभग 25% के आसपास किसान खेती छोड़ चुका है, वो छोटे छोटे जॉब की तलाश में बाहर जा रहा है। और आज प्राकृतिक खेती में 2 लाख से ऊपर का किसान इसमें बदल चुका है, तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। तो पहला फर्क यह है कि जो भी आदान इनपुट जो खेती के लिए प्रयोग करता है, अगर वो बाहर से आती है तो ऑर्गेनिक है। अगर किसान खेत या खेत के आसपास में सामग्री जो है
1: जी
0: उससे बनाता है, तो वो प्राकृतिक खेती।
1: प्राकृतिक खेती
0: तो पहला काम इससे क्या निकला कि उसका जो खर्चा है वो मिनिमम हुआ।
1: जी
0: सेब में 1 बीघा में या 1 एकड़ में आप मानिए,
1: जी
0: लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा एग्रोकेमिकल का है। सब्जियों में ये 40,000 तक जाता है।
1: जी
0: व्हीट राइस पर ये लगभग 2,000-3,000 तक जाता है।
1: जी
0: तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे एग्जाम्पल आ गए जहां सेब में 1 एकड़ में 10,000 का भी इनपुट खर्चा नहीं आया है।
1: जी
0: तो जब इनपुट खर्चा कम आएगा तो किसान ज्यादा कीमत नहीं मांगेगा, क्योंकि उसका जो
1: लागत है वो कम
0: कम
1: हो
0: हुई
1: जाएगी।
0: वो उसके प्रॉफिट में जुड़ गई।
1: जी
0: तो अब मैं आता हूं कि स्कीम कैसे बनी।
1: जी
0: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2018 में
1: जी
0: प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, ऐसी देश में पहली स्कीम
1: जी
0: जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये शुरू की। और इसका लक्ष्य था किसान को कैसे केमिकल फ्री खेती करवाना, जैव विविधता बढ़ाना,
1: जी

0: जैव विविधता बढ़ाते बढ़ाते उसकी आय कैसे बढ़े
1: जी।
0: तो आज 2 लाख किसान हिमाचल प्रदेश में जुड़ा है जो प्राकृतिक खेती में बदल गया है।
1: जी।
0: और अभी आप सुन रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी हल्दी, गेहूं, बाजरा, मक्की, इन चीजों पे जो MSP है वो प्राकृतिक खेती के प्रोड्यूस को देना शुरू कर दी है।
1: जी।
0: तो ये पहली सफलता प्राकृतिक खेती की आई है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। जो हमारी केमिकल बेस्ड खेती थी
1: जी,
0: वो थी केमिस्ट्री बेस्ड, केमिकल अप्लाई करो और
1: फसल उत्पादन बढ़ाओ।
0: भारत की कृषि परंपरा रही है, ये बायोलॉजी बेस्ड है।
1: जी।
0: हमने धरती को माँ कहा है।
1: जी।
0: तो धरती को माँ हमने ऐसा नहीं कहा, ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, ये हजारों सैकड़ों वर्षों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहा।
1: जी।
0: माताश भूमि हमने कहा है।
1: जी।
0: माता भूमि इसलिए कि इसमें करोड़ों करोड़ों जीवाणु हैं।
1: जी।
0: जीवाणु सांस लेते हैं और भोजन सारा जमीन में उपलब्ध है। वो जीवाणु उस भोजन को अवेलेबल अवस्था में बदलते हैं और फसलें अपना भोजन लेती हैं। तो इस तरह से 2022-23 में जब हमने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन हिमाचल प्रदेश की करवाई
1: जी,
0: ये मैनेज एक भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का एक इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में,
1: जी,
0: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, उसने जब इवैल्यूएशन की थी
1: जी,
0: तो उसने कहा था कि 22 में, आज 26 में पहुंच गए हैं, 23 में किया था, उसने कहा था 24 किलोग्राम पर बीघा खाद कम प्रयोग हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक खेती किसान कर रहा है।
1: जी।
0: उसने ये कहा था कि एक किसान अब 12-12 फसलें भी एक साथ उगा रहा है, यानी जैव विविधता बढ़ा रहा है।
1: जी।
0: तो जब 12 फसलें साथ आ रही है तो हम इसका मतलब गेहूं मक्की नहीं खा रहे हैं, 4 सब्जियां नहीं खा रहे हैं। जैव विविधता बढ़ी तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी थी
1: जी,
0: वो भी बढ़ना शुरू हुई। फिर प्रधानमंत्री जी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मिशन है
1: जी,
0: वन हेल्थ, एक जो मिशन स्टार्ट किया था उन्होंने
1: जी,
0: कि वन हेल्थ पे कैसे काम करें। वन हेल्थ मतलब जमीन की स्वास्थ्य, एनिमल का, पशु का स्वास्थ्य, वातावरण का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य।
1: जी।
0: तो प्राकृतिक खेती इस मिशन को भी अलाइन कर रही है, क्योंकि जब जमीन में जहर नहीं जा रहा है, टॉक्सिक केमिकल नहीं जा रहे हैं, तो जीवाणु बच रहा है, जीवाणु नंबर्स में बढ़ रहा है, केंचुआ काम कर रहा है। केंचुआ काम कर रहा है तो जो वर्षा हो रही है वो टनल बनाता है जमीन में, तो वर्षा हो रही है तो जमीन उस पानी को सोख रही है, तो आपका जो बाढ़ आना है वो भी कम हो रहा है।
1: जी।
0: फिर घास स्वस्थ होगा तो पशु स्वस्थ होगा, पशु स्वस्थ होगा तो दूध स्वस्थ होगा। कितनी एमिशन नाइट्रस ऑक्साइड,
1: जी,
0: अमोनिया, ये सारी गैसेस जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो वातावरण में जा रही हैं।
1: जी।
0: हम उसको रोक रहे हैं। हम दाल मेन फसल के साथ लगा रहे हैं तो जो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता था, हम दाल से, क्योंकि दालें जो हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचती हैं और जमीन में डालती हैं।
1: जी।
0: हम उस यूरिया के कारण नाइट्रस ऑक्साइड जो जमीन में जा रहा है, पानी में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है और वातावरण में जा रहा है, उसको बंद कर रहे हैं। हम कार्बन को जमीन में, हम जैविक खेती में 10 टन गोबर की खाद को जमीन में डालने की अनुमोदन करते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वोलेटाइल है वो कार्बन, वातावरण में चला गया।
1: जी।
0: एक साइंटिफिक पहलू है कि 10 भाग कार्बन होगी और 1 नाइट्रोजन होगी तो कार्बन जमीन में फिक्स हो जाएगी। तो हम दाल जमीन में लगा रहे हैं तो जितनी जमीन में कार्बन डाल रहे हैं वो सारी फिक्स हो जा रही है, यानी वातावरण में जाने दे रहे हैं।
1: जी।
0: तो ये फर्क है। और लास्ट फर्क मैं जो बताता हूँ, देश भर का जो हमने सर्वे किया
1: जी,
0: 100 रुपए की अगर चीज बिकती है तो किसान को 19 से 31 रुपए वापस मिलता है।
1: जी।
0: वो जो मिडलमैन, आड़ती, वो जो सब बातें हैं। इस वर्ष हमने कुछ IIT के बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट 27 टन प्राकृतिक खेती से उगे सेब के साथ किया
1: जी,
0: और 72 रुपए तक, 100 रुपए का बिका तो 72 रुपए तक किसान को वापिस दिलाया।
1: जी।
0: ये प्राकृतिक खेती के लाभ। और हिमाचल प्रदेश की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने 2024 नवंबर में 2,4,881 करोड़ की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दिया है, इस टारगेट के साथ
1: जी,
0: के 2030 तक 1 करोड़ किसान को जोड़ेंगे और 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को बदलेंगे
1: प्राकृतिक खेती। जी, ये केंद्र सरकार की बहुत
0: अच्छी फ्लैगशिप प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का ये अपना प्रोग्राम है जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करते हैं।
1: जी, प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल जी, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए क्या सुधार किए गए हैं? अभी आपने बताया भी, ई नाम और डिजिटल मंडियों की भूमिका को आप इसमें किस तरह से देखते हैं?
0: किसान को उसकी जो प्रोड्यूस है उसका उचित दाम मिले, तो ई नाम एक माध्यम, डिजिटल मंडियां, ताकि उसका कॉम्पिटिटिव रेट उसको मिल रहा है
1: जी,
0: क्योंकि ओपन सोर्स पे अवेलेबल है कि उसके पास कितना प्रोड्यूस है और कॉम्पिटिटिव रेट उसको क्या मिल रहा है। अलग अलग लोग ऑफर करेंगे तो एक तो उसको कॉम्पिटिटिव रेट मिलेगा। दूसरा, जो अभी भारत सरकार ने एक बड़ी

0: योजना शुरू की है फॉर्मुलेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ये लगभग 7,000 करोड़ की ये स्कीम है
1: जी,
0: जिसमें 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज खड़ी करनी है। जब किसान उगाता है तो उसको पता है वो पेरिशेबल है
1: जी,
0: उसका प्रोड्यूस, तो वो सड़क के किनारे रखता है, फिर एक ट्रक आता है, गाड़ी आती है, वो इकट्ठा करते जाती है और मंडी में ले जाती है। अब मंडी में भी पता है कि किसान का वापस तो जाएगा नहीं, जाएगा तो खराब हो जाएगा
1: जी
0: से जो रेट उपलब्ध है उसको करेगा
1: जी
0: तो उसके पास बार्गेन नहीं। तो इस स्कीम में क्या है कि किसानों के छोटे छोटे समूह बनाना,
1: जी
0: उन छोटे समूह को एक बड़े क्लस्टर में बदलना और क्लस्टर को पूरा एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बदलना,
1: जी
0: इसका पूरा मैनेजमेंट कंपनी जैसा है। 300 कम से कम जो प्लेन के राज्य हैं और
1: जी
0: हिमाचल के पहाड़ी राज्यों के लिए 100, इतने किसान इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए।
1: जी
0: तो इसका पर्पज़ कैसे चेन बनेगी, अब जब क्लस्टर बन गया, ग्रुप बन गया,
1: जी
0: तो जो बार्गेन मैनेजमेंट

0: स्ट्रक्चर वहाँ बनाए जा सकते हैं। स्टोरेज स्ट्रक्चर अलग मिनिस्ट्री पैसा देगी,
1: जी
0: जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बताया मैंने वो वहाँ से पैसा आएगा।
1: जी
0: तो 20 दिन के लिए रिटेन कर ली कराओ, जब ग्लट मार्केट से हटा उसको रिलीज कर दिया।
1: जी
0: तीसरी बात आएगी जब लगेगा कि इतना मार्केटेबल है इतना मार्केटेबल नहीं है, तो क्या उसकी प्रोसेसिंग उस क्लस्टर लेवल पे ही कर लें। एप्पल जो अनमार्केटेबल है, जो हमें 6-7 रुपए मिलता है जिसका पैसा,
1: जी
0: या HPMC को हम देते हैं बहुत सड़ जाता है, तो लोकल हम जूस निकालें। लोकल उसका यूनिवर्सिटी ने एक आइसक्रीम कोन्स उसके बनाए हैं, उसका फ्लोर उसका बनाया है, चिप्स उसके बनाए हैं,
1: जी
0: तो क्या लोकल लेवल पे हो सकता है। फिर ब्रांडिंग उस क्लस्टर के नाम से ब्रांडिंग, फिर ट्रांसपेरेंसी ट्रेसिबिलिटी, मैंने कहा वही कोड दे दिया, जिसने भी खाए आपने कहीं भी खरीदा आप देखते हैं इस किसान से आया, उसका QR कोड स्कैन किया, इस किसान की बैकग्राउंड क्या, अच्छा प्राकृतिक खेती करता है, अच्छा कहाँ का है, ये इसका टेलीफोन नंबर है, मैं कन्फर्म करूँ।
1: जी
0: तो ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरी जो सस्टेनेबल वैल्यू चेन है प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर की प्लेट तक,
1: जी
0: ये ट्रांसपेरेंट बन रही है और किसान को उसका उचित दाम।
1: जी प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी पहल खेत बचाओ अभियान शुरू किया है। ये अभियान 30 जून तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है?
0: भारतवर्ष के माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक आह्वान किया, खेत
1: जी
0: बचाओ अभियान,
1: जी
0: जिसके अंतर्गत इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सभी संस्थान और सभी विश्वविद्यालय KVKs इस अभियान में जुड़े हैं।
1: जी
0: अभियान इसलिए लिया गया कि सबके ध्यान में होगा कि जैसे जैसे ये आज युद्ध का एक दौर चल रहा है,
1: जी
0: जिसके कारण हमारे जितने भी एग्रोकेमिकल्स हैं उसका जो रॉ इनपुट्स है वो सब विदेश से आता है, तो उसका जैसे जैसे सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आना शुरू हुई, तो
1: जी
0: खाद की भी प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, आने वाले समय में ऐसा एक एक्सपेक्टेड है कि इसमें दिक्कत आ सकती है।
1: जी
0: तो एक प्रचार पूरे देश भर के किसानों के साथ किया जा रहा है कि खादों का केमिकल्स का न्यूनतम प्रयोग करो।
1: जी
0: तो 1 जून से 30 जून तक ये अभियान चल रहा है,
1: जी
0: परंतु मैं तो इससे भी आगे की बात कर रहा हूं कि हम न्यूनतम क्यों करें, हम बिना खाद से बिना कीटनाशक से और बड़े कम पानी से जब प्राकृतिक खेती के डेमोंस्ट्रेशन हमने देश भर में खड़े कर दिए हैं,
1: जी
0: हम 20% किसानों को इसमें जोड़ने का लक्ष्य लिया है, तो हम बहुत जल्दी किसानों को इस बाहरी जो अदान इनपुट्स जो बाहर से आती हैं
1: जी
0: इस पे जो डिपेंडेंसी है इसको बहुत जल्दी बहुत कम करने वाले। जब खाद ज्यादा डल रही है, कीटनाशक ज्यादा डल रहा है, तो आपका जो पर परागण वाला कीट है
1: जी
0: वो मर रहा है, आपका जमीन का जीवाणु मर रहा है,
1: जी
0: जीवाणु मर रहा है तो हम खाद डाल रहे हैं तो खाद सीधी पौधा नहीं लेता, उसको जीवाणु उसकी खाने वाली अवस्था में बदलते हैं तब तो पौधा उसको लेता है,
1: जी
0: तो जीवाणु मर रहा है, केंचुआ मर रहा है, भूमि बंजर बन रही है, और आज देश भर की लगभग 30% भूमि को बंजर होने के कगार पे आ गई है।
1: जी
0: कैसे जमीन की उपजाऊ क्षमता बरकरार रहे, कैसे ऑर्गेनिक कार्बन जमीन का बढ़े, कैसे ये जितने भी एग्रोकेमिकल हम प्रयोग करते हैं इस पे हमारी डिपेंडेंसी, क्योंकि सारा खर्चा इसी पर है।
1: जी
0: तो ये डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा खर्चा कम होगा, हमारी भूमि बचेगी, हमारा पानी बचेगा, हमारा खेत बचेगा, ये अभियान चला।
1: जी तो क्या किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है?
0: किसानों के पास ही
1: जी
0: सभी विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र
1: जी
0: और ICAR के इंस्टीट्यूशन किसानों के पास जाकर, उनके समूहों में, उनके खेतों में जाकर इस अभियान को, इसके नुकसान क्या और इस अभियान को चलाने से लाभ क्या होंगे, इससे अवगत करवा रहे हैं।
1: जी प्रोफेसर साहब, विकसित भारत के लक्ष्य में कृषि और किसानों की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? किसानों के सामने अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
0: देखिए, विकसित भारत में सबसे प्रमुख भूमिका तो किसान की है
1: जी,
0: परंतु अभी तक जो हम देखते हैं कि जितने प्रयास अभी पिछले 10-12 साल से हुए हैं
1: जी,
0: आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
1: जी,
0: तो अगर हम देखें 2014-15 में तो 6,426 रुपए प्रति परिवार प्रति महीना किसान की आय थी
1: जी,
0: और अभी हम करंट का देखें तो 19,696 है, यानी 12 सालों में लगभग 10,500 की इनकम एडिशनल किसान की
1: बढ़ी है,
0: और एनुअल निकालें इसका तो 70,000 के आसपास 14-15 में थी और 236,000 आज है
1: जी।
0: तो इन स्कीमों का लाभ हो रहा है, किसान की आय बढ़ रही है, किसान की आय बढ़ रही है तो उसकी जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है। परंतु जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस इन स्कीमों की इम्प्लीमेंटेशन में, हम इनको और प्रभावी बनाएं,
1: जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की आवश्यकता है जी।
0: और दूसरे जिस पे हम अभी बड़ा सशक्त होकर काम कर रहे हैं
1: जी,
0: किसान के बेटे को खेती पे रोकना
1: जी,
0: और खेती पे सिर्फ भाषण से नहीं रुकेगा
1: जी,
0: किसान के बेटे को जब हम इंश्योर करेंगे कि उसका 25,000 रुपए

0: महीना उसकी खेती से निकल रहा है 30,000 न्यूनतम। तो
1: इसी से जुड़ा मैं सवाल भी पूछना चाह रही थी आपसे कि किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाहता, या यूं कहें कि कृषि क्षेत्र में आना ही नहीं चाहता, इसके क्या कारण है और युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
0: डेमोंस्ट्रेशन से दिखाना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी कहा
1: जी,
0: कि मेरे घर में भी अच्छा मोटरसाइकिल, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल मैं ले सकता हूँ खेती करके
1: जी।
0: और आज हमारे बहुत से युवा जब हाई डेंसिटी एप्पल, हाई डेंसिटी वेजिटेबल्स, ऑक्सीजन वेजिटेबल्स, टेम्परेट वेजिटेबल्स, जब उनको 2 बीघा पे, 2.5 बीघा पे करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं तो डेमोंस्ट्रेशन बन रहे हैं
1: जी।
0: अभी पूरे देश भर में लगभग 2,000 कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ही प्राकृतिक खेती के डेमोंस्ट्रेशन बन रहे हैं
1: जी।
0: अभी हिमाचल प्रदेश की कुछ खबरें आपके ध्यान में जरूर आई होंगी, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देखी होगी। एक आम ग्रामीण अनीता नेगी
1: जी,
0: जो कुल्लू जिला की है, बंजार की है, दिल्ली की एक बहुत बड़ी मैगजीन ने एक बड़ा आर्टिकल के साथ दिया कि 5 एकड़ से 60 लाख प्राकृतिक खेती करके अनीता नेगी कमा रही है
1: जी।
0: आज। हमारे चौपाल के किसान का अगर सेब की 20 किलो की पेटी 3600 रुपए में जा सकती, इसका मतलब आपकी ब्रांड वैल्यू बनी है
1: जी,
0: आपने अपने खर्चे कम किए हैं और आपने अपने बच्चों को रिटेन करने का फार्म पे साधन एक अच्छी इनकम के साथ बना लिया है
1: जी।
0: तो ये हमें करना पड़ेगा, हमें डेमोंस्ट्रेशन से बच्चों को, फैमिलीज को, फार्म फैमिलीज को दिखाना पड़ेगा
1: जी। प्रोफेसर चंदेल जी कहते भी हैं, अन्नदाता सुखी तो देश समृद्ध। श्रोताओं, आज की इस भेंट वार्ता में हमने जाना कि पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और कृषि विकास को गति देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहले की गई हैं। निसंदेह कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश के विकास में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ केंद्र की NDA सरकार द्वारा 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और कृषि विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, इस विषय पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख श्री रितेश कपूर जी ने। अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 MHz पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें, आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे, जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
3: आपने ट्यून किया है FM शिमला 103.7 MHz पर।

रात के इन नर्म पलों में कुछ मधुर गीतों की सहलाहट के साथ हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर स्वाति डोगरा। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जी आराम

से बैठ जाइए, पूरे दिन की अपनी टेंशन को भूल जाइए और एंजॉय कीजिए एफएम शिमला का ये म्यूजिकल सफर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: इसी गाने के साथ फिल्म म्यूजिक में अभी बस इतना ही। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से

0: अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट

0: की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में

0: में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured, It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal said that New Delhi continues

बॉलीवुड की एंटरटेनिंग फिल्में, उनसे जुड़े किस्से, कहानियां और गाने आप सुनते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक फिल्म से। और आज इस प्रोग्राम की फिल्म है साल 2024 में रिलीज हुई एक पेट्रियोटिक फिल्म, फाइटर।

विशाल डडलानी, शेखर रवजियानी और साथियों की आवाजों में ये गाना अभी आपने सुना फाइटर फिल्म से। एक फिल्म से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। फाइटर एक देशभक्ति फिल्म है और ये फिल्म उन जाबाजों की कहानी बयां करती है जिन्हें हम सोल्जर्स बुलाते हैं, सैनिक बुलाते हैं, जो बैटलफील्ड में तो लड़ते ही हैं, साथ ही उनकी लड़ाई खुद से भी होती है। बैंग ऑन एक्शन थ्रिलर और दमदार विजुअल इफेक्ट्स के साथ बनी इस फिल्म के मुख्य किरदारों में है ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर, और साथ ही करण सिंह ग्रोवर, अक्षय ओबेरॉय और ऋषभ साहनी ने सपोर्टिंग रोल्स में अच्छा काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने सलाम नमस्ते, बचना है हसीनो, वॉर और पठान जैसी सुपरहिट मूवीज भी डायरेक्ट की हैं। इस फिल्म की सक्सेस में इसके गानों का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसे लिखा है कुमार ने और इन गानों को कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें भी होंगी आपके साथ इस प्रोग्राम में। सुनते हैं इस फिल्म का एक और गाना।

ये गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला पर 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम एक फिल्म से, और आज कार्यक्रम में बात हो रही है फाइटर फिल्म की। फाइटर फिल्म की कहानी भारतीय वायुसेना के उन बहादुर फाइटर पायलट्स की कहानी है जो पुलवामा अटैक और आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है, एक्शन सीक्वेंस, इमोशनल सीन्स और फिल्म के गाने हर कड़ी को मजबूत बनाते हैं। फाइटर पायलट्स के हवाई करतब और एक्शन सीन्स जो है वो हवा में ही फिल्माए गए हैं, और विजुअल इफेक्ट्स का इतना बारीकी के साथ यूज़ किया गया है कि फिल्म देखने वाला हर एक्शन सीन देखकर हैरान हो जाता है। स्पेशली एक्टर्स ने जिस परफेक्शन के साथ एयर स्ट्राइक के सीन किए हैं, एक पल के लिए उन्हें देखकर लगता है कि ये रियल फाइटर पायलट्स हैं, एक्टर्स नहीं हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस की बात करें तो दीपिका पादुकोण को फिल्म के फर्स्ट हाफ में ऋतिक रोशन की लेडी लव के रूप में दिखाया गया है, लेकिन फिल्म के सेकेंड हाफ में उन्हें एक्शन सीन्स में देखकर ऑडियंस का दंग रह जाना लाजमी है। उनके फिल्मी किरदार के जरिए डायरेक्टर ने समाज की उस सोच पर भी वार किया है जहां लोग सोचते हैं कि इंडियन आर्मी में महिलाओं के लिए जगह नहीं हो सकती। इस माइंडसेट को चैलेंज करता दीपिका पादुकोण का किरदार बहुत ही दमदार है, और साथ ही फिल्म में कई सीन्स ऐसे भी आते हैं जहाँ ऑडियंस दीपिका पादुकोण के किरदार से इमोशनल भी हो जाते हैं।

फाइटर फिल्म के गाने आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम एक फिल्म से। फाइटर फिल्म देशभक्ति के जज्बे को बखूबी जगाती है और साथ ही इस फिल्म को एक स्ट्रॉन्ग दिशा की ओर ले जाते हुए ऋषभ साहनी ने इस फिल्म में विलन का रोल निभाया है। उनका गुस्सा, एक्शन प्लान करने की साजिश और फिल्म में उनकी जो नेगेटिव अपीयरेंस है वो शानदार लगती है। एक भारतीय सोल्जर का अपने देश के प्रति कैसा जुनून रहता है ये पूरी फिल्म के दौरान देखा जा सकता है। और अगर आपके अंदर भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की चिंगारी सुलग रही है तो ये मूवी आपको अच्छा खासा मोटिवेशन देगी। जय हिंद के उद्घोष को चरितार्थ करती 2024 की पेट्रियोटिक फिल्म फाइटर जोश और एंटरटेनमेंट से भरी है और साल 2024 की कामयाब फिल्मों की लिस्ट में जो थी ये मूवी शामिल थी। तो एक फिल्म से प्रोग्राम में आज हमने फाइटर फिल्म के बारे में कुछ बातें की और इसके गाने आपको सुनवाए और अब इस फिल्म का एक और गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। प्रोग्राम का ये आखिरी गाना ओनली ऑन एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन एफएम शिमला के साथ, और ये वक्त है आपके पसंद के गाने एंजॉय करने का।

जी हाँ, ये वक्त है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम का, जिसका नाम है दिल की आवाज़ भी सुन। और इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं अपने श्रोताओं की पसंद के गाने। जिस गाने की आप फरमाइश हमें भेजेंगे, वो गाना हम यहाँ प्ले करेंगे आपके लिए। और आप कैसे जोड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपने हमें ईमेल करना है। हमारा मेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। एक बार फिर से सुन लें, airfmshimlamusicmail@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप हमें मेल भेजें, और आपका मेल जितना छोटा रहेगा उतनी ही सहूलियत होगी हमें आपकी ईमेल यहां पर शामिल करने में। यानी आप हमें अपनी ईमेल में अपनी फरमाइश बताएं, अपना नाम बताएं और कौन सी जगह से आपने हमें मैसेज किया है, ये ईमेल आप भेजने वाले हैं, ये आप ज़रूर मेंशन करें। इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ स्वाति डोकरा।

और प्रोग्राम में काफ़ी सारे ईमेल्स हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं जी, और कार्यक्रम का ये पहला ईमेल जो मैं शामिल कर रही हूँ साजन फिल्म के गाने के लिए, हमारे पास ये ईमेल आया है। साजन फिल्म कौन सी? 60 के दशक की जो साजन फिल्म है उसकी लिए हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची है। कोहका भिलाई से हमें ये ईमेल भेजा है उत्तम सिंह जंघेल ने, सारथ में है इनके मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष, नंदिनी, धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। नेक्स्ट ईमेल जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये हमें भेजा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल ने, साथ में हैं इनके राजदीप, राजेश, राशि और शीतल राजेश। नेक्स्ट ईमेल यहाँ पर आ गया है हमारे पास वंडिंग हेड़ा पंजाब से, ये है मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। नेक्स्ट मेल जो पहुँचा है ये है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, और साथ में हैं इनके पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। एंड एक और ईमेल जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ फ्लैश हो रहा है ये हमें भेजा है, ये है हमारे गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के हमारे श्रोता साथी राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, इन्होंने हमें ये ईमेल भेजा है। ये है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार। और एक और ईमेल जो आया है अभी अभी हमारे पास ये गांव कलाना तहसील भादरा ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से, ये मेल हमें भेजा है विक्रम कड़वासरा ने, साथ में है सचिन, सतीश, योगेश और युधव कड़वासरा। और जी हमारे पास गांव हांडी खेड़ा ज़िला सिरसा से ये मेल पहुंचा है राधे श्याम शर्मा का, साथ में है इनके इंदिरा शर्मा और सार्थक। लालगिरी गोस्वामी का ईमेल आया है रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से, साथ में है हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और इनके अलावा नेक्स्ट ईमेल जो मैं देख रही हूँ सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द ज़िला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, ये हैं गुनी राम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत। तो ये जो आपकी ईमेल्स हैं ये लगातार हमारे पास पहुँच रही हैं, और एक बार आपने अगर हमें मेल भेज दिया है तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप अपनी जो है वो ईमेल शामिल होने का सब्र के साथ जो है वो इंतज़ार करें, बार बार ईमेल ना भेजें। और अब ये जो ईमेल्स पढ़ने का सिलसिला है ये मैं जारी रखूँगी इस सॉन्ग के बाद। प्रोग्राम की ये पहली फरमाइश हमारे पास पहुँची थी साजन फिल्म के गाने के लिए।

कार्यक्रम में जो अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के लिए ये ईमेल हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू ने, साथ में है इनके करण, राहुल और चंपा साहू। नेक्स्ट ईमेल में देख रही हूँ यहाँ पर बागपत उत्तर प्रदेश से ये मेल भेजा है संजय ढींगिया ने, साथ में इनके नमन और अपार। साजन फिल्म के गाने के लिए इन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट भेजी। अस्तुपुरा ज़िला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। और हमारे पास यहाँ पर मेल पहुँचा है जी नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त का, साथ में इनके कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। और नेक्स्ट मेल जो मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर, ये हमें भेजी है चुपाड़ी रोहड़ू से लोभाराम गुंजेटा ने, साथ में इनके जमीनता, भजन देवी गुंजेटा, तारा सिंह गुंजेटा और इनके परिवार के अन्य बंधु जो अन्य सदस्य जो ये कार्यक्रम सुनते हैं और जुड़े हैं FM शिमला से। अजीत कसाना का हमारे पास ईमेल आया है और साथ में है इनके माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली ज़िला मुरादाबाद से इन्होंने हमें ये ईमेल भेजा है और साथ ही साथ इन्होंने अपना फीडबैक भी भेजा है, इन्हें FM शिमला के कार्यक्रम पसंद आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी। नेक्स्ट ईमेल फाजिलका पंजाब से ये भेजा है भूषण खेड़ा ने, साथ में है इनके विशु खेड़ा, विशाल और शालिनी तिवांची। नेक्स्ट ईमेल जो मैं देख रही हूँ अभी, ये हमारे पास मोहम्मद फरमान की ये ईमेल आई है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, इन्होंने ये ईमेल भेजी है, साथ में इनके मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। संजय ढींगिया ने हमें ईमेल भेजा है यूपी से और SM जावेद का ईमेल भी हमारे पास पहुंचा है जी गुमला झारखंड से, साथ में है इनके शगुफ्ता अंजुम। रज़ाक मोहम्मद का ईमेल आया है हमारे पास हनुमानगढ़ राजस्थान से, साथ में इनके समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जशन खान। और हीरामणि वर्मा का भाटापारा छत्तीसगढ़ दतरेंगी से ईमेल पहुंचा है, साथ में इनके पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। तो अब आप सभी के लिए प्ले कर रही हूँ मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गाना।

आपकी फरमाइशों पर आधारित ईमेल बेस्ड प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। और इस प्रोग्राम में ईमेल भेजकर आप जुड़ सकते हैं एफएम शिमला से और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गाना। आपने मेल आईडी पर हमें मेल करना है और बताना है कि आप कौन सा गाना आज इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। हमारा मेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com।

अपनी पसंद के गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ पे सुन। और अब अगली फरमाइश हमारे पास पहुंची है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। ये मेल हमें भेजा है टीडी मल्होत्रा ने। साथ में हैं इनके ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इन्होंने कटी पतंग फिल्म के गाने के लिए हमें ये रिक्वेस्ट भेजी है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तो जी ये आपकी फरमाइश हम ज़रूर पूरी करेंगे। और अब अगला ईमेल जो मैं देख रही हूँ ये कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें भेजा है सुखविंदर सिंह जौड़ा ने। साथ में इनके सीटी दीवाना किसी भी गाने में इन्होंने ये नाम शामिल करने की गुजारिश की है। बहरहाल आपके नाम शामिल हो चुके हैं यहाँ। और अब गांव व डाकघर निमनाबाद ज़िला जिंद हरियाणा से हमारे पास ये ईमेल पहुंचा है जसबीर सिंह अरोड़ा का। साथ में है इनके जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। नेक्स्ट ईमेल गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से पहुंची है। ये दातार सिंह शेखावत ने भेजा है ईमेल। साथ में इनके संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और दीपेश वर्मा का ईमेल भी मैं देख रही हूँ। साथ में इनके पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये हमें ईमेल भेजा है जी। और इनके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आदर्श नगर मलोट पंजाब से ईमेल आया है राज शर्मा का। साथ में इनके मीना शर्मा, योगेश, निवान, सौरव, शायना और मैंडी शर्मा का ये नेम्स इन्होंने मेंशन किए हैं अपने ईमेल में। नागर कोहरा ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हमें ये मेल भेजा है बबलू साहू ने। साथ में इनके जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या, झग्गर राम साहू। और साथ ही साथ हमारे पास जो ये एक ईमेल अभी अभी पहुंचा है पाकिज़ा रेडियो श्रोता संघ के ये हमारे श्रोता साथी वैष्णव कॉलोनी सनावत से इन्होंने ये ईमेल किया है। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। ये तमाम नेम्स इन्होंने अपने ईमेल में मेंशन किए हैं। और नेक्स्ट ईमेल में यहाँ देख रही हूँ गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से ये हैं दिग्दर्शन और कविता गौर। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर ईमेल पहुँच गया है गांव खारिया ज़िला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल का। साथ में है इनके इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। तो आप सभी के लिए अब हम प्ले कर रहे हैं यहाँ से कटी पतंग फिल्म का ये गाना।

आपके ईमेल्स लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं और बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास पहुंचे हैं। यहाँ शिमला संजौली से हमें ईमेल भेजा है कपिल भारद्वाज ने, साथ में इनके ऋतु नेगी, ज्योत्सना और आदि भारद्वाज। नेक्स्ट ईमेल जो मैं यहाँ देख रही हूँ, ये ईमेल पहुंचा है मुकाम पोस्ट फुलचिनचोली तालुका पंढरपुर से। ये ईमेल भेजा है जाकिर मुलानी ने, खिलाड़ी फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं। और जो नेम्स इन्होंने मेंशन किए हैं अपने ईमेल में वो है सुमैया मुलानी, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बानूबी और बादशाह मुलानी। नेक्स्ट ईमेल यहाँ पर पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से आया है, ये भेजा है अनिल मोहन ने, साथ में उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान का ईमेल हमारे पास पहुंचा है, साथ में इनके साइमा नवाज, हसन नवाज और विरोचनपुरी का ईमेल भी हमारे पास आ गया है। कुलशोभा कॉटेज सुनाम पंजाब से, साथ में इनके मिसेस भारतीपुरी, डॉक्टर के आर पुरी, शोभा पुरी, सरोज बाला, डॉक्टर सौरभ, ज्योति, एताश, पर्णिका, रिद्धि पुरी और मास्टर वहीन पुरी। नेक्स्ट ईमेल आया है जी हमारे पास यहाँ जी आर पॉल का और इनके परिवार के सभी अन्य सदस्य, सराभा नगर जालंधर पंजाब से इन्होंने हमें ये मेल किया है। सभी सदस्य मिलकर FM शिमला के कार्यक्रम सुन रहे हैं और जुड़े हैं हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ईमेल जो मैं देख रही हूँ अभी यहाँ पर, छत्तीसगढ़ पलारी से ये भेजा है प्रकाश वर्मा ने, साथ में है इनके प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। और एक और ईमेल हमारे पास ये जलालाबाद वेस्ट से भेजा है हमें ये सुरेश गगनेजा ने, साथ में इनके पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित। और जी कुछ ईमेल्स हमारे पास रिपीट भी हो रहे हैं। खैर अगली ईमेल की ओर बढ़ते हैं। और ये जो ईमेल हमारे पास आया है बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का से, ये हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, डॉक्टर मदनलाल वर्मा और साथ में हैं इनके रमन, अमन, दिव्यांश और इनके परिवार के सभी अन्य सदस्य। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे पास ईमेल आ चुका है राजपाल शर्मा का। और मैं देख रही हूँ मेरठ कैंट से ये मेल आया है दिग्दर्शन का, साथ में कविता, राधा नामदेव, संजय ढींगिया, संदीप मकर, अनिल जैन और दर्शन। तो आप सभी लिसनर्स के लिए अब प्ले करने वाली हूँ मैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: और इसी गाने के साथ दिल की आवाज में सुन कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब एफएम शिमला पर शुरू होती है गजलों की रुमानी महफिल।

वक्त की राहों में गुजरते पलों का हिसाब क्या रखना, जो खुशी दे जाए जिंदगी में बस वही याद रखना। आनंद लीजिए इन गजलों का, FM शिमला 103.7 MHz पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते।

ये गजलें आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। जाने वाले कभी पूरी तरह नहीं जाते, वो रह जाते हैं पुरानी तस्वीरों में, कुछ अधूरी बातों में, उन जगहों पर जहां कभी साथ में वक्त बिताया था। और फिर जब दोबारा कभी उन गलियों और रास्तों से गुजरना होता है ना, तो लगता है जैसे वक्त कुछ देर के लिए वहीं रुक गया है।

बात से बात की गहराई चली जाती है, झूठ आ जाए तो सच्चाई चली जाती है। रात भर जागते रहने का अमल ठीक नहीं, चांद के इश्क में बिना ही चली जाती है।

0: इसी के साथ गजलों की आज की इस रूमानी महफिल में बस इतना ही।
1: अगर आप उस जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
2: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
4: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

कस्तूरी की वो डिबिया मन को लुभा रही थी, हम बैठे सुन रहे थे और वो गाना गा रही थी। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना शगुन फिल्म से। दोस्तों, ऐसे कई सुपरहिट गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज़ दी सुमन कल्याणपुर ने। उनके बारे में 60 और 70 के दशक में जब किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में छपता था तो उन्हें अक्सर मेलोडी क्वीन के नाम से संबोधित किया जाता था। अभी कुछ दिन पहले सुमन कल्याणपुर इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपना संपूर्ण जीवन

संगीत को समर्पित करने वाली सुमन कल्याणपुर अपने गीतों में अपने चाहने वालों के दिलों में मीठी याद बनकर जिंदा रहेंगी। संगीत के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये अगला गाना जो हमने चुना है श्रीमान सत्यवादी फिल्म से। इस गीत में उनके साथ मन्ना डे हैं और ये गीत लिखा है गुलजार दीनवी ने।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में सुनिए पर आया धन फिल्म से ये गाना। आर डी बर्मन का कंपोज किया ये गाना जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: ऐसे मत देखो, मेरा दिल धड़कता है।
2: दिल हाय मेरा दिल, तेरा दिल, दिल से दिल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुनिए ये गाना, स्वीकार किया मैंने फिल्म से। निदा फाजली का लिखा ये गीत है, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। वक्त के साथ चलते चलते कुछ बातें बड़ी साफ नजर आने लगती है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं। बस एक बात समझ आ जाती है कि जियो और जीने दो, जो साथ चलना चाहे उसका हाथ थाम लो, जो दूर जाना चाहे उन्हें दुआओं के साथ जाने दो।

लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में हिना फिल्म का ये गीत आपने सुना। इसी सदाबहार गीत के साथ आज का आपका और हमारा ये म्यूज़िकल सफ़र भी यहीं पर ख़त्म होता है। आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human right abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent